नमस्कार श्रोताओं, मैं जुड़ चुकी हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति। स्वागत करती हूँ हमारे आज की प्रातःकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज वार रविवार दिनांक 19 जुलाई 2026 का दिन है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमारी भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना से। फिर हम रुक करेंगे कार्यक्रम महापुरुषों की गाथा में। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। इसी क्रम में अगला कार्यक्रम होगा श्रोताओं हमारा प्रेरणादायी व शिक्षाप्रद कहानी से जुड़ा विशेष कार्यक्रम कथा कहानी, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे प्रस्तुतकर्ता जागृति के साथ में, यानी कि मेरे साथ में। श्रोताओं, फिर आपको रूबरू करवाएंगे नन्हे मुन्ने बच्चों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसी कड़ी में हम रुक करेंगे विशेष कार्यक्रम हमारे मेहमान की ओर, जिसमें आप जानेंगे उनके जीवन परिचय को, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा गांधी जी के जीवन से जुड़ा विशेष कार्यक्रम मेरे सपनों का भारत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर। इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी। श्रोताओं, फिर हम रुक करेंगे कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। इस कार्यक्रम

के माध्यम से हम जानेंगे नए नए व्यंजनों के बारे में और इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9 बजे। श्रोताओं, जैसा कि आपको कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा बताई रही हूं, तो इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम होगा कार्यक्रम हम और हमारा संविधान, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति। श्रोताओं, फिर 10 से 1 बजे तक होगी मनोरंजन की पूरी भरमार फिल्म संगीत लोक संगीत के साथ में, जिसमें आप सुनेंगे नए पुराने फिल्म संगीत और हमारी लोक परंपरा से जुड़े राजस्थानी गीतों को। तो श्रोताओं, यह तो थी हमारे आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब सुनते हैं आज की सभा की शुरुआत में कार्यक्रम आराधना।

जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए।

भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने में देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरी निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचा बल्ले आपने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
2: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
0: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
2: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
4: संघर्ष के बीच एक एहसास जो हमें मजबूत बनाता रहा, यह महापुरुषों की अनकही प्रेम गाथा।

साथियों, भारत की मिट्टी ने ऐसे अनेक सपूत दिए हैं जिन्होंने अपने विचारों और साहस से देश को नई दिशा दी है। आइए आज हम याद करें एक ऐसे ही महान व्यक्ति को जिनकी आवाज ने पूरे देश में स्वराज का सपना जगाया था।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: लेकर हाजिर है साथियों कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन परिचय से आपको अवगत करवाएंगे। जैसा कि साथियों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये केवल एक नारा नहीं था बल्कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का उद्घोष था। इस अमर वाक्य को जन जन तक पहुँचाने वाले महान राष्ट्रभक्त, समाज सुधारक, शिक्षाविद, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।
1: बिल्कुल
0: अंजलि, उन्होंने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की ऐसी लौ जलाई जिसने आगे चलकर पूरे देश को आजादी के आंदोलन से जोड़ दिया।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें उनके बाल्यकाल और परिवार की, तो श्रोता साथियों, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक संस्कृत और गणित के विद्वान शिक्षक थे। उनकी माता पार्वती बाई धार्मिक और संस्कारी थी। जागृति जी, घर का वातावरण शिक्षा, अनुशासन और भारतीय संस्कृति से भरा हुआ था। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि, सत्यप्रिय और निर्भीक स्वभाव के थे। कहा जाता है श्रोता साथियों कि वे बचपन से ही अन्याय का विरोध करते थे। यदि उन्हें कोई गलत बात लगती तो वे बिना डरे अपनी बात रखते थे।
0: बिल्कुल
1: यही गुण जागृति जी आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बना। कहते हैं कि बचपन के संस्कार ही भविष्य के नेतृत्व की नींव बनते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रत्नागिरी में प्राप्त की थी और बाद में उनका परिवार पुणे आ गया था, जहां उन्होंने आगे की शिक्षा पूरी की। उन्होंने गणित विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद में कानून की शिक्षा भी ग्रहण की। वे चाहते तो आरामदायक नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही लोकमान्य तिलक उन महान नेताओं में थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया। वे मानते थे कि जब तक भारत आत्मनिर्भर, शिक्षित और संगठित नहीं होगा, तब तक सच्चा स्वराज संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा, पत्रकारिता, सामाजिक जागरण और राजनीतिक आंदोलनों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया।
1: बिल्कुल जागृति जी, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यह महसूस किया कि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था भारतीयों में आत्मविश्वास पैदा करने के बजाय उन्हें अपने इतिहास और संस्कृति से दूर कर रही है।
0: बिल्कुल
1: इसी सोच के साथ उन्होंने अपने साथियों के सहयोग से न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, ताकि युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले जो ज्ञान के साथ साथ राष्ट्र प्रेम भी सिखाए। बाद में उन्होंने शिक्षा के विस्तार के लिए और भी महत्वपूर्ण संस्थानों के निर्माण में योगदान दिया। श्रोता साथियों, उस समय समाचार पत्र केवल खबरें देने का माध्यम नहीं था, बल्कि जनता को जागरूक करने का सबसे बड़ा माध्यम था। बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्रों की शुरुआत की, केसरी जो कि मराठी में जाता था, द मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में जाता था। श्रोता साथियों, इस समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना की और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाई। वे सरल भाषा में लिखते थे ताकि आम लोगों को जागृति जी समझ में आ सके।
0: बिल्कुल
1: देश की स्थिति क्या है और स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। उनकी लेखनी इतनी प्रभावी होती थी कि अंग्रेज सरकार भी उनसे घबराने लगी थी।
0: बिल्कुल अंजलि, तिलक जी का मानना था कि जब जनता जागरूक होगी तभी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए उन्होंने पत्रकारिता को समाज परिवर्तन का हथियार बनाया।
1: बिल्कुल।
0: और जैसा कि शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को लेकर बातचीत करें, तो आपने बताया था कि उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी।
1: बिल्कुल।
0: तिलक जी का मानना था और विश्वास भी था कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। उन्होंने अपने साथियों के साथ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: जी।
0: उनका उद्देश्य ऐसी शिक्षा देना था जिससे विद्यार्थियों में देशभक्ति, आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण और समाज सेवा की भावना विकसित हो। वे भारतीय संस्कृति और आधुनिक ज्ञान के समन्वय को आवश्यक मानते थे।
1: बिल्कुल जागृति जी, बाल गंगाधर तिलक का सबसे बड़ा योगदान था भारतीयों के मन में स्वराज की भावना जगाना।
0: बिल्कुल।

0: मेरा साथी उस समय बहुत से लोग ये मानते थे कि अंग्रेजों का शासन अब हमेशा रहेगा, लेकिन तिलक ने लोगों के मन से यह डर निकाला। उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। जागृति जी केवल यह एक नारा नहीं है बल्कि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज बन गया। उन्होंने लोगों को समझाया कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसके जागरूक नागरिक होते हैं। यदि जनता एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो जाए तो कोई भी शक्ति उसे लंबे समय तक गुलाम नहीं रख सकती।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जब एक विचार करोड़ों लोगों के दिल में जगह बना लेता है तब वही इतिहास बदल देता है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात चल रही है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के जीवन परिचय को लेकर, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, आगे जानेंगे उनके जीवन के बारे में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से बाल गंगाधर तिलक का सपना था स्वराज की स्थापना करना, यहीं जागृति जी अब बात करें तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अच्छी तरह समझते थे कि जब लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक स्वतंत्रता का सपना पूरा नहीं होगा।
1: बिल्कुल,
0: उस समय अंग्रेज सरकार बड़ी सभाओं और राजनीतिक बैठक पर कड़ी निगरानी रखती थी। ऐसे में तिलक ने समाज को जोड़ने का एक नया रास्ता खोजा। उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। उनका उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन करना नहीं था बल्कि श्रोता साथियों, लोगों को एक मंच पर लाना और उनमें राष्ट्रीय चेतना जगाना और सामाजिक एकता को मजबूत करना था।
1: बिल्कुल,
0: इन आयोजनों में देशभक्ति के गीत गाए जाते, भाषण होते, शिक्षा, स्वदेशी और स्वतंत्रता की बातें होती थी। धीरे धीरे जागृति जी, ये उत्सव जन जागरण का प्रभावशाली माध्यम बन गए। इससे लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा और यह भावना मजबूत हुई कि यदि समाज एकजुट हो जाए तो बड़े से बड़े परिवर्तन संभव हो जाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोकमान्य तिलक जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अग्रदूत माना जा रहा था। उस समय कांग्रेस में दो विचारधाराएं थी, नरम दल और गरम दल। तिलक गरम दल के प्रमुख नेता थे। वे मानते थे कि केवल प्रार्थनाओं और याचिकाओं से स्वतंत्रता हमें नहीं मिल सकती। इसके लिए श्रोता, उन्होंने जनता को संगठित करना शुरू किया, संघर्ष करना शुरू किया और आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है ये बताया।
0: जी जी।
1: उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का जोरदार समर्थन किया। उनकी ओजस्वी वाणी और निर्भीक नेतृत्व ने युवाओं में नई ऊर्जा का संचार किया।
0: जी हाँ।
1: उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी। इसी तरह हम बता सकते हैं कि तिलक के निर्भीक विचारों से अंग्रेज सरकार भयभीत हो गई। उन पर कई बार राजद्रोह के आरोप लगाए गए। वर्ष 1908 में उन्हें 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा देकर बर्मा कि मांडले जेल में भेज दिया गया।
0: बिल्कुल,
1: जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया। वहाँ उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने कर्म योग का महत्व समझाते हुए बताया कि मनुष्य को निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
0: बिल्कुल जागृति जी, तिलक विद्वान थे लेकिन उनमें अहंकार नहीं था। वे निडर थे लेकिन संयम भी रखते थे। वे राष्ट्रवादी थे लेकिन समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि शिक्षा और जागरूकता सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य और साहस कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। श्रोता साथियों, राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब उसके नागरिक जागरूक और जिम्मेदार हो। उनका जीवन केवल इतिहास की पुस्तक का एक अध्याय नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
1: बिल्कुल,
0: आज हमारे सामने चुनौतियाँ अलग अलग हैं, लेकिन समाधान वही है जिसकी सीख लोकमान्य तिलक ने हमें दी है कि शिक्षा को अपना सबसे बड़ा साथी बनाएं, अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को समझें, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, इसी के साथ ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत को अपने जीवन का आधार बनाएं।
1: जी हाँ,
0: मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। श्रोता साथियों, देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि हर नागरिक की है।
1: जी हाँ, और हम कह सकते हैं अंजलि कि कारावास से लौटने के बाद भी तिलक ने संघर्ष जारी रखा था। उन्होंने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया जिसका उद्देश्य भारत को स्वशासन दिलाना था।
0: जी जी।
1: और इस आंदोलन ने पूरे देश में स्वतंत्रता की मांग को नई गति दी थी। होम रूल आंदोलन ने लाखों भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया और राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक जन समर्थन दिया। साथियों, हम कह सकते हैं कि लोकमान्य तिलक भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते थे। वे समाज में शिक्षा, नैतिकता, राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाह रहे थे।
0: जी जी।
1: उनका विश्वास था कि यदि समाज संगठित और शिक्षित होगा तो राष्ट्र स्वतः ही मजबूत बनेगा। वे युवाओं को अनुशासन, परिश्रम, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति का संदेश देते थे अंजलि।
0: जी हाँ।
1: उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने स्वतंत्रता आंदोलन के समय थे। उनके व्यक्तित्व की विशेषता बताएं तो वो अटूट राष्ट्रभक्ति थी, उनमें निर्भीक नेतृत्व था, सत्यनिष्ठा थी, स्वाभिमान से भरे हुए थे, अद्भुत संगठन क्षमता थी, ओजस्वी वक्तृत्व थे, प्रभावशाली लेखन उनका था, शिक्षा के प्रति समर्पण था और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखने वाले थे। साथियों, इन्हीं गुणों के कारण जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है जिसे जनता ने अपना नेता स्वीकार किया हो।
0: बिल्कुल जागृति जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें सिखाता है कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण केवल नेताओं से नहीं बल्कि जागरूक नागरिकों से होता है।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने अपने विचारों, लेखनी, शिक्षा और संगठन क्षमता से पूरे देश में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने हमें सिखाया श्रोता साथियों कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं है बल्कि आत्मसम्मान, शिक्षा, जागरूकता और जिम्मेदारी का भी नाम है। यदि समाज शिक्षित, संगठित और जागरूक होगा तभी वह हर चुनौतियों का सामना कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों हम अपने देश की एकता, शिक्षा, सामाजिक सद्भाव और विकास में अपनी भूमिका निभाएं। हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए जागृति जी एक बेहतर भारत को बनाने का प्रयास करें।
1: बिल्कुल अंजलि, बस ये कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से कि साथियों लगातार संघर्ष, यात्रा और कठोर परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। 1 अगस्त 1920 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लाखों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का महान निर्माता बताया। वे आज हमारे बीच नहीं है श्रोताओं, लेकिन उनके विचार, संघर्ष और आदर्श आज भी प्रत्येक भारतीय को प्रेरणा देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अंत में हम आपको यही कहना चाहेंगे साथियों कि उनका जीवन त्याग, साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की अनुपम मिसाल है। आज आवश्यकता है कि हम उनके आदर्शों को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखें बल्कि अपने जीवन में अपनाएं। अगर हम शिक्षा, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय एकता, सत्यनिष्ठा और जनसेवा के मार्ग पर चलें तो यही लोकमान्य तिलक के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंजलि, उनका अमर संदेश आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
0: बिल्कुल,
1: स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हमने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के जीवन परिचय में ढेर सारी बातों को जाना, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,

0: उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए महापुरुषों की प्रेम कथा के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

नमस्कार साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षाप्रद कहानियों को लेकर हाजिर होती हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ श्रोताओं, उस कहानी का शीर्षक है कचरे से कमाई तक का सफर। जी हाँ दोस्तों, तो साथ ही कहानी में आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

श्रोताओं, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानियों को लेकर हाजिर होती हूँ। ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है श्रोता साथियों, आज हम देख रहे हैं कि आज का युवा तनाव में रहता है। वो छोटी छोटी चीजों को लेकर तनाव में आ जाता है और वो तनाव में ऐसे आ जाते हैं कि वो अपने जीवन अपने करियर के बारे में सोच ही नहीं पाते। ये कहानी सुनकर शायद हो सकता है कि वो अपने जीवन में कुछ नया कर जाए, असफलताओं से डरे नहीं। ये कहानी बनाने का एक जरिया है श्रोता साथियों कि हमारे युवा साथी इन कहानियों को सुने और कहानियों को सुनकर इनकी जो बातें हैं वो अपने जीवन में ग्रहण करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ और कहानी का शीर्षक है कचरे से कमाई तक का सफर। साथियों, देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता का सपना तो देखता है, लेकिन सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है। कई बार वो चीज जिसे दुनिया बेकार समझकर फेंक देती है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अवसर बन जाती है। ये कहानी ऐसे ही एक युवा की है श्रोताओं, जिसने कचरे में भी संभावनाएं देखी और अपने साहस, मेहनत और नवाचार से न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव की सोच भी बदल दी। साथियों, कहानी शुरू होती इस तरह कि एक छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन एक साधारण किसान परिवार का बेटा था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, खेती से इतना ही मिलता था कि घर का खर्च मुश्किल से चल पाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन ने कई जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। साथियों, एक दिन वो गांव की गलियों से गुजर रहा था, चारों ओर प्लास्टिक की थैलियां थी, बोतलें, पुराने टायर, टूटे बर्तन और बहुत सारा कचरा फैला हुआ था। लोग उस कचरे को देखकर नाक सिकुड़ कर जा रहे थे। साथियों, अर्जुन भी पहले यही सोचता था कि सब बेकार है, लेकिन उस दिन उसके मन में पता नहीं एक सवाल उठा। सवाल ये है कि क्या सचमुच ये सब बेकार है या इसमें भी कोई अवसर छिपा है। उसी शाम उसने इंटरनेट पर और पुस्तकालय में कचरा प्रबंधन और रिसाइकिलिंग के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसे पता चला कि दुनिया के कई देशों में लोग कचरे से करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं। प्लास्टिक से नए उत्पाद बनते हैं, जैविक कचरे से खाद और बायोगैस तैयार होती है, पुराने कपड़े और टायरों से नए सामान बनाए जाते हैं। साथियों, अर्जुन ने तय किया कि अब वो नौकरी का इंतजाम नहीं करेगा बल्कि कचरे को ही अपनी कमाई का साधन बनाएगा। और कहते हैं साथियों कि कोई भी कार्य शुरुआत में आसान नहीं होता है। अर्जुन के लिए भी आसान नहीं था। उसने गांव के लोगों से कहा कि वे घर का कचरा अलग रखें, गीला और सूखा। तब लोग उस पर हंसने लगे। लोगों ने कहा कि क्या अब कचरा भी अलग रखना पड़ेगा, इससे कौन अमीर बन जाएगा। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने खुद अपने घर से शुरुआत की, फिर स्कूल में जाकर बच्चों को समझाया कि अगर कचरा अलग अलग रखा जाए तो उससे खाद, प्लास्टिक और अन्य सामग्री का पुनः उपयोग हो सकता है। इसी तरह श्रोता साथियों, धीरे धीरे कुछ बच्चों ने अपने घरों में बात बताई, कुछ परिवार तैयार हुए, कुछ परिवार नहीं हुए। अर्जुन ने पुराने ड्रम और डिब्बों से कचरा संग्रहण की व्यवस्था बनाई। उसने गांव के जैविक कचरे से कंपोस्ट खाद बनाई शुरुआत की। शुरुआत में खाद कम बनी, लेकिन जब किसानों ने उस खाद का उपयोग किया तो फसल की गुणवत्ता अच्छी हुई और रासायनिक खाद का खर्च भी कम हुआ। साथियों, अब अर्जुन ने प्लास्टिक और लोहे का अलग अलग संग्रह करना शुरू किया। वो सप्ताह में एक बार शहर जाकर इसे रिसाइकिलिंग केंद्र में बेच देता। थोड़ी थोड़ी उसकी कमाई होने लगी। कुछ महीनों बाद उसने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को साथ में जोड़ लिया। महिलाओं ने पुराने कपड़ों से बैग बनाना शुरू कर दिया। प्लास्टिक की बोतलों से गमले, सजावटी सामान और पेन स्टैंड तैयार किए गए। साथियों, अब वही लोग जो कभी हंसते थे अर्जुन के काम की सराहना करने लगे थे। एक दिन जिला प्रशासन ने उसके काम की जानकारी ली। अधिकारियों ने गांव का दौरा किया और देखा कि जहां पहले कचरे के ढेर लगे थे अब वहां साफ सफाई थी, जैविक खाद बन रही थी और कई परिवारों को रोजगार मिल रहा था। अर्जुन को एक छोटा अनुदान मिला। उसने उससे एक छोटी श्रेडिंग मशीन खरीदी जिससे प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर अधिक कीमत पर बेचा जाने लगा। साथियों, गांव के युवाओं ने भी उसके साथ काम करना शुरू कर दिया था। किसी ने कचरा संग्रहण की जिम्मेदारी ली, किसी ने खाद निर्माण की तो किसी ने तैयार उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों में गांव की तस्वीर ही बदल गई श्रोताओं। गांव स्वच्छ हो गया, किसानों की आय बढ़ी, महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिल गया, युवाओं को गाँव छोड़कर शहर जाने की जरूरत भी कम पड़ने लगी।
इसी तरह एक बार अर्जुन को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा करने के लिए बुलाया गया। मंच से उसने कहा श्रोताओं कि मैंने कभी कचरे को समस्या नहीं माना, मैंने उसमें अवसर देखा। दुनिया जिसे बेकार समझती है वही किसी दूरदर्शी इंसान के लिए सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। उसके शब्दों ने हजारों युवाओं को प्रेरित किया। अर्जुन की सफलता देखकर आसपास के कई गांवों ने भी कचरा पृथक्करण और रिसाइकलिंग की शुरुआत की। देखते ही देखते साथियों पूरा क्षेत्र स्वच्छता और रोजगार का उदाहरण बन गया। आज अर्जुन का छोटा सा प्रयास एक सामाजिक आंदोलन बन चुका है। उसने साबित कर दिया श्रोता साथियों कि कमाई केवल बड़े उद्योगों से नहीं होती, बल्कि सही सोच, मेहनत और नवाचार से कचरे जैसे साधारण चीज भी समृद्धि का माध्यम बन सकती है। तो दोस्तों ये थी कहानी, और ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हर समस्या अपने भीतर एक अवसर छिपाए होती है। कचरा तभी कचरा है जब हम उसका सही उपयोग करना नहीं जानते हैं। स्वच्छता और रोजगार एक साथ बढ़ सकते हैं, छोटे प्रयास बड़ी परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। साथ ही हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सफलता का रहस्य संसाधनों में नहीं बल्कि दृष्टिकोण में होता है, और वो दृष्टिकोण हमारा सही होना चाहिए। जीवन हमें हमेशा नए अवसर देता है, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए सकारात्मक दृष्टि का होना बहुत जरूरी है। अगर एक युवा कचरे के ढेर में भविष्य देख सकता है श्रोताओं, तो हम भी अपने आसपास मौजूद छोटी छोटी समस्याओं में बड़े बड़े अवसर भी खोज सकते हैं। याद रखिए साथियों कि सफल लोग अवसरों का इंतजार नहीं करते, वे अवसरों का निर्माण करते हैं। और सच तो ये है कि जिस दिन हम कचरे को बोझ नहीं संसाधन मानने लगेंगे, उसी दिन स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत और आत्मनिर्भर भारत का सपना और अधिक मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कहानी, आगे भी कुछ छोटी मोटी बातें रह गई है, वो जरूर मैं आपसे करूंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको अर्जुन की एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी और कहानी का शीर्षक था कचरे से कमाई तक का सफर, आपसे कहना चाहूंगी श्रोता साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आज के समय में बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और उपभोक्तावादी जीवन शैली के कारण कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। पहले जहां कचरे को केवल गंदगी और बीमारी का कारण माना जा रहा था, वही आज वही कचरा आय, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। अगर कचरे का सही प्रबंधन किया जाए श्रोताओं, तो यह न केवल स्वच्छता लाता है बल्कि आर्थिक समृद्धि का भी मार्ग खुलता है, जिस तरह से अर्जुन का खुला था। इसीलिए कचरे से कमाई तक का सफर केवल एक विचार नहीं है दोस्तों, बल्कि आत्मनिर्भरता, नवाचार और सतत विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है। अक्सर हम देखते हैं श्रोता साथियों कि घर, बाजार और खेतों से निकलने वाले कचरे को बेकार समझकर हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन वास्तव में कचरे का बड़ा हिस्सा दोबारा उपयोग या पुनर्चक्रण, जिसे हम रिसाइकलिंग कहते हैं, ये सब योग्य होता है। जैविक कचरे से जैविक खाद और बायोगैस बनाई जाती है। प्लास्टिक, कांच, कागज और धातु जैसे सूखे कचरे को पुनर्चक्रित कर नए उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। अगर हम कचरे को सही ढंग से अलग करें, उसका वैज्ञानिक प्रबंधन करें, तो ये पर्यावरण की रक्षा के साथ आय का भी स्रोत बनती है। इसी के साथ साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में अपार संभावना है, फिर भी कई सारी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। लोगों में जागरूकता की कमी होती है, कचरे का पृथक्करण न करना, पर्याप्त प्रसंस्करण इकाइयों का अभाव, निवेश की कमी और बाजार तक पहुंच, ये सारी समस्याएं अभी भी हमारे सामने हैं। इन चुनौतियों का समाधान सामूहिक प्रयासों, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग से किया जा सकता है। कचरे से कमाई तक का सफर केवल आर्थिक लाभ का विषय नहीं है दोस्तों, बल्कि सोच बदलने का अभियान है। जिस दिन हम कचरे को बोझ नहीं बल्कि संसाधन मानने लगेंगे, उसी दिन स्वच्छता, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण का नया अध्याय शुरू होगा। आज आवश्यकता है कि प्रत्येक नागरिक एक संकल्प ले श्रोताओं, कि वो अपने घर से निकलने वाले कचरे का सही प्रबंधन करेगा, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेगा। यही छोटी छोटी पहल भविष्य में बड़ा परिवर्तन आधार बनती है। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे, कचरा बेकार नहीं है यदि सोच हो जिम्मेदार, तो सही प्रबंधन को अपनाएं, स्वच्छ भारत और समृद्ध भारत अपनाएं। याद रखिए, संसाधन वही नहीं जो प्रकृति देती है, बल्कि वह भी है जिसे हमारी समझ और मेहनत मूल्यवान बना देती है। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। जाने से पहले आपको पता बताना चाहूंगी, ताकि आपको हमारी आज की कहानी और इसमें जो बातें रही वो कैसी लगी, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी एक नई प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार साथी, आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी कशिश दीदी। आ गई हूँ फिर से कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की। मैं जैसा कि बच्चों आप सभी जानते ही हैं कि आज वार रविवार का दिन है और हर रविवार को हम आपको कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में कुछ नई कहानियों से रूबरू करवाते हैं। तो आज भी बच्चों मैं हाजिर हुई हूँ कुछ नई कहानियों के साथ में। उन कहानियों के नाम तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि बच्चों अभी हमारा समय है गीत संगीत सुनने का। तो क्यों ना हम शुरुआत गीत के साथ पहले कर ले और उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारी कहानियों की ओर। मैं आपको बताऊंगी कि आज के कार्यक्रम में मैं आपको कौन कौन सी कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। तो बच्चों पहले शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में आपकी अपनी दीदी कशिश दीदी के साथ में।

वेलकम बच्चों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि बच्चों, गीत तो यहाँ हमारा पूरा हो गया और बहुत ही प्यारा सा गीत था ये। और अब मुझे आपको ये बताना है कि आज के कार्यक्रम में हमारी पहली कहानी कौन से होने वाली है। तो बच्चों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो आपकी बहुत ही फेवरेट है। यानी कि बच्चों, आपने मोगली का नाम तो सुना ही होगा। हाँ मोगली, मोगली आपका दोस्त है ना बच्चों? मेरा भी है। तो आज मैं आपको मोगली के जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाने वाली हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं मोगली की कहानी से। तो बच्चों, सालों पहले गर्मियों के मौसम में एक दिन जंगल में सभी जानवर आराम कर रहे थे। अच्छे से आराम करके शाम के समय भेड़ियों का एक झुंड शिकार के लिए निकला। बच्चों, उनमें से एक दारुका नाम के भेड़िये को कुछ दूर जाते ही झाड़ियों से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। हाँ बच्चों, भेड़िया जब झाड़ियों के पास जाकर देखता है तब उसे एक बच्चा दिखाई देता है। वह बिना कपड़े के जमीन पर लेटा हुआ था। हाँ बच्चों, बच्चे को देखकर भेड़िया चौंक गया और उसे अपने साथ अपनी बस्ती ले गया। इस तरह बच्चों, वह इंसान का बच्चा था और इंसान का बच्चा भेड़ियों के बीच में रहने लगा। बच्चे को भेड़िये के बीच देखकर उस जंगल में रहने वाले शेर खान को गुस्सा आ जाता है। हाँ बच्चों, आपने मोगली वाली मूवी तो देखी ही होगी, उसमें शेर खान भी तो होता है ना। तो यहीं पर बच्चों, उस जंगल में रहने वाले शेर खान को उस इंसान के बच्चे को देखकर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वही उस बच्चे को इंसानी बस्ती से उठाकर खाने के लिए लाया था। अब आपको समझ आ गया ना बच्चों कि वो इंसानी बच्चा झाड़ियों के पीछे क्या कर रहा था। उसे तो शेर खान ही इंसानों की बस्ती से उठाकर लाया था। इसके आगे अगर आपको बताऊं बच्चों, तो भेड़िया अपने परिवार की ही तरह इंसान के उस बच्चे को भी पालता है। उसके परिवार में कुछ छोटे भेड़िए और उनकी माँ रक्षा थी। बच्चों, रक्षा ने उस बच्चे को मोगली नाम दिया। हाँ, तो वो इंसानी बच्चा बच्चों मोगली था। मोगली को एक परिवार मिल गया बच्चों। वह भेड़ियों को अपना भाई बहन समझकर उनके साथ रहने लगा। बच्चों, दारुका यानी कि जो भेड़िया था, उसने अपनी पत्नी रक्षा को ये बता दिया था कि इस बच्चे को शेर खान की नजरों से बचा कर रखना है, क्योंकि वो इस बच्चे को खाना चाहता है। बच्चों, रक्षा इस बात का पूरा ख्याल रखती थी। वो अपने बच्चों और मोगली को कभी भी अपने नजरों से दूर जाने नहीं देती थी। फिर क्या हुआ, कुछ समय बीतने के बाद जंगल में रहने वाले सभी जानवर मोगली के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और दूसरी तरफ शेर खान दूर से ही मोगली पर नजर गड़ाए बैठा रहता था। वह मोगली का शिकार करने के लिए उचित समय के इंतजार में था कि कब मोगली अकेला उसे दिखे और वो उसे खा जाए। बच्चों, भेड़ियों के झुंड का नेतृत्व एक बुद्धिमान भेड़िया कर रहा था। उस दल में बल्लू नाम का भालू और बघीरा नाम का एक पैंथर भी था। सभी एक जगह एकत्रित होकर मोगली को लेकर बातें करने लगे। बच्चों, उनका कहना था कि हमें मोगली को भेड़िये की तरह ही पालना होगा। इस पर झुंड का सरदार अपने साथी बघीरा और बल्लू को बोलता है कि तुम दोनों मोगली को जंगल के नियम कानून सिखाओगे, साथ ही मोगली की रक्षा भी तुम ही दोनों करोगे। इस तरह बच्चों, मोगली को जंगल में रहते रहते लगभग एक साल बीत जाता है। मोगली धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है बच्चों, और उसे बड़े होने तक बल्लू और बघीरा मोगली को सारे नियम कानून के साथ ही खुद की रक्षा करने का तरीका भी सिखा देते हैं। मोगली बड़े होने तक कई जानवरों की भाषा सीख जाता है बच्चों, साथ ही वह आसानी से पेड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना और शिकार करना भी सीख जाता है। इसी के साथ बच्चों, बघीरा ने मोगली को इंसानों द्वारा बिछाए गए फंदे और जाल से दूर रहने, साथ ही जाल में फंसने के बाद उससे बाहर कैसे निकला जाता है, इसके तरीके भी बघीरा ने उसे सिखाए थे। एक दिन बच्चों, समूह में रहने वाला एक भेड़िये का छोटा बच्चा शिकारियों के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। उस फंसे हुए भेड़िये को शेर खान खाना चाहता था। तभी शेर खान से पहले मोगली वहां पहुंचकर नन्हे भेड़िये को बचा लेता है। शेर खान को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है बच्चों। फिर शेर खान
कुछ दिनों बाद मोगली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। बच्चों, गुस्से में शेर खान फैसला लेता है कि वो मोगली को पकड़ने के लिए बंदरों की सहायता लेगा। बच्चों, सारे बंदर जंगल के दूसरे हिस्से में रहते थे और वो सारे बंदर काफी खतरनाक थे। शेर की बातें सुनकर बंदरों का राजा मोगली को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बंदरों का राजा अपने सारे बंदरों को मोगली को पकड़ने का आदेश भी दे देता है बच्चों। और एक दो दिन कुछ बंदर मोगली पर नजर रखते हैं। सही समय मिलते ही मोगली का अपहरण करके उसे घने जंगल से घिरे एक पहाड़ पर ले जाते हैं। बच्चों, मोगली सोच रहा था कि उसके पहाड़ में होने की बात बघीरा या बल्लू को पता चल जाए। तब उसे आसमान में उड़ता हुआ एक चील दिखाई दिया। मोगली उस चील को आवाज लगाकर कहता है कि तुम मेरी मदद कर दो, मेरी यहाँ होने की खबर बघीरा और बल्लू को दे दो। तुम उन्हें यह कहना कि मुझे बंदरों ने यहाँ कैद करके रखा है। चील ने जैसे ही मोगली की बात सुनी बच्चों, तो वो जंगल की तरफ बघीरा और बल्लू के पास पहुँची। बघीरा और बल्लू को मोगली की जानकारी मिलते ही वे कौ नामक अजगर से सहायता मांगने पहुँचे। शुरुआत में तो कौ सीधे बघीरा और बल्लू को मना कर देता है। फिर वे कौ को मोगली के बारे में बताते हैं और मोगली के बारे में जानकर कौ उनकी सहायता करने के लिए राजी हो जाता है। बच्चों, सभी मोगली को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और जल्द ही कौ, बघीरा और बल्लू बंदरों के इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर तीनों छिपकर देखने लगते हैं। बच्चों, तीनों यह देखते हैं कि वहां सैकड़ों बंदर हैं। फिर थोड़ी देर बाद कौ कहता है कि अब मोगली को बचाने का समय आ गया है, चलो उसे बचाकर ले आते हैं। तभी तीनों बंदरों पर हमला कर देते हैं। बघीरा अपनी पंजों से बंदरों पर वार करता है, जिससे दर्द से बंदर चिल्लाने लगते हैं। तभी कुछ बंदर बल्लू पर टूट पड़ते हैं। यह देखकर को अजगर आता है और बंदरों को पूंछ से मारने लगता है। उसके बाद बंदर बच्चों डर डर कर भाग जाते हैं। फिर तीनों चैन की सांस लेते हैं और को मोगली को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाल देता है। और इस तरह बच्चों, मोगली आजाद होते ही पेड़ के पीछे दौड़कर छिप जाता है। फिर अचानक से बच्चों, बंदर हमला करके बघीरा को भी घेर लेते हैं। बघीरा को घेरने के बाद बंदर मोगली को फिर से पकड़ लेते हैं। मोगली देखता है कि बघीरा गिरा हुआ है। तभी उसे याद आता है कि बंदरों को पानी से डर लगता है। वो बघीरा को चिल्लाकर बोलता है कि तुम पानी में कूद जाओ, क्योंकि बंदरों को पानी से डर लगता है। बच्चों, बघीरा यह सुनते ही तुरंत पानी में कूद जाता है और बंदरों के चुंगल से बाहर निकल जाता है। और कुछ समय बाद बच्चों, मोगली बंदरों की कैद से भाग जाता है और फिर वह इंसानी बस्ती में पहुंचता है। उस बस्ती में पहुंचने के बाद उसे एक औरत मिलती है। उस औरत का नाम मेसुआ था, जिसका बच्चा सालों पहले एक शेर जंगल में उठाकर ले गया था। बच्चों, आपको बताऊं तो मोगली उसी औरत के साथ गांव में रहने लगता है। गांव वालों ने भी मोगली को रहने दिया और उसे जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। इसी के बाद बच्चों, कुछ दिनों बाद मोगली का भेड़िया भाई उसे गांव में देखता है। देखते ही भेड़िया सीधे मोगली के पास जाकर उसे बताता है कि शेर खान उसे मारने की तैयारी कर रहा है। बच्चों, मोगली जान गया था कि शेर खान उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए मोगली ने उसे खत्म करने का एक प्लान बनाया। उस योजना में मोगली ने अपने भेड़िया भाइयों की भी सहायता ली। उसने भेड़िये से कहा कि शेर खान को एक घाटी पर ले आओ। शेर खान की घाटी पर पहुंचने के बाद बच्चों, मोगली ने दोनों तरफ से भैंसों का झुंड छोड़ दिया और खुद भी एक भैंसे पर बैठ गया। बच्चों, शेर खान भैंसों के झुंड के पैरों के नीचे आ जाता है। तभी शेर खान की मृत्यु भी हो जाती है। फिर मोगली बेखौफ होकर गांव वालों के साथ रहने लगता है। बच्चों, कुछ समय बीतने के बाद गांव के कुछ लोगों ने मोगली पर जादू करने का आरोप लगाया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। तब तक मोगली बड़ा हो गया था। वहां से निकलकर वो सीधे जंगल गया। बच्चों, वहां रहते हुए कुछ समय बीता ही था कि उसके भेड़िये भाइयों और बहनों की मृत्यु हो गई। वह अकेले उदास घूमने लगा। तभी उसकी मुलाकात दोबारा मेसुआ से हुई। बच्चों, मोगली अपनी सारी कहानी मेसुआ को बताता है
और मेसुआ को यह यकीन हो जाता है कि उसके जिस बेटे को शेर उठाकर ले गया था वही मोगली है। मेसुआ अपनी कहानी मोगली को बताती है और फिर दोनों साथ में रहने का फैसला करते हैं। बच्चों, इसके बाद मोगली इंसानों की बस्ती में खुशी खुशी रहने लगता है और समय मिलने पर जंगल जाकर अपने दोस्तों से भी मिलता है। तो बच्चों, यह था मोगली के जीवन से जुड़ा हुआ एक किस्सा, जिसमें हम ये जान पाए कि किस प्रकार से मोगली जानवरों के साथ भी रहकर जानवरों की भाषा सीख गया। तो बच्चों, इस तरीके से हम जान पाए कि किस प्रकार से हौसला रखने पर हर मुश्किल दूर हो जाती है, साथ ही हर इंसान को पशु पक्षियों के संग प्यार से पेश आना चाहिए और वक्त पड़ने पर वो दोस्त बनकर हमारी मदद भी कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई जानवर दोस्त है तो उससे दोस्ती आपको कभी नहीं तोड़नी है। और साथ ही कभी कभी बच्चों, इंसान भी हमारे काम आते हैं और कभी कभी जानवर के दोस्त भी हमारे काम आते हैं। तो बच्चों, यह तो हमारी कहानी पूरी हो गई। अब मुझे बढ़ना होगा अगली कहानी की ओर। लेकिन अगली कहानी की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर सुनवाना चाहूंगी एक और प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिएगा बच्चों कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के में और सुनते रहिएगा आपका अपना पसंदीदा रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

बच्चों, जैसा कि हमारा गीत तो यहाँ पर पूरा हो गया और बहुत ही प्यारा सा गीत भी था यह। और गीत से पहले मैंने आपको मोगली की कहानी सुनाई थी कि किस प्रकार से मोगली जंगल में रहकर जंगल की सारी व्यवस्था को सीख पाया था। अब यही बच्चों, मैं आपको बताती हूँ दूसरी कहानी के बारे में। बच्चों, हमारी जो दूसरी कहानी है वो थोड़ी सी अनोखी है, यानी कि इस कहानी का नाम है अनोखी तरकीब। बच्चों, ये कहानी अगर मैं शुरू करूँ तो बहुत पुरानी बात है। एक अमीर व्यापारी के यहाँ चोरी हो गई थी। बच्चों, बहुत तलाश करने के बावजूद सामान न मिला और न ही चोर का पता चला। तब अमीर व्यापारी शहर के काजी के पास पहुंचा। हाँ बच्चों, काजी के पास, और चोरी के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। बच्चों, सब कुछ सुनने के बाद काजी ने व्यापारी के सारे नौकरों और मित्रों को वहाँ पर बुलाया। जब सब सामने पहुँच गए तो काजी ने सबको एक एक छड़ी दी। सभी छड़ियाँ बच्चों बराबर थी, न कोई छोटी थी और न कोई बड़ी थी, यानी कि सभी जो छड़ियाँ थी वो एक ही आकार की और एक ही लंबाई की थी। बच्चों, सबको छड़ी देने के बाद काजी बोला, इन छड़ियों को आप सब अपने घर ले जाएं और कल सुबह वापस मेरे पास लेकर आए। इन सभी छड़ियों की ये खासियत है कि यह चोर के पास जाकर एक उंगली के बराबर अपने आप बढ़ जाती है। जो चोर नहीं होता उसकी छड़ी ऐसी की ऐसी रहती है, न बढ़ती है और न ही घटती है। इस तरह मैं चोर और बेगुनाह की पहचान कर लेता हूँ। बच्चों, काजी की बात सुनकर सभी अपनी अपनी छड़ी लेकर अपने अपने घर चल दिए। उन्हीं में से व्यापारी के यहाँ चोरी करने वाला चोर भी था। जब वह अपने घर पहुँचा तो उसने सोचा कि अगर कल सुबह काजी के सामने मेरी छड़ी एक उंगली बड़ी निकली तो वह तो मुझे तुरंत पकड़ लेगा, फिर न जाने वह मुझे सबके सामने कैसे सजा देगा। इसलिए क्यों न इस विचित्र छड़ी को एक उंगली काट दिया जाए ताकि काजी को कुछ भी पता ही ना चले। बच्चों, चोर यह सब सोचकर खुश हो रहा था और फिर उसने तुरंत छड़ी को एक उंगली के बराबर काट दिया। फिर उसे घिस घिस कर ऐसा कर दिया कि पता ही ना चले कि वह काटी गई है। फिर बच्चों, अपनी इस चालाकी पर चोर बहुत खुश था और खुशी खुशी चादर तान कर सो गया। अब बच्चों, सुबह चोर अपनी छड़ी लेकर खुशी खुशी काजी के पास पहुंचा। वहां पहले से काफी लोग जमा थे। काजी ने एक एक करके छड़ी देखना शुरू किया। जब चोर की छड़ी देखी गई तो वह एक उंगली छोटी पाई गई। उसने तुरंत चोर को पकड़ लिया और फिर उससे व्यापारी का सारा माल निकलवा लिया और फिर बच्चों, चोर को जेल में डाल दिया गया, जिसके कारण पूरे गांव में काजी की अनोखी तरकीब की प्रशंसा हुई। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की कहानी अनोखी तरकीब। हमने इस कहानी के माध्यम से ये जाना कि हमें कभी भी चोरी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं ना बच्चों कि चोरी करना कितनी गंदी बात होती है। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हम ये तो जान गए कि चोरी करना तो पाप है, लेकिन एक बात और हमने जानी, वो ये बच्चों कि काजी की छड़ी कोई जादुई छड़ी नहीं थी। उसने तो अपने दिमाग का उपयोग करके चोर का पता लगा ही लिया। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की दोनों कहानियाँ। हमने पहली कहानी में मोगली के जीवन के बारे में जाना था और दूसरी कहानी में हमने चोर का पता लगा लिया। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में ये जो दो कहानियाँ मैंने आपको सुनाई है वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। और अब समय भी हो चला है बच्चों कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।

प्यारे बच्चों, इस गीत के बाद मैं कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी और आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में जो

शून्य पाँच एक दो तीन चार। तो बच्चों फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।

थारी में पासो लावो चूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान में। कहते हैं दोस्तों कि संघर्ष इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि उससे उसकी असली ताकत से मिलाने आता है। हमारे गांवों और समाज में भी ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों, कठिन परिस्थितियों और कई चुनौतियों के बावजूद हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हौसले, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का रास्ता तैयार किया। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम एक ऐसी ही महिला से ढेर सारी बातचीत जानने वाले हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारे मेहमान में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले बताया था कि संघर्ष जो है वो इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि उसे उसकी असली ताकत से मिलवाने आता है। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं समुदाय की एक ऐसी ही प्रेरणादायक साथी से। हम जानेंगे उनके जीवन का सफर, संघर्ष की कहानी, चुनौतियों से लड़ने का साहस और उनकी उपलब्धियों के बारे में जिन्होंने उन्हें समाज में एक नई पहचान दिलाई। तो आइए हार्दिक स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज की ये प्रेरणादायक बातचीत। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आपका क्या नाम है?
1: मेरा नाम है अमली ग्रासिया और मैं गांव अमलीपाड़ा से हूँ, ब्लॉक सज्जनगढ़ से हूँ।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि आप गांव अमलीपाड़ा की रहने वाली हैं और आज आप हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से जुड़ रही हैं और हमारे सभी श्रोता साथी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम ऐसी शख्सियत को जोड़ते हैं जो अपने जीवन में संघर्ष करते हैं और अपने जीवन को नई दिशा देते हैं। तो कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका बचपन किस कदर बीता।
1: सबसे पहले तो मेरे बचपन में मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, केजी से लेकर मैं 8वीं कक्षा तक मैं प्राइवेट स्कूल में मिशन में पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद जब मैं 8वीं कक्षा पढ़ी उसके बाद तुरंत मेरी गर्मी की छुट्टियों में मेरी शादी करवा दी। और मेरे पिता तब नेता भी थे।
0: बिल्कुल।
1: तो उन्होंने शादी करा दी। उसके बाद मेरे ससुराल में मैं पढ़ाई आगे करना चाहती हूँ और पढ़े भी, मेरे 2 बच्चे हो गए तो भी मैंने 10वीं और 12वीं मैंने 2 कक्षा मैंने पढ़ाई करके मैंने 12वीं पास की शादी करके भी। उसके बाद हमारे परिवार में कुछ मान लो सास ससुर के साथ कुछ हुआ भी, दुख भी आया मेरे को, इस दुख से आगे मैं बाहर भी निकल नहीं पाती थी तो भी मैं उनसे भी बाहर निकलने की कोशिश की।
0: जी जी।
1: उनके बच्चों के पापा से भी मैंने उनको समझाया कि अलग अलग गांव में ये समूह जोड़ रहे हैं तो मेरे को मीटिंग में जाने दो। मैं पहले तो किसी संस्था से जुड़ी नहीं थी।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन गांव में कोई मीटिंग करने के लिए आते थे तो उनके पास जाके बैठती थी क्योंकि मैं पढ़ी लिखी होने के नाते मेरे को लोग बुलाते थे।
0: बिल्कुल।
1: कि उनके गांव में उनके परिवार में कोई पढ़ी लिखी महिला नहीं है तो वो लोग आते थे तो उनके साथ में बैठती थी, उनकी बातें सुनती थी।
0: जी जी।
1: फिर धीरे धीरे मेरे को अनुभव हुआ मीटिंग में बैठने से तो उनकी बातें सुनी तो मैंने फिर महिलाओं के साथ मैंने संपर्क किया।
0: जी जी।
1: फिर हमने समूह बनाया, महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाया।
0: बिल्कुल।
1: समूह बनाया उसके बाद महिलाओं को मैंने सभी को एक्टिव महिला बनाई, महिलाओं से बातचीत की, हमने 20-20 रुपया का हमने बचत की। बचत के माध्यम से मैंने महिलाओं को लोन भी दिलवाया।
0: बिल्कुल।
1: लोन दिलवाया तो महिला ने मान लो किस्त के आधार पे वो भी लोन भरा। उसके बाद में समूह के साथ साथ में मेरे को सिलाई सीखने का मौका मिला।
0: जी जी।
1: तो मैंने अपने बांसवाड़ा बड़ौदा स्वरोजगार में मैंने 1 महीने की मैंने सिलाई सीखी क्योंकि घर पे ही मैं मेरा रोजगार कर सकूं।
0: जी जी।
1: तो मैंने लॉकडाउन के टाइम में भी मैंने घर पे ही सिलाई की। इसके बाद मान लो सिलाई का काम किया तो मैं 10,000, 12,000, 15,000 रुपया में थोड़ा थोड़ा मान लो कमाने लगी। उसके बाद फिर मेरे को अनुभव हुआ कि राजीविका के माध्यम से जो बीसी बैंक मित्र का पद निकला।
0: जी जी।
1: तो फिर मैंने बीसी का भी मैंने काम किया। मेरे को कंप्यूटर भी नहीं आता था, मेरे को माउस कैसे बोले वो भी मेरे को पता नहीं था।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन मैंने कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग की, उसके साथ मैंने बीसी का भी काम किया।
0: जी जी।
1: और महिलाओं का लोगों का मैंने पैसा भी ट्रांसफर किया, उनका लिया, उनको ट्रांसफर मान लो उनको बैग से मान लो वहाँ पे बाजार हमारी बहुत दूर पड़ती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: दूर पड़ती है बाजार तो वहाँ के मान लो कोई ऑटो भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, कोई बुजुर्ग लोग आने जाने में तकलीफ होती है।
0: जी जी।
1: उन लोगों को मैंने साथ ताकि उनके घर घर जाके मैंने उनका पैसा भी उनको निकाल के दिया। उसके बाद धीरे धीरे अपनी ये संस्था फिर रही, उन्होंने हमको जैविक के बारे में हमें बताया।
0: बिल्कुल।
1: जैविक के बारे में बताया तो जैविक क्या है लोग समझते नहीं थे, पहले पुरानी पद्धति में तो लोग करते थे क्योंकि देसी खाद और देसी दवाई और जो बुखार भी आ जाता था वो लवली करके वो बांध देते थे तो उनका बुखार भी खत्म हो जाता था।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो ऐसी मैंने कई संस्था से ऐसी बातें सुनी तो मैंने घर आके मैंने भी जैविक अपनाया, मैंने वर्मी खाद बनाया।
0: बिल्कुल।
1: मैंने अजोला भी बनाना शुरू किया, जो मैंने देखा वो मैंने अजोला बनाया, वर्मी कंपोस्ट बनाया, 10 पन्नी वाली दवाई भी बनाई, जीवामृत भी बनाया, मिर्च लहसुन और प्याज वाली दवाई भी बनाई। इसी प्रकार मैंने महिलाओं के बीच में महिलाओं को इकट्ठा करके 30-35 महिलाओं के 50 महिलाओं के ऐसे मैंने 20-20 ग्राम संगठन की बैठक की, CLF की बैठक की, उसी प्रकार मैंने सब महिलाओं को ये जैविक के बारे में बताया। साथ ही मेरे को अलग अलग जो मीडिया वाले आए कि ये महिला मान लो इतना काम कर रही है, मीडिया वालों ने मेरा वीडियो भी लिया और कोई अलग अलग मान लो जयपुर से, दिल्ली से, कहीं वो विदेश से भी लोग मेरे घर पे आए, उन्होंने मेरे को जानकारी दी कि आपने कैसे सीखा, तो उनको मैंने पूरी मेरी डिटेल मैंने बताई।
0: बिल्कुल।
1: उसके बाद मैं धीरे धीरे फिर मैं बाहर निकली, ये सब करना मैंने सीख लिया और फिर अभी भी हाल में अपनी ये इस वागदरा संस्था से मैं जुड़ी, तो इस संस्था में मेरे को बहुत अनुभव हुआ जैविक खेती कैसे करना है। तो जैविक भी खेती मैंने की, उन्होंने मेरे को सपोर्ट दिया।
0: बिल्कुल।
1: कि वर्मी कंपोस्ट दिया, नाडेप दिया, अजोला भी दिया, वो एक घास आती है जाड़ी वाली वो भी हमको दिया, वो भी मैंने की। फिर मैंने बायोगैस, मेरे वागदरा सस्ता नहीं तो मेरे को दो प्रकार के मेरे को बायोगैस मिले।
0: जी जी।
1: तो मेरे को पूना भी जाने का मेरे को मौका मिला।
0: बिल्कुल।
1: वहाँ भी मैं गई।
0: बिल्कुल, जैसा कि आप आपका जीवन परिचय हमें बता रही हैं कि आपने जीवन में कई सारा संघर्ष किया, जैसा कि आपने वागदरा संस्था से जुड़ने से पहले जो संघर्ष किए उसके बारे में जानना चाहूंगी कि आपके गांव में तो बहुत सी बार महिलाएं जब इधर से उधर जाते होंगे तो लोग इधर उधर की बहुत सारी बातें करते हैं, तो उन सारी चीजों को आपने कैसे फेस किया? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सी जो महिलाएं होती हैं वो इन सारी चीजों को सुनकर डर जाती हैं, वो ये सोचती हैं कि मुझे क्या करना है, अगर मैं घर से बाहर निकली तो लोग मेरी बातें करेंगे, तो इन सारी चीजों को आपने कैसे जवाब दिया?
1: इन सारी चीजों को भी मेरे को इस बातों से मेरे को बहुत सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरे ससुर थे वो मैं जाती थी तब मान लो मेरे पति को बोलते थे कि तेरी औरत कहाँ जा रही है।
0: बिल्कुल।
1: तो भी मेरे पति ने मेरे को सपोर्ट दिया कि मेरी औरत वो कमाने के लिए जा रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ, वो भी मजदूरी कर रही है, वो आगे बढ़ेगी जाएगी तब तो वो सीखेगी।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे को मेरे पति मेरे को साथ में छोड़ने के लिए आए, जहाँ भी मीटिंग थी वहाँ पे छोड़ा मेरे को, जहाँ भी फिर धीरे धीरे मेरे को आगे से मान लो ट्रेनर के रूप में मेरा चयन हुआ, तो उन्होंने मेरे को दिल्ली जाने का मौका दिया, जयपुर जाने का मौका दिया, मैं अकेली अकेली गई, पूना में मैं भी अकेली गई, और उसके बाद फिर मेरे को जहाँ भी भेजना वहाँ का मौका मिला वो उन्होंने छोड़ा नहीं, कोई बात नहीं वो निकलेगी वो जाएगी तो वो सीखेगी।
0: बिल्कुल।
1: यू करके मेरे को मेरे पति ने भी मदद की, उनके खातिर मैं आज बहुत आगे भी हूँ।
0: जी जी।
1: और आज भी हाल में उनकी मदद से मैं काम कर रही हूँ, और ये अपने वागदरा संस्था के माध्यम से मैंने जो अज्वला सीखा है, वर्मी सीखा है, और बायोगैस के माध्यम से और जैविक खेती मैंने की है, जो मेरा खेत पूरा बिल्कुल जैविक का है, उसके माध्यम से मेरे को दो बार मेरे को सम्मानित में जिला स्तर पर हो चुकी हूँ।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रही हैं कि आप जिला स्तर पर सम्मानित हो चुकी हैं, आप विदेश भी अकेली चली गई हैं जैसा कि आप बता रही हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपको कैसा लग रहा है, आप अपने दम पर आत्मनिर्भर बनी हैं, तो आपको ये सारी चीजें पाकर कैसा सुकून मिल रहा है?
1: मेरे को अब बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पहले की स्थिति मेरे को अभी जीवन में भी अगर मेरे को याद आ जाए तो मेरे को बहुत दुख लगता, मैं ऐसे ही रहती तो मैं अभी किस जगह पे हूँ, और अगर मैं घर से इनका सामना नहीं करती तो मैं किस जगह पे रहती।
0: बिल्कुल। तो आप दूसरी महिलाओं को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी जिनकी स्थिति बहुत सी बार ऐसी हो जाती है और वो हार मान लेती हैं?
1: उनको मैं जाके समझाती हूँ कि उनको महिलाओं को कोई मान लो कोई उनका पति भी परेशान करता है, कोई सास ससुर भी परेशान करता है, तो उनको जाके उनके सास ससुर को भी मैं समझाती हूँ, बीच में मान लो थाने में कोई मान लो ऐसा केस भी आ जाता है तो वहाँ भी मैं सुलझाने के लिए मैं जाती हूँ, और महिलाओं के प्रति में कहीं पे कोई भी महिला के ऊपर दुख आ पड़े उनका दुख में पूरा मैं मेरे ऊपर लेती हूँ, उनको समझाती हूँ, समझा बुझा के उनको भेजती हूँ उनके, लेकिन उसका रिश्ता टूटने नहीं देती हूँ। ऐसा कोई भी केस भी हुआ, थाने में भी हुआ, कलेक्टर तक SP तक गया वो भी मैंने सोल्व किया, महिला थाने में भी इनको मैंने लड़ झगड़ के कैसे भी करके उन महिलाओं का भी सामना किया, और महिलाओं को फिर उनके जगह पे मैंने समझा बुझा के उसको रखा।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि आपने आपके जीवन में कई बदलाव देखे हैं और कई चुनौतियां भी देखी हैं और उनसे लड़कर आप बहुत अच्छा काम अभी के समय में कर रही हैं, तो आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं इनको ये भी संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी मान लो ये जो अपने तो कहीं भी मीटिंग हुए, कहीं भी मान लो संगठन की बैठक हुए, तो संगठन से जुड़ के कुछ न कुछ जो अपनी संस्था बता रही है उसके आधार पर सुन के वो काम करे, उसके बाद वो खुद अपने आत्मनिर्भर बने, खुद के पैरों पे खड़े हो सके, वो भी मेरे जैसा ही काम करे, क्योंकि मैं भी इतनी परेशानी थी तो मैंने इधर उधर कोई भी एनजीओ से जुड़ी, उसके बाद मैंने वो बीसी का काम किया, सिले का काम किया, और अभी मैं एक बिजनेस का काम भी मैंने शुरू किया है, जो कि मैं मेरे घर पे ही मैं साबुन, अगरबत्ती, सरफ और शैम्पू ये सब कुछ मैं मेरे हाथों से बना रही हूँ। वो बिल्कुल बिना केमिकल का, बिल्कुल हर्बल ही है। साबुन भी अलग अलग वेराइटी के हैं, नीम का है, एलोवेरा का है, पपीता का है, मुल्तान की मिट्टी का है, और गुलाब के फूल का है, और ऑरेंज का है, ऐसे कई प्रकार के मैं हर्बल साबुन भी बनाती हूँ।
0: जी जी, तो जैसा कि आप ये साबुन बना रही हैं, तो फिर ये आप कहाँ बेचती हैं, क्या करती हैं, ये भी आप हमारे श्रोता साथियों को बताइए, ताकि अगर कोई महिला ऐसा कार्य करना चाहे, घर बैठे आत्मनिर्भर बनना चाहे, तो वो बन सके।
1: सबसे शुरुआत से मैं घर पे भी, मैंने मेरे दुकान पे भी बेचा, उसके बाद मैंने कुशल बाग मैदान में राज सखी मेला लगा था, मैंने मेरी स्टोर डाली थी, उसमें 4-5 दिन में मेरे 85,000 की बिक्री हुई साबुन की, अगरबत्ती की 4 दिन में। उसके बाद जहाँ पे मेरा फोन नंबर गया, उन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया। ऑर्डर पे मैं बांसवाड़ा भी जाती हूँ, कुशलगेट भी जाती हूँ, और कोई लोग घर पे भी आते हैं ऐसे ऑर्डर पे मंगाते हैं, तो ऑर्डर पे भी मैं दे देती हूँ, और घर पे आते हैं तो उनको भी घर पे भी दे देती हूँ। और मैंने इसी पूरे सज्जनगढ़ में 30-30 महिलाओं को मैंने ट्रेनिंग भी दी है, क्योंकि आप भी आत्मनिर्भर बनो, उनकी मदद भी खूब मैंने की है।
0: जी जी।
1: मेरे घर पे भी बुला के उनको मदद की है, उसी प्रकार मैंने खुद काम किया है। अभी भी मेरे साबुन अगरबत्ती ये भी मेरा काम चल रहा है, और जैविक वाला भी अभी चल रहा है। मेरे यूं नहीं कि मैं ये काम नहीं कर सकूं, जो मेरे को मैं सुनती हूँ, जो मैं देखती हूँ, वो मेरी देखी और सुनना, वो सब काम मैं करके ही रहती हूँ।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी से हमें अवगत करवाया है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसे कि दोस्तों, पिछले रविवार को कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन के माध्यम से हमने बात की थी सबके गांधी रचनात्मक कार्यक्रम प्रकरण के बारे में।
1: बिल्कुल।
0: अब यही आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि जी हमारे बीच में नया प्रकरण जुड़ने जा रहा है। आज हम बात करेंगे सबके गांधी गांधी जी के उपवास को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, गांधी जी के उपवासों में धार्मिकता नहीं थी, यह तो नहीं कह सकते, पर उनके उपवासों और धार्मिक उपवासों में गुणात्मक अंतर जरूर था। उनके अनेक प्रसिद्ध उपवासों की प्रक्रिया में मूल धार्मिक भावना के साथ सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिकता विद्यमान थी साथियों।
1: बिल्कुल।
0: जिनके कारण गांधी जी के उपवासों को नितांत नया ही परिणाम मिलता था। वैसे तो साथियों, भारत में उपवास कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। बहुत सारे धर्मों में एक धार्मिक विधि के रूप में भोजन के संबंध में किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण रखने की परंपरा जरूर है।
1: बिल्कुल।
0: हिंदू अनेक प्रसंगों में उपवास, एकाशन, फलाहार करते हैं अंजलि जी। वहीं मुस्लिम वर्ष में एक रमजान के महीने में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं। उन दिनों में श्रोता साथियों, दिन भर वे पानी तक नहीं पीते, बल्कि कट्टर मुसलमान तो थूक निगलना भी वर्जित मानते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उपवास के मामले में जैन शायद सबसे बढ़ चढ़ कर है। मात्र जैन मुनि ही नहीं, बल्कि जैन श्रावक भी लंबे लंबे उपवास करने के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत की कई भाषाओं में तो उपवास के लिए व्रत शब्द ही प्रचलित है।
1: बिल्कुल। श्रोता साथियों, गांधी जी के उपवासों में धार्मिकता नहीं थी, यह तो नहीं कह सकती, पर उनके उपवासों में धार्मिक उपवासों में गुणात्मक अंतर था। उनके अनेक प्रसिद्ध उपवासों की प्रक्रिया में कशिश मूल धार्मिक भावना के साथ सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिकता विद्यमान थी।
0: बिल्कुल।
1: जिनके कारण गांधी जी के उपवासों को नितांत नया ही परिणाम मिलता था। जिस वातावरण में गांधी जी का बचपन बीता था, उसमें उपवासों का एक खास स्थान था। विशेष रूप से उपवास के विषय में गांधी जी की मान्यता को निर्मित करने में उन्हें माता से विरासत प्राप्त हुई थी, ऐसा कहा जा सकता है। गांधी जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा में माँ पुतली बाई के व्रतों का वर्णन स्नेह व आदर के साथ किया है।
0: बिल्कुल।
1: बाल्यावस्था से ही गांधी जी ऐसे संस्कार लेकर बड़े हुए थे। कशिश के उपवास एक पवित्र वस्तु है। इन व्रतों ने, दृढ़ पालन ने उनके चरित्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा की होगी।
0: बिल्कुल।
1: माता के चंद्रायन व्रत का तो उन्होंने स्वयं की प्रशंसा युक्त वर्णन किया है। वैष्णव परिवार के बालकों में एकादशी, जन्माष्टमी ये व्रत जरूर रखे होंगे। प्रायश्चित के रूप में गांधी जी के पहले आंशिक उपवास उनकी किशोरावस्था में ही किए गए थे। एक बार आमों के मौसम में उन्होंने कई मित्रों को आम उत्सव मनाने के लिए आमंत्रित किया था। इसे मना लेने के बाद उन्हें ध्यान आया कि एक बहुत घनिष्ठ मित्र को तो वे उस दिन आमंत्रण देना ही भूल गए थे।
0: बिल्कुल।
1: इस भूल के प्रायश्चित के रूप में गांधी जी ने उस पूरे आम के मौसम में आम को हाथ तक नहीं लगाया, जबकि उन्हें आम बहुत भाते थे।
0: जी हाँ साथियों, अध्ययन के लिए इंग्लैंड जाते समय माता ने तीन प्रतिज्ञाएं करवाई थी। उनमें से एक शाकाहार की भी थी। उस प्रतिज्ञा के पालन के लिए इंग्लैंड के बहुत से समवयस्क लोगों के उपवास और कई बुजुर्गों की अजीजी, चिरोरी, समझाइश या उनके उल्हानों को सहन करते हुए एक प्रकार से प्रतिज्ञा ही स्वीकार कर ली थी। शाकाहार की प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने कई बार पूर्ण या आंशिक निराहार भी किए थे। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में डबरन से फिनिक्स आश्रम में जाकर जब से रहने लगे, तब से गांधी जी के जीवन में उपवास ने एक नया ही स्थान ले लिया था।
1: बिल्कुल।
0: स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए उन्हें पूरा भोजन छोड़कर फलाहार शुरू किया। यह फलाहार कई बार तो महीनों तक चला अंजलि जी। वहीं हम देखते हैं कि फिनिक्स आश्रमों में ही

0: उपवास में एक नया तत्व उभरा, जिसे कदाचित उनके उपवासों के गुणात्मक परिवर्तन के मूल में माना जाता है।
1: जी जी।
0: साथियों या विद्यार्थियों की किसी गलत या भूल के कारण गांधी जी ने अमुक अवधि तक भोजन छोड़ना शुरू किया। बाहर की दृष्टि से अगर देखें तो ये गलतियां करने वालों को एक प्रकार की सजा ही थी साथियों।
1: जी हाँ।
0: इसमें भाव सामाजिक जीवन में एक भूल को स्वयं अपनी भूल मानना था, दूसरों की भूल या पाप को अपनी भूल या पाप मानने का भाव आध्यात्मिक है। इसमें आत्मा की एकता की स्वीकृति है और फिनिक्स में इसका आरंभ हुआ आश्रम वासियों या आश्रम कुमारों के साथ तादत में से। वहीं कलकत्ते और दिल्ली के अंतिम दो उपवासों में समग्र समाज के एक बड़े भाग के पाप के लिए प्रायश्चित का भाव शामिल था।
1: जी जी।
0: जबकि फिनिक्स के उपवास का मूल कदाचित इतना शुद्ध आध्यात्मिक नहीं था। विद्यार्थी की भूल जानकर दोस्तों गांधी जी को क्रोध आया होगा। उस क्रोध को उन्होंने अहिंसा विषयक उस समय अपने परिपक्व विचारों के कारण विद्यार्थी को मार कर नहीं स्वयं अपने गाल पर थप्पड़ मार कर प्रकट किया था।
1: बिल्कुल।
0: परंतु गांधी जी अंजलि जी वहीं रुक नहीं गए। उस समय किए गए उनके अनशन के समय और उसके बाद संकलित आंशिक भोजन यानी कि फलाहार या फिर एकाश्न या फिर नमक त्याग के समय गांधी जी का सतत चिंतन इस बारे में चला। दोस्तों इस चिंतन में से उनका आध्यात्मिक विचार निकला है कि यदि समाज में रहने वाले सभी लोग एक आत्मा के धागे से बंधे हुए हो तो समाज में एक दूसरे को पारस्परिक सुख दुख और पाप पुण्य में भागीदार रहना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो कशिश, जैसा कि कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमारी आज बातचीत चल रही है गांधी जी के उपवास को लेकर, तो बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हां दिलेजी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में, जिसमें हम जान रहे हैं सबके गांधी, गांधी के उपवास प्रकरण को लेकर। श्रोता साथियों, ऐसे उपवास का प्रभाव जिसे लेकर उपवास किया गया हो उस पर सीधे या तिरछे पड़ता है, ये गांधी जी देखते जानते न हो ऐसा नहीं है। गांधी जी जैसे व्यक्ति जो उपवास पर उतर आए हो तो आश्रमवासी या विद्यार्थी को लज्जित होना पड़े, यह भी स्पष्ट था। फिर उनको देखकर दूसरों को भी उपवास करने की प्रेरणा मिले, यह भी संभव था। शुरुआत में ही उपवास यदि किसी एक या अधिक व्यक्तियों को ध्यान में रखकर किया गया हो कशिश, तो उपवास करने वाले और उस व्यक्ति के बीच प्रेम का संबंध होना चाहिए। बीमारी के उपाय के रूप में या किसी अतरंग व्यक्ति का स्खलन देखकर हुए उपवास के प्रकार में एक दूसरा बड़ा परिवर्तन आया। गांधी जी को स्वदेश आकर रहने के बाद से अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मालिकों के बीच विवाद के समय मजदूरों की हड़ताल चल रही थी, तब गांधी जी ने बीच में ही उपवास किया था। प्रसंग ऐसा बना कि 4-5 दिनों से हड़ताल चल रही थी। साबरमती के पार्ट पर रोजाना शाम को सभाएं होती और उसमें हड़ताल का उद्देश्य समझाया जाता। पत्रिकाओं द्वारा भी संपूर्ण अहिंसक संघर्ष का हेतु, उनकी काम करने की पद्धति, ये सभी समझाई जाती। दूसरों पर भी इस बात को लेकर बल दिया जाता कि किसी भी सूरत में वे अपनी प्रतिज्ञा भंग न करें। गांधी जी के साथ ही दिन में मोहल्ले मोहल्लों, कोठरियों कोठरियों जाकर मजदूरों की मनोवृत्ति कैसे काम करती है इसकी सूचनाएं भी लाते। रोज रोज कमाकर जीवन जीने वाले श्रमिकों का मनोबल थोड़ा कमजोर पड़ने लगा था। एक दिन छगनलाल गांधी खबर लाए कि जुगल किशोर की चाल में कई मजदूरों ने उन्हें कहा कि गांधी जी को या अनुसुया बहन को क्या परेशानी है, ये तो खाते हैं, पीते हैं और मोटर में आते जाते हैं, हम तो भूखे मर रहे हैं। ये बात सुनकर गांधी जी व्यथित हो उठे। इस संबंध में उनका चिंतन चलता ही रहा। शाम को नदी किनारे सार्वजनिक सभा में इस बात का उल्लेख करते हुए कशिश, अचानक गांधी जी ने घोषणा की कि जब तक इस मामले का समाधान नहीं होता तब तक वे भोजन नहीं करेंगे और वाहन में कभी नहीं बैठेंगे। ये बात सुनकर पूरी सभा आंदोलित हो उठी। मजदूर मर जाए तब भी, जब तक इस सवाल का सम्मानजनक हल नहीं मिलेंगे तब तक उन्हें हड़ताल चालू रखने की अपनी प्रतिज्ञा की गंभीरता समझ में आई।
1: जी हाँ साथियों, गांधी जी द्वारा किए जाने वाले उपवास की बात श्रीमती अनुसुया बहन ने भी सभा में ही सुनी थी। उन्होंने भी चुपचाप उस दिन से भोजन छोड़ दिया था। मजदूर इस बात को लेकर उत्तेजित हो उठे। अंजलि जी, उनकी समस्या के लिए उनके प्यारे नेता उपवास कर रहे हैं। दो एक व्यक्तियों ने तो यहाँ तक कहा कि अनुसुया बहन अगर खाना नहीं खाती तो वे स्वयं पेट में छुरी भोंक कर आत्महत्या कर लेंगे। गांधी जी ने भी अनुसुया बहन को उपवास आगे जारी न रखने के लिए समझाया। गांधी जी के आदेश से अनुसुया बहन ने तो उपवास छोड़ दिया। गांधी जी के उपवास चालू रहे। मिल मालिकों के प्रतिनिधि के रूप में अनुसुया बहन के भाई अम्बालाल साराभाई रोज गांधी जी के साथ चर्चा परिचर्चा करते थे। उनके साथ दूसरे मालिक भी वहां मिले। वे लोग इस प्रसंग में समाधान के लिए इस शर्त पर तैयार थे कि भविष्य में कभी आम हड़ताल न की जाए, उपवास चालू रहे। देश के कोने कोने से और विदेश से मालिकों के नाम तार आने लगे। गांधी जी के प्राण बचाने के लिए भी आप अपना आग्रह छोड़ दें, मजदूरों की तरफ से अब तो एक ही मुद्दे पर मांग होने लगी थी कि मजदूरी और महंगाई भत्ते के लिए अंतिम निर्णय हेतु सवाल पंच को सौंप दिया जाए।
0: जी जी,
1: आखिर ये मांग स्वीकार की गई। साथियों, पंच के लिए श्री आनंद शंकर ध्रुव का नाम सुझाया गया। श्री ध्रुव ने उससे पहले ऐसा मंतव्य दर्शाया था कि गांधी जी के उपवासों से मालिकों पर गलत दबाव पड़ रहा है। गांधी जी ने मजदूरों को श्री ध्रुव का नाम स्वीकार करने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें श्री ध्रुव की न्यायप्रियता और ईमानदारी के संबंध में पूरा विश्वास था।
0: जी जी,
1: पूरी समस्या पर गंभीरता पूर्वक अध्ययन करने के उपरांत अंजलि जी, श्री ध्रुव ने जो फैसला लिया वह 100% मजदूरों की मांग के पक्ष में ही था।
0: बिल्कुल कशिश, इस उपवास के दरमियान गांधी जी ने एक बात स्वीकार की थी कि उपवास से मालिकों पर दबाव आता था, परंतु साथ ही साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि ये उपवास मजदूरों को प्रतिज्ञा का महत्व समझाने और उनका मनोबल मजबूत करने हेतु ही थे।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हम कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये जान रहे हैं गांधी जी के उपवास प्रकरण को लेकर, तो ये बातें निरंतर हमारी अगले रविवार विशेष कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से अवश्य रहेंगी। लेकिन अभी कार्यक्रम से विदा लेते हैं। तो श्रोता साथियों, फिर मिलेंगे अगले रविवार विशेष कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को नमस्कार।
0: तो साथियों, सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
2: भाई ने बोलो, आप एकारे विचार करियो है कि जया पेड़ की छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जमी हवा में आपड़े हाल रह हूं, ये भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ूंगा, पानी ने बचाऊंगा, मैं आपड़ी धरती ने जीवन दान आलूंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है, ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने कोने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जाओ या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
2: तो हमरो बोलो, अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरो ने हाथों मुंह में जावो है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमीन माते नाम लकड़वो काटो नती, जय वरे अधिकार हमरा अपना भी, जानकारी सबनो हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
3: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो, हक मांगो, जमीन का कागज माते अपने नाम लकाड़ो।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े में देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया की निःशुल्क जाँच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार में गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: माटी में जमीन माटी तक जाना चाहूँ, मैं खेत हमारे बीज बोलू, मैं पसंद बहाई वो श्रम करू, तो पसे बाप दादा ने जमीन मत मारे अधिकार किन नती, सूर्य जन्म तक किस हकदार है, कानून ने आ बात मानी है, मैं पन्ना पोते मैं हक को ले सके, मैं रिवाज और सच में बदली सके, बाप दादा ने जमीन सूर्य ने अधिकार, सूर्य ने हक इन्हें पहचान।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की, जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न

0: गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, आपड़े आपड़ा भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जय वरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार, आओ भाइयों और बहनों, सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन हम कार्यक्रम दादी माँ की रसोई को लेकर हाजिर होते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको नई नई रेसिपी के बारे में बताते हैं, ताकि आप ये रेसिपी अपने घर पर बनाकर अपने परिवार वालों को खुश कर सकते हैं। और हम जो रेसिपी बताते हैं वो रेसिपी की सामग्री भी हमें घर पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ऐसी ही आसान आसान रेसिपी को लेकर हम हाजिर होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज भी मैं आपको आम की कैंडी और आम के पापड़ के बारे में बताऊंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहें कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन हम कार्यक्रम दादी माँ की रसोई के माध्यम से नए नए व्यंजनों के बारे में आपको बताते हैं। तो आज जैसा कि मैंने गीत से पहले कहा था कि मैं आपको आम की कैंडी के बारे में बताने वाली हूं और आम के पापड़ के बारे में बताने वाली हूं। तो ये दोनों ही रेसिपी बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में प्रतिभा जी आए हुए हैं। वो हमें बताएंगे कि आम की कैंडी किस तरह से बनती है, साथ ही आम का पापड़ किस तरह से बनता है और ये दोनों ही चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभकारी है। तो आइए हम सुनते हैं प्रतिभा जी से आम की कैंडी और आम के पापड़ के बारे में रेसिपी। नमस्ते प्रतिभा जी।
1: नमस्ते जागृति जी,
0: आपका स्वागत है प्रतिभा जी हमारे आज के इस कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।
1: धन्यवाद जागृति जी।
0: जैसा कि प्रतिभा जी आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में पधारे हैं और आप हमारे श्रोता साथियों को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई रेसिपी के बारे में बताने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या बताने वाले हैं।
1: जी मैं अभी तो क्या है कि जागृति जी कच्चे आम बहुत आ रहे हैं गर्मियों में, तो मैं आपको एक कच्चे आम की कैंडी बताना चाहूंगी।
0: बिल्कुल,
1: जो बहुत ही मतलब आसान से आपके घर में ही सामान मिल जाएगा और इसे आप बनाकर घर पे खा सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि प्रतिभा जी आपने बताया कि आज आप आम की कैंडी के बारे में बताने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि गर्मियों का मौसम है और आम तो अभी बहुत सारा आए हुए हैं, तो हमारे श्रोता साथियों के लिए तो ये रेसिपी तो बहुत ही अच्छी होगी ताकि वो घर पर बनाकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप आम की कैंडी कैसे बनाते हैं उसकी सामग्री के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताइए।
1: जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं श्रोता साथियों को नमस्कार कहना चाहूंगी। कच्चे आम की जो कैंडी है उसके लिए आपको घर में ही बेसिक सारे सामान मिल जाएंगे। कच्चे आम हमको चाहिए होंगे 500 ग्राम, मिश्री या आप शक्कर भी यूज कर सकते हैं, चीनी जिसको कहते हैं। मिश्री लें तो धागे वाली लें 500 ग्राम, ठीक है। आप केसर या हल्दी का भी यूज कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगी, ठीक है। और एक कॉर्नफ्लोर आता है और घी 1 चम्मच, बस इतनी सी सामग्री आपको चाहिए।
0: एक बार पुनः आप हमारे श्रोता साथियों को ये सामग्री नोट करवा दीजिए।
1: जी, कच्चे आम 500 ग्राम ले लीजिएगा, कॉर्नफ्लोर 3 चम्मच, घी 1 चम्मच, मिश्री धागे वाली 500 ग्राम अगर नहीं हो तो आप शक्कर का भी उपयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: केसर या हल्दी जो भी हो उसका उपयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल प्रतिभा जी, तो जैसा कि प्रतिभा जी ये तो आपने हमारे श्रोता साथियों को आम की कैंडी बनाने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए उसके बारे में बताया, यही हम आपसे उसकी विधि के बारे में जानना चाहेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं।
1: जी बिल्कुल, सबसे पहले हम जो 500 ग्राम आम है ना उनको लेकर उनको अच्छे से धुल लेंगे। फिर कुछ भी नहीं करना है, वो सीधे जो आम है कच्चे आम है ना उनका छिलका उतारना कुछ नहीं करना, उनको चारों तरफ जो गोल एरिया है उस तरफ से चाकू से उसमें कट लगा देंगे चारों तरफ।
0: बिल्कुल,
1: तो सारे आमों में ऐसे ही हम कट लगा देंगे। फिर एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें एक ऐसा स्टैंड रख देंगे उसके ऊपर हम छलनी रख सके।
0: जी हाँ,
1: तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे उसमें, 2 कटोरी या 3 कटोरी के करीब, थोड़ी बड़ी कटोरी होनी चाहिए है ना, और उसमें फिर वो छलनी रख देंगे उसके ऊपर, उसके ऊपर आम रख देंगे छलनी में और उसको ढक देंगे, करीब 10 मिनट तक उसको ढक के पका लेंगे।
0: जी हाँ,
1: फिर उसके बाद हम चाकू लेके उसको चेक कर लेंगे कि आम पक गया है कि नहीं पक गया है। आपको कलर से भी पता चल जाएगा कि आम पक गया है।
0: बिल्कुल,
1: ठीक है। फिर उस आम को हम बाहर निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेंगे, फिर उसका जो गूदा है वो हम निकाल लेंगे सारा।
0: जी,
1: गूदा निकालने के बाद एक मिक्सर ग्राइंडर ले लेंगे, मिक्सी का जार ले लेंगे, उसमें वो पल्प जो हमने गूदा निकाला है वो डाल देंगे और मिश्री को हम पहले से ही कूट के रख लेंगे, क्योंकि मिश्री धागे वाली जो होती है वो थोड़ी टुकड़े टुकड़ों में रहती है।
0: जी जी,
1: तो उसको हम एक खलबट्टे पे कूट लेंगे।
0: बिल्कुल,
1: और फिर वो पल्प जो आपने डाला है ना गूदा मिक्सी के जार में, उसमें 2-3 चम्मच डाल देंगे मिश्री और फिर उसको चला देंगे मिक्सर ग्राइंडर में। फिर बाद में देखेंगे कि अगर वो बहुत ही मतलब क्रीमी नहीं हुआ है तो फिर उसमें 2-3 चम्मच डाल के फिर उसको वापस से चला के उसको मतलब एक क्रीमी लुक लेकर आना है उसमें। उसके बाद एक कढ़ाई ले लीजिएगा,
0: जी,
1: उसमें वो पल्प डाल दीजिएगा और उसके बाद जो मिश्री जितनी भी बची मिश्री है वो डाल दीजिएगा और फिर धीमी आंच पे उसको करीब 10 से 10-12 मिनट तक पकाइएगा।
0: बिल्कुल,
1: जब वो 10-12 मिनट तक पक जाए तो वो उसमें क्या करिएगा, कॉर्नफ्लोर जो आप मैंने बताया था ना 3 चम्मच, उसमें बस 3 चम्मच ही पानी डालिएगा, ज्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो वो फिर उसको मॉइस्चर सुखाने में फिर दिक्कत लगेगा।
0: जी बिल्कुल,
1: तो वो करके फिर उसको चलाते रहिएगा बराबर 5 मिनट तक। जब ये हो जाए तो उसके बाद आपको पता ही चलने लगेगा कि वो कढ़ाई छोड़ने लगता है। उसमें बस एक चम्मच घी डाल दीजिएगा, फिर उसको ठंडा होने दीजिएगा। एक थाली ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी चारों तरफ लगा के
0: जी जी।
1: जो वो बना हुआ है ना उसको डाल दीजिए,
0: पूरा
1: गूदा उसको फैला दीजिए। वो ठंडा हो जाए फिर उसके छोटे छोटे पीस आप अपने हिसाब से, जैसे भी काटने हो, चौकोर, ट्रायंगल, जैसे भी काटने हो आप काट के
0: अपनी मर्जी अनुसार काट सकते
1: हैं।
0: बिल्कुल,
1: फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद जो मिश्री थोड़ी सी बची हुई है उसमें उसको लपेट के और आप इसको करीब 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि प्रतिभा जी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे श्रोता साथियों को आम की कैंडी के बारे में बताया कि किस तरह से आम की कैंडी हम घर पर ही बना सकते हैं और सामग्री भी हमें घर पर ही उपलब्ध हो जाती है, तो ये आम की कैंडी की सामग्री और विधि के बारे में तो आपने बताया, यही हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि इसके फायदे क्या होते हैं।
1: देखिए, कच्चे आम की कैंडी स्वाद में तो चटपटी होती है, ठीक है, इसके कई स्वास्थ्य फायदे भी हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि इसमें भरपूर मात्रा में डाइट्री फाइबर होता है जो आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर पाचन क्रिया को सुधारता है
0: और
1: कब्ज जैसी समस्याओं में भी राहत दिलाता है। कच्चे आम से शरीर को ठंडक मिलती है, डिहाइड्रेशन से बचाने में भी मदद करता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी हम कहते हैं, उसको भी ये बढ़ाता
0: है। बिल्कुल,
1: ये पेट में अच्छे बैक्टीरिया को भी बढ़ावा देता है और आंतों में जो माइक्रोबायोम संतुलन को बनाए रखने में ये मदद करता है। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए जागृति जी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है और स्वादिष्ट एक मतलब स्नैक टाइप है ये, जिसे आप घर पे आसानी से बना सकते हैं।
0: जी हाँ, तो जैसा कि प्रतिभा जी आज आपने बहुत अच्छा बताया कि आम की कैंडी किस तरह से बनती है, इसके लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए, साथ ही इसके फायदों के बारे में, तो प्रतिभा जी आगे भी हम जानेंगे आम के पापड़ के बारे में, आपसे ही रेसिपी के बारे में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
2: तुम

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। और जैसा कि गीत से पहले प्रतिभा जी जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें आम की कैंडी के बारे में बताया था कि किस तरह से आम की कैंडी बनाई जाती है और उसके लिए सामग्री क्या क्या चाहिए। यही प्रतिभा जी हमारे साथ जुड़े हुए, अब हम उनसे जानते हैं आम के पापड़ के बारे में।
1: जी, तो इस समय आम बहुत आ रहे हैं गर्मियों में, तो तरह तरह की रेसिपी बना के हम घर में खिलाएं तो अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल,
1: तो मैं आपको आज कच्चे आम के पापड़ की रेसिपी बता रही हूँ। तो इसकी सामग्री श्रोता साथियों लिख लीजिएगा, आपको कच्चे आम

0: एक किलो चाहिए, चीनी एक से डेढ़ कप तक,
1: बिल्कुल
0: मतलब आम की जो खटास है उसके अनुसार आप ले लीजिएगा। काला नमक एक छोटा चम्मच, सादा नमक आधा छोटा चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर एक छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स
1: बिल्कुल
0: आधा छोटा चम्मच। चिली फ्लेक्स क्या होता है, जैसे जो सूखी मिर्च हो जाती है ना लाल वाली, उसको आप अगर खलबट्टे में कूट लेंगे ना, वो जो दरदरी सी रहती है ना, उसी को चिली फ्लेक्स बोलते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना। और घी या तेल कुछ भी आप ले सकते हैं थाली को चिकना करने के लिए,
1: बिल्कुल हमारी आवश्यकता अनुसार।
0: जी
1: जी बिल्कुल प्रतिभा जी, ये तो आपने सामग्री के बारे में बताया, तो मैं चाहूंगी कि एक बार पुनः आप इस सामग्री को फिर से हमारे श्रोता साथियों को बताइए।
0: जी जागृति जी, कच्चे आम एक किलो ले लीजिएगा, चीनी एक से डेढ़ कप, काला नमक एक छोटा चम्मच, सादा नमक आधा छोटा चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर एक छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स आधा छोटा चम्मच, घी या तेल थाली को चिकना करने के लिए चाहिए।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि प्रतिभा जी ये तो आपने सामग्री के बारे में बताया, यहीं आप हमारे श्रोता साथियों को इसकी विधि के बारे में बताइए कि किस तरह से हम आम के पापड़ को बना सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, सबसे पहले हम कच्चे आमों को धोकर छील लेंगे और फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे,
1: बिल्कुल
0: गुठली को अलग कर देंगे, ठीक है। फिर इन कटे हुए आमों को हम कुकर में डाल देंगे और फिर एक या दो कप पानी डालकर इनको एक से दो सीटी आने तक मतलब कि बॉयल कर लेंगे,
1: बिल्कुल।
0: फिर ये जब आम नरम हो जाए ना तो इनको ठंडा होने देंगे, जब ये ठंडे हो जाए तो फिर ग्राइंडर लेकर उसमें इसका क्या बोलते हैं पीस कर एकदम स्मूथ पेस्ट, जैसे चिकना बिल्कुल होता है ना, उस तरह का पेस्ट बना लीजिए।
1: जी
0: कच्चे आमों में कभी कभी ऐसा होता है कि रेशे आ जाते हैं, तो आप एक छन्नी से इस पल्प को पूरा छान लीजिए,
1: बिल्कुल,
0: ताकि ये एक समान हो जाएगा और इसमें से रेशे भी निकल जाएंगे और जो खाते समय आपके मुंह में
1: नहीं आएंगे, बिल्कुल।
0: फिर आप एक कढ़ाई ले लो, उसमें इस आम के पल्प को डालो और धीमी आंच पर 5 मिनट तक पका लो।
1: जी बिल्कुल,
0: ठीक है। फिर उसके बाद जो भी मैंने सामग्री बताई है, चीनी, काला नमक, सादा नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर या चिली फ्लेक्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ये आप उसमें डालकर करीब अब इसको धीमी आंच पे आपको 10 से 15 मिनट तक पकाना है।
1: जी बिल्कुल,
0: तब तक पकाना है जब तक ये मतलब कढ़ाई का जो तला होता है ना वो छोड़ने ना लगे।
1: जी जी,
0: जब ये छोड़ने लगे तो मतलब इसकी पकने की यही एक आपको चीज है दिखाई पड़ेगी कि ये कढ़ाई के जो किनारे हैं वो छोड़ दे।
1: जी बिल्कुल,
0: तो समझ लीजिएगा पक गया है। इसको ठंडा कर लीजिए, फिर इसके बाद एक थाली में तुरंत ही घी या तेल जो भी है
1: लगाते हम,
0: हाँ लगा के जो ये बने हुए है ना सामग्री इसको डाल दीजिए और पतला पतला फैला दीजिए,
1: बिल्कुल।
0: और उसके बाद इसको आप धूप में एक या दो दिन तक सुखा
1: रख
0: सकते हैं, अगर धूप नहीं है तो आप पंखे के नीचे भी इसको
1: रख सकते
0: सुखा
1: हैं।
0: सकते हैं,
1: बिल्कुल।
0: जब ये सूख जाए तो फिर इसके छोटे छोटे मतलब टुकड़े आप अपने आकार के काट लीजिए,
1: बिल्कुल,
0: और आप यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं फिर।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि प्रतिभा जी आपने आम के पापड़ के बारे में बताया कि किस तरह से आम का पापड़ हम बना सकते हैं, उसके लिए क्या सामग्री चाहिए, साथ ही बनाने की विधि के बारे में बताया, यही हम आपसे इसके फायदे के बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो आम का पापड़ है वो किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है।
0: देखिए, इसमें विटामिन सी बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है, ये मतलब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करने में मदद करता है।
1: बिल्कुल,
0: खट्टा स्वाद मुंह के स्वाद को अच्छा करता है, जिनको भूख कम लगती है उनको भी मतलब भूख बढ़ जाती है, जी मचलाने में भी ये राहत करता है, जैसे सफर के टाइम भी आप इसको अपने साथ कैरी कर ले जा सकती हैं। ये गर्भवती महिलाओं में जब अगर उनको जी मचलाए तो ये खा लें तो उससे भी उनको फायदा मिलता है।
1: जी हाँ,
0: और इसमें फाइबर और एंजाइम होते ही हैं जी।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना। तो जैसे कि पेट फूलना है, एसिडिटी की समस्या है, क्योंकि हमने इसमें काला नमक और जीरा डाल रखा है, इसलिए पेट फूलना और एसिडिटी की समस्या में भी ये राहत आपको दिलाएगा,
1: दिला सकता है। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने इसके फायदों के बारे में भी बताया कि आम का जो पापड़ होता है उसका क्या फायदे होते हैं, साथ ही हमने बहुत सारी बातें की सामग्री के बारे में, विधि के बारे में। तो जैसा कि समय समय पर आकर प्रतिभा जी आप हमारे श्रोता साथियों को ऐसे ऐसे व्यंजनों के बारे में, रेसिपी के बारे में बताते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जागृति जी।
1: जैसा कि श्रोता साथियों प्रतिभा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने हमें आम की कैंडी और आम के पापड़ के बारे में बताया कि ये किस तरह से हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है और हम इसे कैसे बना सकते हैं। अब समय का मान रखते हुए हमें आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना होगा, पर जाने से पहले आपको सुनवाना चाहेंगे एक और गीत।

साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी रेसिपी, जो भी व्यंजन आपको बताए वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से जाने की अनुमति। नमस्कार।

भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रही है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरा ने मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे चलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

वागड़ रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

0: साथियों, समानता का है जिसमें विधान, वही है भारतीय संविधान। भारत का संविधान देश के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता व समानता का अधिकार देता है।
1: जी हाँ,

ताला डाले, कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहां बजाता आए।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में। पिछले रविवार हमारी आपसे बातचीत का विषय रहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और भारतीय संविधान में। हमने जाना था डॉक्टर अंबेडकर और संविधान निर्माण के बारे में। इसी के साथ हमने साझा पहल के नतीजे के बारे में जाना था।
1: जी हाँ,
0: साथ में हमने जाने थे संविधान निर्माण के चार चरण के बारे में। इसी के साथ हमने बात की थी अंजलि एक एक वाक्य पर जो विचार विमर्श हुए थे उस पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं स्वतंत्र भारत को लेकर अंबेडकर की चिंता है।
1: जी बिल्कुल।
0: साथियों, अगर इसको लेकर हम बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर के मन में स्वतंत्र भारत के हालात को लेकर भी कुछ चिंताएं थी। उनका मानना था कि भारत को पूर्ण स्वराज मिल जाने के बाद भी समाज के भीतर छुआछूत, भेदभाव, शोषण और असमानता बनी रहेगी।
1: जी बिल्कुल।
0: क्योंकि स्वतंत्र होने के बाद भारत की शासन व्यवस्था पर उन लोगों और समूहों का आधिपत्य होगा जो जातिवादी, वर्ण और लैंगिक भेद आधारित सांप्रदायिक स्वभाव रखते हैं। शायद यही कारण है कि उन्होंने 1945 के अपने प्रस्तावित संविधान में ब्रिटिश शासित भारत की संकल्पना की थी। ऐसा नहीं है कि वे भारत की स्वतंत्रता के खिलाफ थे। सच तो यह है अंजलि कि उन्हें ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिलने के बाद भारत के भीतर बनने वाले हालातों का अंदाजा था। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश सरकार के माध्यम से सामाजिक आर्थिक बदलाव लाना संभव होगा।
2: जी बिल्कुल। इसी के साथ हम देखते हैं कि उन्हें संवैधानिक संचार की व्याख्या करते हुए यह बताने की कोशिश की थी जागृति जी कि अनुसूचित जाति समुदाय के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए क्या व्यवस्था होगी।
1: जी हाँ।
2: इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भर दिया जाए, बल्कि उन अधिकारों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था एक बुनियादी अनिवार्यता थी। उन्होंने एक तरह से इस दस्तावेज में

0: समाजवादी राज्य और आर्थिक प्रजातंत्र की अवधारणा पेश की। श्रोता साथियों बताना चाहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का सोचना था कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें सभी समुदायों को राज्य संस्थानों में समान प्रतिनिधित्व हासिल होगा।
1: जी हाँ,
0: हालांकि वे पृथक निर्वाचिका का प्रावधान संविधान सभा में पारित नहीं करवा पाए, लेकिन वे राज्य विधानसभाओं और संसद में अनुसूचित जाति जनजाति समूह के लिए निर्धारित स्थान आरक्षित करवाने में सफल रहे।
1: और अंजलि, हम बात करें अधिकारों को लेकर अंबेडकर जी के क्या विचार थे, तो साथियों डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि अधिकारों को केवल कानून के जरिए संरक्षित नहीं किया जा सकता। वे मानते थे कि कानून हमारी सामाजिक और नैतिक चेतना से भी संरक्षित होते हैं। यदि सामाजिक चेतना उन अधिकारों को मान्यता देने के लिए तत्पर होती है जो कानून द्वारा निर्धारित किए हैं, तभी अधिकार सुरक्षित होंगे। साथ ही यदि समाज खुद मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो तो कोई कानून, कोई संसद, कोई न्यायपालिका अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती।
0: जी बिल्कुल,
1: कानून अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी एक व्यक्ति को दंडित कर सकता है या सजा दे सकता है, किंतु कानून भी ऐसे लोगों के व्यापक समूह के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकता जो कानून के उल्लंघन के लिए प्रतिबद्ध है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार यह धारणा लेकर चलती है कि समाज भी लोकतांत्रिक है, लेकिन लोकतंत्र की औपचारिक व्यवस्था तब तक बेमानी और बेमेल है जब तक कि सामाजिक लोकतंत्र स्थापित न हो।
1: जी हाँ,
0: राजनीतिक विचारक यह महसूस नहीं कर पाए कि लोकतंत्र सरकार की व्यवस्था का रूप नहीं है, यह समाज की व्यवस्था का रूप है। किसी लोकतांत्रिक समाज के लिए यह जरूरी नहीं कि उसके एक रूपता, उद्देश्य की समानता, लोगों के प्रति वफादारी, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति से चिन्हित किए जाएं।
1: जी हाँ,
0: लेकिन इसमें दो तत्व जरूर शामिल हैं, एक मानसिक प्रवृत्ति, गरिमा की प्रवृत्ति व दूसरों के प्रति समानता का भाव, और दो कठोर सामाजिक बाधाओं और भेदभाव की भावना से मुक्त समाज।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हम जानते हैं कि क्या अंबेडकर समाजवादी व्यवस्था चाहते थे। अगर इस पर बात करें साथियों, तो उस दौर के दस्तावेजों से तो यही लगता है कि अंबेडकर ऐसा ही चाहते थे।
0: हाँ।
1: वर्ष 1945 में प्रकाशित एक दस्तावेज में डॉक्टर अंबेडकर ने समाजवादी राज्य व्यवस्था का ही सपना देखा था। उनका मानना था देश के मुख्य उद्योग पूरी तरह से राज्य के अधीन होंगे, आधारभूत उद्योग सहकारी पद्धति से संचालित होंगे, बीमा क्षेत्र पर राज्य का नियंत्रण होगा। इतना ही नहीं, वे कृषि को राज्य नियंत्रित संपत्ति और व्यवस्था के रूप में देख रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था अंजलि कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य, निजी क्षेत्र या व्यक्तियों के मालिकाने में शामिल मुख्य उद्योगों, बीमा और कृषि भूमि को उनके मूल्य के मुताबिक डिपेंचर्स के रूप में मुआवजा प्रदान करके अधिग्रहित करेगा। खेती के बारे में उनका मॉडल अकल्पनीय था। इस दस्तावेज के मुताबिक कृषि क्षेत्र की व्यवस्था कुछ इस तरह है।
0: जी बिल्कुल, अगर पहली व्यवस्था के बारे में जाने तो श्रोता साथियों, राज्य अधिग्रहित की गई भूमि को गांव के लोगों के समान रूप से वितरित करके परिवारों के समूह को सरकारी साझा खेती के लिए प्रदान करेगा। दूसरी व्यवस्था के बारे में बात करें तो श्रोता साथियों, खेती के लिए राज्य नियम और निर्देश जारी करेगा। खेती से हुई आय को खेती करने में व्यय को हटाकर सभी सहभागी परिवारों में बांटे जाएंगे।
1: जी हाँ,
0: भूमि का आवंटन किराए पर देने की प्रक्रिया में वंश, जाति, वर्ग के आधार पर कोई भेद नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी भू स्वामी नहीं होगा, कोई किराएदार नहीं होगा और कोई भी भूमिहीन मजदूर नहीं होगा।
1: बिल्कुल, इसी के साथ राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह खेती की प्रक्रिया का पानी, खेती में सहयोगी पशुओं का पालन, कृषि उपकरण, खाद और बीज की आपूर्ति के जरिए वित्त पोषण करेगा। राज्य कृषि भूमि पर एक निश्चित शुल्क लगा सकेगा। भारत के बुनियादी ढांचे में बदलाव के लिए उन्होंने भूमि सुधार के लिए प्रावधान किए थे। इसके मुताबिक नए संविधान में एक व्यवस्थापन आयोग बनाया जाएगा जो गैर कृषि योग्य भूमि का उपयोग अनुसूचित जातियों के आवास व्यवस्थापन के लिए करेगा। इस आयोग को ऐसे उद्देश्य के लिए जमीन खरीदने का भी अधिकार होगा। अंजलि, इन बातों से पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर अपने मूल विचारों को भारत के आधिकारिक संविधान में शामिल नहीं करवा पाए। इतना ही नहीं, कुछ स्तरों पर उन्होंने बाद में अपने ही विचार को आगे नहीं बढ़ाया।
0: जी बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हमने जाना कि क्या अंबेडकर समाजवादी व्यवस्था चाहते थे। दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर केंद्रीकृत व्यवस्था के समर्थक नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि समाज के नियम उनका चरित्र समाज को बदलने नहीं देगा, इसलिए वे बहुत ताकतवर राज्य व्यवस्था चाहते थे।
1: जी हाँ।
0: अगर यही बात करें संवैधानिक नैतिकता पर अंबेडकर के क्या विचार थे, तो श्रोता साथियों, आजाद भारत के लिए एक सभ्यता मूलक और लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना करना कितना कठिन रहा होगा।
1: बिल्कुल,
0: यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की उस वक्तव्य से स्पष्ट होता है जो उन्होंने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर बहस शुरू करते हुए दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय भूमि स्वभावतः अप्रजातंत्रात्मक है और भारत में संवैधानिक नैतिकता नहीं है। संवैधानिक नैतिकता पर सभा में कम ही चर्चा हुई थी, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर इसे ही संविधान का शासन तंत्र मानते थे।
1: जी हाँ।
0: आजादी के बाद भारत ने संविधान को अपना लिया, लेकिन संविधान की संवाहक संवैधानिक नैतिकता को नहीं अपनाया जा सका।
2: बिल्कुल अंजलि, अगर संवैधानिक नैतिकता का अर्थ क्या है अगर इस पर बात करें तो संवैधानिक नैतिकता का मतलब है राजनीतिक दलों, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सामाजिक संगठनों और नागरिकों का संवैधानिक मूल्य और उस पर निर्मित व्यवस्था में विश्वास होना।
1: जी हाँ।
2: जब समाज सजग होगा तब वह प्रश्न पूछेगा ही, और ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि राज्य व्यवस्था और सरकार आलोचना के अधीन होगी। सरकार का आलोचना के अधीन होना भी संवैधानिक नैतिकता का ही सूचक है।
1: जी बिल्कुल।
2: साथियों, संवैधानिक नैतिकता का एक सूचक बहुलता और विविधता भी है। इसे हृदय और व्यवहार की गहराइयों से अपनाया जाना लोकतंत्र के वजूद की बुनियादी शर्त है। यदि बहुलता और विविधता के तत्व को समाज अपनाएगा अंजलि, तो हिंसा की भाव अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे।
1: जी हाँ।
2: इसलिए डॉक्टर अंबेडकर बंधुता के मूल्य को सबसे आधारभूत सामाजिक राजनीतिक मूल्य मानते रहे हैं।
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ जागृति जी, बात करें आसान नहीं थी राह के बारे में, तो श्रोता साथियों, वास्तव में भारत के लिए ऐसे गुणों से लेस संविधान बनाना बहुत ही दुरूह काम था, क्योंकि वास्तव में भारत एक समान स्वरूप वाला राष्ट्र नहीं था। वास्तव में राजनीतिक आर्थिक स्वार्थों ने भारत की विविधता को इसकी सबसे बड़ी ताकत बनाने के बजाय इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया था।
1: जी हाँ।
0: वास्तव में भारत के सामने खड़ी चुनौतियों से जूझते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने जो भूमिका निभाई, सच्चाई तो यह है कि उसी के कारण भारत एक विधान के माध्यम से समग्र राष्ट्र का रूप ले पाने में सक्षम हुआ। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर को खुद भी यह एहसास था कि भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था इस संविधान को उसकी मूल भावना के साथ लागू नहीं होने देगी, क्योंकि इस संविधान को लागू करने के लिए देश में छुआछूत, जातिवादी व्यवहार, लैंगिक असमानता, आर्थिक असमानता पैदा करने वाली नीतियों को तिलांजलि देने सरीखे कदम उठाए जाने होंगे, जिसके लिए भारत का समाज बहुत तत्पर नहीं था।
1: जी हाँ।
0: इसके साथ ही सत्ता हासिल करने के लिए ललायत भारत की राजनीति ने भी इन प्रश्नों पर बहुत प्रभावी रूप से इन्हें अपनाया।
2: बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ साथियों, तानाशाही को लेकर दूरदेशी उपाय के बारे में बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर अंजलि जानते थे कि अच्छा संविधान बन जाने के बावजूद सत्ता और सरकार पर देश के 2-3% लोगों का ही कब्जा रहेगा।
1: जी बिल्कुल।
2: यही कारण है कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जिसमें एक व्यक्ति या एक छोटे समूह की तानाशाही स्थापित न हो पाए। संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्र जिसमें एक व्यक्ति या एक छोटे समूह की तानाशाही स्थापित न हो पाए। संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होगा, किंतु वह अकेले कोई भी निर्णय न ले पाएगा।
0: इसी के साथ हम देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को शासन के सभी अधिकार प्राप्त हैं। उसके अधीन कई सचिव होते हैं जो भिन्न भिन्न विभागों के अधिकारी होते हैं। वे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते, जबकि स्वतंत्र भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र पर शासन नहीं करता।
1: जी हाँ।
0: उसके अधीन विभिन्न विभागों के मंत्रिमंडल होते हैं और ये मंत्री राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य होते हैं। यही मंत्रिमंडल अपनी राय से राष्ट्रपति को अवगत करवाता है।
2: बिल्कुल। इसी के साथ अंजलि, सामान्यतः ये राष्ट्रपति की बाध्यता होती है कि वह मंत्रिमंडल की राय को माने व उनकी राय के प्रतिकूल कुछ नहीं कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी सचिव को कभी भी हटा सकता है, किंतु भारत का राष्ट्रपति किसी मंत्री को तब तक नहीं हटा सकता जब तक कि मंत्रिमंडल को बहुमत प्राप्त है।
1: जी हाँ।
2: भारतीय सामाजिक व्यवस्था के चरित्र, स्वरूप और स्वभाव में व्याप्त चुनौतियों और जटिलताओं को समझते हुए संविधान में कई प्रक्रियाओं की भी व्याख्या की गई है, क्योंकि ये माना गया है कि यदि संविधान को सूत्रों में लिखा जाएगा तो आने वाली सरकारें और प्रभावशाली राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के लिए संवैधानिक मूल्यों से समझौता करते जाएंगे।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही हैं, अगले रविवार को हमारी फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में संविधान से जुड़ी कुछ अहम बातों के साथ में।
2: जी हाँ साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
3: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये रुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि पुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति पुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने कोने बनाओ पड़े, सरकारी विभाग में जाओ या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
5: तो हमरो बोलो, अरे सब समस्या में समाधान आपे करने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एक लस ने हमरा ने हाथों मुंह में जावू है, फार्म भरो जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़ वो काटो नती, जय वरे अधिकार हमरा अपना भी जानकारी सबनो हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
4: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो हक मांगो, जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो।
5: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
5: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

में दिलोगी इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। इसी कड़ी में हम रुक करेंगे विशेष कार्यक्रम हमारे मेहमान की ओर। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे हमारे मेहमानों के जीवन परिचय को और इस कार्यक्रम को लेकर आने वाली है हमारी रेडियो साथी आरजे अंजलि पाराशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोताओं, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा मैं आपको बता ही रही हूँ, इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम होगा 7:30 पर गांधी जी को पाने का एक प्रयास, कार्यक्रम हिंद स्वराज। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। इस कार्यक्रम को श्रोताओं आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट। इन कार्यक्रमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर और सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को 9 से 10 बजे के बीच में। तो श्रोताओं, यह तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब सुनते हैं आज की सभा की शुरुआत में कार्यक्रम आराधना।

जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई बड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए।

भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।

0: सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात की शुरुआत पानी तकी करो। थोड़ू सी व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जो नदिया है ई हुकी जाएंगा। खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जो है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है। पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो। बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है। हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है। सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
4: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके। शिक्षा तकीस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
4: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
4: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा। शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, भारत की मिट्टी ने ऐसे अनेक सपूत दिए हैं जिन्होंने अपने विचारों और साहस से देश को नई दिशा दी है। आइए आज हम याद करें एक ऐसे ही महान व्यक्ति को जिनकी आवाज ने पूरे देश में स्वराज का सपना जगाया था।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: लेकर हाजिर है साथियों कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन परिचय से आपको अवगत करवाएंगे। जैसा कि साथियों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये केवल एक नारा नहीं था बल्कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का उद्घोष था। इस अमर वाक्य को जन जन तक पहुँचाने वाले महान राष्ट्रभक्त, समाज सुधारक, शिक्षाविद, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।
1: बिल्कुल
0: अंजलि, उन्होंने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की ऐसी लौ जलाई जिसने आगे चलकर पूरे देश को आजादी के आंदोलन से जोड़ दिया।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें उनके बाल्यकाल और परिवार की, तो श्रोता साथियों, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक संस्कृत और गणित के विद्वान शिक्षक थे। उनकी माता पार्वती बाई धार्मिक और संस्कारी थी। जागृति से घर का वातावरण शिक्षा, अनुशासन और भारतीय संस्कृति से भरा हुआ था। बचपन से ही तिलक तेज बुद्धि, सत्यप्रिय और निर्भीक स्वभाव के थे। कहा जाता है श्रोता साथियों कि वे बचपन से ही अन्याय का विरोध करते थे। यदि उन्हें कोई गलत बात लगती तो वे बिना डरे अपनी बात रखते थे।
0: बिल्कुल
1: यही गुण जागृति जी आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बना। कहते हैं कि बचपन के संस्कार ही भविष्य के नेतृत्व की नींव बनते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रत्नागिरी में प्राप्त की थी और बाद में उनका परिवार पुणे आ गया था, जहाँ उन्होंने आगे की शिक्षा पूरी की। उन्होंने गणित विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद में कानून की शिक्षा भी ग्रहण की। वे चाहते तो आरामदायक नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया।
1: बिल्कुल
0: साथ ही लोकमान्य तिलक उन महान नेताओं में थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया। वे मानते थे कि जब तक भारत आत्मनिर्भर, शिक्षित और संगठित नहीं होगा, तब तक सच्चा स्वराज संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा, पत्रकारिता, सामाजिक जागरण और राजनीतिक आंदोलनों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया।
1: बिल्कुल जागृति जी, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यह महसूस किया कि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था भारतीयों में आत्मविश्वास पैदा करने के बजाय उन्हें अपने इतिहास और संस्कृति से दूर कर रही है।
0: बिल्कुल
1: इसी सोच के साथ उन्होंने अपने साथियों के सहयोग से न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, ताकि युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले जो ज्ञान के साथ साथ राष्ट्र प्रेम भी सिखाए। बाद में उन्होंने शिक्षा के विस्तार के लिए और भी महत्वपूर्ण संस्थानों के निर्माण में योगदान दिया। श्रोता साथियों, उस समय समाचार पत्र केवल खबरें देने का माध्यम नहीं था, बल्कि जनता को जागरूक करने का सबसे बड़ा माध्यम था। बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्रों की शुरुआत की, केसरी जो की मराठी में जाता था, द मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में जाता था। श्रोता साथियों, इस समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना की और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाई। वे सरल भाषा में लिखते थे ताकि आम लोगों को जागृति जी समझ में आ सके।
0: बिल्कुल
1: देश की स्थिति क्या है और स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। उनकी लेखनी इतनी प्रभावी होती थी कि अंग्रेज सरकार भी उनसे घबराने लगी थी।
0: बिल्कुल अंजलि, तिलक जी का मानना था कि जब जनता जागरूक होगी तभी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए उन्होंने पत्रकारिता को समाज परिवर्तन का हथियार बनाया।
1: बिल्कुल,
0: और जैसा कि शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को लेकर बातचीत करें तो आपने बताया था कि उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी।
1: बिल्कुल
0: तिलक जी का मानना था और विश्वास भी था कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। उन्होंने अपने साथियों के साथ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: जी जी।
0: उनका उद्देश्य ऐसी शिक्षा देना था जिससे विद्यार्थियों में देशभक्ति, आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण और समाज सेवा की भावना विकसित हो। वे भारतीय संस्कृति और आधुनिक ज्ञान के समन्वय को आवश्यक मानते थे।
1: बिल्कुल जागृति जी, बाल गंगाधर तिलक का सबसे बड़ा योगदान था भारतीयों के मन में स्वराज की भावना जगाना।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, उस समय बहुत से लोग ये मानते थे कि अंग्रेजों का शासन अब हमेशा रहेगा, लेकिन तिलक ने लोगों के मन से यह डर निकाला। उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। जागृति जी केवल ये एक नारा नहीं है बल्कि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज बन गया। उन्होंने लोगों को समझाया कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसके जागरूक नागरिक होते हैं। यदि जनता एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो जाए तो कोई भी शक्ति उसे लंबे समय तक गुलाम नहीं रख सकती।
2: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जब एक विचार करोड़ों लोगों के दिल में जगह बना लेता है तब वही इतिहास बदल देता है।
2: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात चल रही है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के जीवन परिचय को लेकर, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, आगे जानेंगे उनके जीवन के बारे में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल
3: की करी जाना है।

0: करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से बाल गंगाधर तिलक का सपना था स्वराज की स्थापना करना, यहीं जागृति जी अब बात करें तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अच्छी तरह समझते थे कि जब लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक स्वतंत्रता का सपना पूरा नहीं होगा।
1: बिल्कुल,
0: उस समय अंग्रेज सरकार बड़ी सभाओं और राजनीतिक बैठक पर कड़ी निगरानी रखती थी। ऐसे में तिलक ने समाज को जोड़ने का एक नया रास्ता खोजा। उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। उनका उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन करना नहीं था बल्कि श्रोता साथियों लोगों को एक मंच पर लाना और उनमें राष्ट्रीय चेतना जगाना और सामाजिक एकता को मजबूत करना था।
1: बिल्कुल,
0: इन आयोजनों में देशभक्ति के गीत गाए जाते, भाषण होते, शिक्षा, स्वदेशी और स्वतंत्रता की बातें होती थी। धीरे धीरे जागृति जी ये उत्सव जन जागरण का प्रभावशाली माध्यम बन गए। इससे लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा और यह भावना मजबूत हुई कि यदि समाज एकजुट हो जाए तो बड़े से बड़े परिवर्तन संभव हो जाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोकमान्य तिलक जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अग्रदूत माना जा रहा था। उस समय कांग्रेस में दो विचारधाराएं थी, नरम दल और गरम दल। तिलक गरम दल के प्रमुख नेता थे। वे मानते थे कि केवल प्रार्थनाओं और याचिकाओं से स्वतंत्रता हमें नहीं मिल सकती। इसके लिए श्रोता उन्होंने जनता को संगठित करना शुरू किया, संघर्ष करना शुरू किया और आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है ये बताया।
0: जी जी।
1: उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का जोरदार समर्थन किया। उनकी ओजस्वी वाणी और निर्भीक नेतृत्व ने युवाओं में नई ऊर्जा का संचार किया।
0: जी हाँ।
1: उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी। इसी तरह हम बता सकते हैं कि तिलक के निर्भीक विचारों से अंग्रेज सरकार भयभीत हो गई। उन पर कई बार राजद्रोह के आरोप लगाए गए। वर्ष 1908 में उन्हें 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा देकर बर्मा कि मांडले जेल में भेज दिया गया।
0: बिल्कुल,
1: जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया। वहाँ उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने कर्म योग का महत्व समझाते हुए बताया कि मनुष्य को निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
0: बिल्कुल जागृति जी, तिलक विद्वान थे लेकिन उनमें अहंकार नहीं था। वे निडर थे लेकिन संयम भी रखते थे। वे राष्ट्रवादी थे लेकिन समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि शिक्षा और जागरूकता सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य और साहस कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। श्रोता साथियों, राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब उसके नागरिक जागरूक और जिम्मेदार हो। उनका जीवन केवल इतिहास की पुस्तक का एक अध्याय नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
1: बिल्कुल,
0: आज हमारे सामने चुनौतियाँ अलग अलग हैं, लेकिन समाधान वही है जिसकी सीख लोकमान्य तिलक ने हमें दी है कि शिक्षा को अपना सबसे बड़ा साथी बनाएं, अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को समझें, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, इसी के साथ ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत को अपने जीवन का आधार बनाएं।
1: जी हाँ,
0: मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। श्रोता साथियों, देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि हर नागरिक की है।
1: जी हाँ, और हम कह सकते हैं अंजलि कि कारावास से लौटने के बाद भी तिलक ने संघर्ष जारी रखा था। उन्होंने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया जिसका उद्देश्य भारत को स्वशासन दिलाना था।
0: जी जी।
1: और इस आंदोलन ने पूरे देश में स्वतंत्रता की मांग को नई गति दी थी। होम रूल आंदोलन ने लाखों भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया और राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक जन समर्थन दिया। साथियों, हम कह सकते हैं कि लोकमान्य तिलक भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करते थे। वे समाज में शिक्षा, नैतिकता, राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाह रहे थे।
0: जी जी।
1: उनका विश्वास था कि यदि समाज संगठित और शिक्षित होगा तो राष्ट्र स्वतः ही मजबूत बनेगा। वे युवाओं को अनुशासन, परिश्रम, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति का संदेश देते थे अंजलि।
0: जी हाँ।
1: उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने स्वतंत्रता आंदोलन के समय थे। उनके व्यक्तित्व की विशेषता बताएं तो वो अटूट राष्ट्रभक्ति थी, उनमें निर्भीक नेतृत्व था, सत्यनिष्ठा थी, स्वाभिमान से भरे हुए थे, अद्भुत संगठन क्षमता थी, ओजस्वी वक्तृत्व थे, प्रभावशाली लेखन उनका था, शिक्षा के प्रति समर्पण था और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखने वाले थे। साथियों, इन्हीं गुणों के कारण जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है जिसे जनता ने अपना नेता स्वीकार किया हो।
0: बिल्कुल जागृति जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जीवन हमें सिखाता है कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण केवल नेताओं से नहीं बल्कि जागरूक नागरिकों से होता है।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने अपने विचारों, लेखनी, शिक्षा और संगठन क्षमता से पूरे देश में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने हमें सिखाया श्रोता साथियों कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं है बल्कि आत्मसम्मान, शिक्षा, जागरूकता और जिम्मेदारी का भी नाम है। यदि समाज शिक्षित, संगठित और जागरूक होगा तभी वह हर चुनौतियों का सामना कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों हम अपने देश की एकता, शिक्षा, सामाजिक सद्भाव और विकास में अपनी भूमिका निभाएं। हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए जागृति जी एक बेहतर भारत को बनाने का प्रयास करें।
1: बिल्कुल अंजलि, बस ये कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से कि साथियों लगातार संघर्ष, यात्रा और कठोर परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। 1 अगस्त 1920 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लाखों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का महान निर्माता बताया। वे आज हमारे बीच नहीं है श्रोताओं, लेकिन उनके विचार, संघर्ष और आदर्श आज भी प्रत्येक भारतीय को प्रेरणा देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अंत में हम आपको यही कहना चाहेंगे साथियों कि उनका जीवन त्याग, साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की अनुपम मिसाल है। आज आवश्यकता है कि हम उनके आदर्शों को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखें बल्कि अपने जीवन में अपनाएं। अगर हम शिक्षा, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय एकता, सत्यनिष्ठा और जनसेवा के मार्ग पर चलें तो यही लोकमान्य तिलक के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी अंजलि। उनका अमर संदेश आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
0: बिल्कुल,
1: स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हमने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के जीवन परिचय में ढेर सारी बातों को जाना, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए महापुरुषों की प्रेम कथा के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
2: नमस्कार।

नमस्कार साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानियों को लेकर हाजिर होती हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ श्रोताओं, उस कहानी का शीर्षक है कचरे से कमाई तक का सफर। जी हाँ दोस्तों, तो साथ ही कहानी में आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

श्रोताओं, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानियों को लेकर हाजिर होती हूँ। ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है श्रोता साथियों, आज हम देख रहे हैं कि आज का युवा तनाव में रहता है। वो छोटी छोटी चीजों को लेकर तनाव में आ जाता है और वो तनाव में ऐसे आ जाते हैं कि वो अपने जीवन अपने करियर के बारे में सोच ही नहीं पाते। ये कहानी सुनकर शायद हो सकता है कि वो अपने जीवन में कुछ नया कर जाए, असफलताओं से डरे नहीं। ये कहानी बनाने का एक जरिया है श्रोता साथियों कि हमारे युवा साथी इन कहानियों को सुने और कहानियों को सुनकर इनकी जो बातें हैं वो अपने जीवन में ग्रहण करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ और कहानी का शीर्षक है कचरे से कमाई तक का सफर। साथियों, देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता का सपना तो देखता है, लेकिन सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है। कई बार वो चीज जिसे दुनिया बेकार समझकर फेंक देती है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अवसर बन जाती है। ये कहानी ऐसे ही एक युवा की है श्रोताओं, जिसने कचरे में भी संभावनाएं देखी और अपने साहस, मेहनत और नवाचार से न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव की सोच भी बदल दी। साथियों, कहानी शुरू होती इस तरह कि एक छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन एक साधारण किसान परिवार का बेटा था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, खेती से इतना ही मिलता था कि घर का खर्च मुश्किल से चल पाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन ने कई जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। साथियों, एक दिन वो गांव की गलियों से गुजर रहा था, चारों ओर प्लास्टिक की थैलियां थी, बोतलें, पुराने टायर, टूटे बर्तन और बहुत सारा कचरा फैला हुआ था। लोग उस कचरे को देखकर नाक सिकुड़ कर जा रहे थे। साथियों, अर्जुन भी पहले यही सोचता था कि सब बेकार है, लेकिन उस दिन उसके मन में पता नहीं एक सवाल उठा। सवाल ये है कि क्या सचमुच ये सब बेकार है या इसमें भी कोई अवसर छिपा है। उसी शाम उसने इंटरनेट पर और पुस्तकालय में कचरा प्रबंधन और रिसाइकिलिंग के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसे पता चला कि दुनिया के कई देशों में लोग कचरे से करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं। प्लास्टिक से नए उत्पाद बनते हैं, जैविक कचरे से खाद और बायोगैस तैयार होती है, पुराने कपड़े और टायरों से नए सामान बनाए जाते हैं। साथियों, अर्जुन ने तय किया कि अब वो नौकरी का इंतजाम नहीं करेगा बल्कि कचरे को ही अपनी कमाई का साधन बनाएगा। और कहते हैं साथियों कि कोई भी कार्य शुरुआत में आसान नहीं होता है। अर्जुन के लिए भी आसान नहीं था। उसने गांव के लोगों से कहा कि वे घर का कचरा अलग रखें, गीला और सूखा। तब लोग उस पर हंसने लगे। लोगों ने कहा कि क्या अब कचरा भी अलग रखना पड़ेगा, इससे कौन अमीर बन जाएगा। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन

अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने खुद अपने घर से शुरुआत की, फिर स्कूल में जाकर बच्चों को समझाया कि अगर कचरा अलग अलग रखा जाए तो उससे खाद, प्लास्टिक और अन्य सामग्री का पुनः उपयोग हो सकता है। इसी तरह श्रोता साथियों, धीरे धीरे कुछ बच्चों ने अपने घरों में बात बताई, कुछ परिवार तैयार हुए, कुछ परिवार नहीं हुए। अर्जुन ने पुराने ड्रम और डिब्बों से कचरा संग्रहण की व्यवस्था बनाई। उसने गांव के जैविक कचरे से कंपोस्ट खाद बनाई शुरुआत की। शुरुआत में खाद कम बनी, लेकिन जब किसानों ने उस खाद का उपयोग किया तो फसल की गुणवत्ता अच्छी हुई और रासायनिक खाद का खर्च भी कम हुआ। साथियों, अब अर्जुन ने प्लास्टिक और लोहे का अलग अलग संग्रह करना शुरू किया। वो सप्ताह में एक बार शहर जाकर इसे रिसाइकलिंग केंद्र में बेच देता। थोड़ी थोड़ी उसकी कमाई होने लगी। कुछ महीनों बाद उसने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को साथ में जोड़ लिया। महिलाओं ने पुराने कपड़ों से बैग बनाना शुरू कर दिया। प्लास्टिक की बोतलों से गमले, सजावटी सामान और पेन स्टैंड तैयार किए गए। साथियों, अब वही लोग जो कभी हंसते थे अर्जुन के काम की सराहना करने लगे थे। एक दिन जिला प्रशासन ने उसके काम की जानकारी ली। अधिकारियों ने गांव का दौरा किया और देखा कि जहां पहले कचरे के ढेर लगे थे, अब वहां साफ सफाई थी, जैविक खाद बन रही थी और कई परिवारों को रोजगार मिल रहा था। अर्जुन को एक छोटा अनुदान मिला। उसने उससे एक छोटी श्रेडिंग मशीन खरीदी, जिससे प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर अधिक कीमत पर बेचा जाने लगा। साथ ही अब गाँव के युवाओं ने भी उसके साथ काम करना शुरू कर दिया था। किसी ने कचरा संग्रहण की जिम्मेदारी ली, किसी ने खाद निर्माण की तो किसी ने तैयार उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों में गांव की तस्वीर ही बदल गई। श्रोताओं, गांव स्वच्छ हो गया, किसानों की आय बढ़ी, महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिल गया, युवाओं को गांव छोड़कर शहर जाने की जरूरत भी कम पड़ने लगी। इसी तरह एक बार अर्जुन को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा करने के लिए बुलाया गया। मंच से उसने कहा, श्रोताओं, कि मैंने कभी कचरे को समस्या नहीं माना, मैंने उसमें अवसर देखा। दुनिया जिसे बेकार समझती है, वही किसी दूरदर्शी इंसान के लिए सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। उसके शब्दों ने हजारों युवाओं को प्रेरित किया। अर्जुन की सफलता देखकर आसपास के कई गांवों ने भी कचरा पृथक्करण और रिसाइकलिंग की शुरुआत की। देखते ही देखते साथियों, पूरा क्षेत्र स्वच्छता और रोजगार का उदाहरण बन गया। आज अर्जुन का छोटा सा प्रयास एक सामाजिक आंदोलन बन चुका है। उसने साबित कर दिया, श्रोता साथियों, की कमाई केवल बड़े उद्योगों से नहीं होती, बल्कि सही सोच, मेहनत और नवाचार से कचरे जैसे साधारण चीज भी समृद्धि का माध्यम बन सकती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी, और ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हर समस्या अपने भीतर एक अवसर छिपाए होती है। कचरा तभी कचरा है जब हम उसका सही उपयोग करना नहीं जानते हैं। स्वच्छता और रोजगार एक साथ बढ़ सकते हैं। छोटे प्रयास बड़ी परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। साथ ही हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सफलता का रहस्य संसाधनों में नहीं बल्कि दृष्टिकोण में होता है, और वो दृष्टिकोण हमारा सही होना चाहिए। जीवन हमें हमेशा नए अवसर देता है, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए सकारात्मक दृष्टि का होना बहुत जरूरी है। अगर एक युवा कचरे के ढेर में भविष्य देख सकता है श्रोताओं, तो हम भी अपने आसपास मौजूद छोटी छोटी समस्याओं में बड़े बड़े अवसर भी खोज सकते हैं। याद रखिए साथियों कि सफल लोग अवसरों का इंतजार नहीं करते, वे अवसरों का निर्माण करते हैं। और सच तो ये है कि जिस दिन हम कचरे को बोझ नहीं संसाधन मानने लगेंगे, उसी दिन स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत और आत्मनिर्भर भारत का सपना और अधिक मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आगे भी कुछ छोटी मोटी बातें रह गई है, वो जरूर मैं आपसे करूंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

साथ ही उस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको अर्जुन की एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी और कहानी का शीर्षक था कचरे से कमाई तक का सफर। आपसे कहना चाहूंगी श्रोता साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आज के समय में बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और उपभोक्तावादी जीवन शैली के कारण कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। पहले जहां कचरे को केवल गंदगी और बीमारी का कारण माना जा रहा था, वही आज वही कचरा आय, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। अगर कचरे का सही प्रबंधन किया जाए श्रोताओं, तो यह न केवल स्वच्छता लाता है बल्कि आर्थिक समृद्धि का भी मार्ग खुलता है, जिस तरह से अर्जुन का खुला था। इसलिए कचरे से कमाई तक का सफर केवल एक विचार नहीं है दोस्तों, बल्कि आत्मनिर्भरता, नवाचार और सतत विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है। अक्सर हम देखते हैं श्रोता साथियों कि घर, बाजार और खेतों से निकलने वाले कचरे को बेकार समझकर हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन वास्तव में कचरे का बड़ा हिस्सा दोबारा उपयोग या पुनर्चक्रण, जिसे हम रिसाइकलिंग कहते हैं, ये सब योग्य होता है। जैविक कचरे से जैविक खाद और बायोगैस बनाई जाती है। प्लास्टिक, कांच, कागज और धातु जैसे सूखे कचरे को पुनर्चक्रित कर नए उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। अगर हम कचरे को सही ढंग से अलग करें, उसका वैज्ञानिक प्रबंधन करें, तो ये पर्यावरण की रक्षा के साथ आय का भी स्रोत बनती है। इसी के साथ साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में अपार संभावना है, फिर भी कई सारी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। लोगों में जागरूकता की कमी होती है, कचरे का पृथक्करण न करना, पर्याप्त प्रसंस्करण इकाइयों का अभाव, निवेश की कमी और बाजार तक पहुंच, ये सारी समस्याएं अभी भी हमारे सामने हैं। इन चुनौतियों का समाधान सामूहिक प्रयासों, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग से किया जा सकता है। कचरे से कमाई तक का सफर केवल आर्थिक लाभ का विषय नहीं है दोस्तों, बल्कि सोच बदलने का अभियान है। जिस दिन हम कचरे को बोझ नहीं बल्कि संसाधन मानने लगेंगे, उसी दिन स्वच्छता, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण का नया अध्याय शुरू होगा। आज आवश्यकता है कि प्रत्येक नागरिक एक संकल्प ले श्रोताओं, कि वो अपने घर से निकलने वाले कचरे का सही प्रबंधन करेगा, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेगा। यही छोटी छोटी पहल भविष्य में बड़ा परिवर्तन आधार बनती है। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे, कचरा बेकार नहीं है यदि सोच हो जिम्मेदार, तो सही प्रबंधन को अपनाएं, स्वच्छ भारत और समृद्ध भारत अपनाएं। याद रखिए, संसाधन वही नहीं जो प्रकृति देती है, बल्कि वह भी है जिसे हमारी समझ और मेहनत मूल्यवान बना देती है। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। जाने से पहले आपको पता बताना चाहूंगी, ताकि आपको हमारी आज की कहानी और इसमें जो बातें रही वो कैसी लगी, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी एक नई प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार। साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: हमरो गरीबों ने पूछे हैं, जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनाओ पड़े, सरकारी विभाग में जाऊं या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
2: तो हमरो दोनों अरे सब समस्या में समाधान आपे करने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आयत की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरो ने हाथ मिली में जावू है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमीन माते नाम लगाड़वो काटो नती, जय वरे अधिकार हमरो अपनावी, जानकारी सबनो हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
1: होवे भाइयों ने बहनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनो नाम लगाड़ो।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई बोनो, घर के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरा ने मुस्कान। होवे इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी कशिश दीदी। आ गई हूँ फिर से कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते ही हैं कि आज वार रविवार का दिन है और हर रविवार को हम आपको कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में कुछ नई कहानियों से रूबरू करवाते हैं। तो आज भी बच्चों मैं हाजिर हुई हूँ कुछ नई कहानियों के साथ में। उन कहानियों के नाम तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि बच्चों अभी हमारा समय है गीत संगीत सुनने का। तो क्यों ना हम शुरुआत गीत के साथ पहले कर ले और उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारी कहानियों की ओर। मैं आपको बताऊंगी कि आज के कार्यक्रम में मैं आपको कौन कौन सी कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। तो बच्चों पहले शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में आपकी अपनी दीदी कशिश दीदी के साथ में।

वेलकम बच्चों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की में। जैसा कि बच्चों, गीत तो यहाँ हमारा पूरा हो गया और बहुत ही प्यारा सा गीत था ये। और अब मुझे आपको ये बताना है कि आज के कार्यक्रम में हमारी पहली कहानी कौन से होने वाली है। तो बच्चों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो आपकी बहुत ही फेवरेट है। यानी कि बच्चों, आपने मोगली का नाम तो सुना ही होगा। हाँ मोगली, मोगली आपका दोस्त है ना बच्चों? मेरा भी है। तो आज मैं आपको मोगली के जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाने वाली हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं मोगली की कहानी से। तो बच्चों, सालों पहले गर्मियों के मौसम में एक दिन जंगल में सभी जानवर आराम कर रहे थे। अच्छे से आराम करके शाम के समय भेड़ियों का एक झुंड शिकार के लिए निकला। बच्चों, उनमें से एक दारुका नाम के भेड़िये को कुछ दूर जाते ही झाड़ियों से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। हाँ बच्चों, भेड़िया जब झाड़ियों के पास जाकर देखता है तब उसे एक बच्चा दिखाई देता है। वह बिना कपड़े के जमीन पर लेटा हुआ था। हाँ बच्चों, बच्चे को देखकर भेड़िया चौंक गया और उसे अपने साथ अपनी बस्ती ले गया। इस तरह बच्चों, वह इंसान का बच्चा था और इंसान का बच्चा भेड़ियों के बीच में रहने लगा। बच्चे को भेड़िये के बीच देखकर उस जंगल में रहने वाले शेर खान को गुस्सा आ जाता है। हाँ बच्चों, आपने मोगली वाली मूवी तो देखी ही होगी, उसमें शेर खान भी तो होता है ना। तो यहीं पर बच्चों, उस जंगल में रहने वाले शेर खान को उस इंसान के बच्चे को देखकर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वही उस बच्चे को इंसानी बस्ती से उठाकर खाने के लिए लाया था। अब आपको समझ आ गया ना बच्चों कि वो इंसानी बच्चा झाड़ियों के पीछे क्या कर रहा था। उसे तो शेर खान ही इंसानों की बस्ती से उठाकर लाया था। इसके आगे अगर आपको बताऊं बच्चों, तो भेड़िया अपने परिवार की ही तरह इंसान के उस बच्चे को भी पालता है। उसके परिवार में कुछ छोटे भेड़िए और उनकी माँ रक्षा थी। बच्चों, रक्षा ने उस बच्चे को मोगली नाम दिया। हाँ, तो वो इंसानी बच्चा बच्चों मोगली था। मोगली को एक परिवार मिल गया बच्चों। वह भेड़ियों को अपना भाई बहन समझकर उनके साथ रहने लगा। बच्चों, दारुका यानी कि जो भेड़िया था, उसने अपनी पत्नी रक्षा को ये बता दिया था कि इस बच्चे को शेर खान की नजरों से बचा कर रखना है, क्योंकि वो इस बच्चे को खाना चाहता है। बच्चों, रक्षा इस बात का पूरा ख्याल रखती थी। वो अपने बच्चों और मोगली को कभी भी अपने नजरों से दूर जाने नहीं देती थी। फिर क्या हुआ, कुछ समय बीतने के बाद जंगल में रहने वाले सभी जानवर मोगली के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और दूसरी तरफ शेर खान दूर से ही मोगली पर नजर गड़ाए बैठा रहता था। वह मोगली का शिकार करने के लिए उचित समय के इंतजार में था कि कब मोगली अकेला उसे दिखे और वो उसे खा जाए। बच्चों, भेड़ियों के झुंड का नेतृत्व एक बुद्धिमान भेड़िया कर रहा था। उस दल में बल्लू नाम का भालू और बघीरा नाम का एक पैंथर भी था। सभी एक जगह एकत्रित होकर मोगली को लेकर बातें करने लगे। बच्चों, उनका कहना था कि हमें मोगली को भेड़िये की तरह ही पालना होगा। इस पर झुंड का सरदार अपने साथी बघीरा और बल्लू को बोलता है कि तुम दोनों मोगली को जंगल के नियम कानून सिखाओगे, साथ ही मोगली की रक्षा भी तुम ही दोनों करोगे। इस तरह बच्चों, मोगली को जंगल में रहते रहते लगभग एक साल बीत जाता है। मोगली धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है बच्चों, और उसे बड़े होने तक बल्लू और बघीरा मोगली को सारे नियम कानून के साथ ही खुद की रक्षा करने का तरीका भी सिखा देते हैं। मोगली बड़े होने तक कई जानवरों की भाषा सीख जाता है बच्चों, साथ ही वह आसानी से पेड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना और शिकार करना भी सीख जाता है। इसी के साथ बच्चों, बघीरा ने मोगली को इंसानों द्वारा बिछाए गए फंदे और जाल से दूर रहने, साथ ही जाल में फंसने के बाद उससे बाहर कैसे निकला जाता है, इसके तरीके भी बघीरा ने उसे सिखाए थे। एक दिन बच्चों, समूह में रहने वाला एक भेड़िये का छोटा बच्चा शिकारियों के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। उस फंसे हुए भेड़िये को शेर खान खाना चाहता था। तभी शेर खान से पहले मोगली वहां पहुंचकर नन्हे भेड़िये को बचा लेता है। शेर खान को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है बच्चों। फिर शेर खान
कुछ दिनों बाद मोगली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। बच्चों, गुस्से में शेर खान फैसला लेता है कि वो मोगली को पकड़ने के लिए बंदरों की सहायता लेगा। बच्चों, सारे बंदर जंगल के दूसरे हिस्से में रहते थे और वो सारे बंदर काफी खतरनाक थे। शेर की बातें सुनकर बंदरों का राजा मोगली को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बंदरों का राजा अपने सारे बंदरों को मोगली को पकड़ने का आदेश भी दे देता है बच्चों। और एक दो दिन कुछ बंदर मोगली पर नजर रखते हैं। सही समय मिलते ही मोगली का अपहरण करके उसे घने जंगल से घिरे एक पहाड़ पर ले जाते हैं। बच्चों, मोगली सोच रहा था कि उसके पहाड़ में होने की बात बघीरा या बल्लू को पता चल जाए। तब उसे आसमान में उड़ता हुआ एक चील दिखाई दिया। मोगली उस चील को आवाज लगाकर कहता है कि तुम मेरी मदद कर दो, मेरी यहाँ होने की खबर बघीरा और बल्लू को दे दो। तुम उन्हें यह कहना कि मुझे बंदरों ने यहाँ कैद करके रखा है। चील ने जैसे ही मोगली की बात सुनी बच्चों, तो वो जंगल की तरफ बघीरा और बल्लू के पास पहुँची। बघीरा और बल्लू को मोगली की जानकारी मिलते ही वे कौ नामक अजगर से सहायता मांगने पहुँचे। शुरुआत में तो कौ सीधे बघीरा और बल्लू को मना कर देता है। फिर वे कौ को मोगली के बारे में बताते हैं और मोगली के बारे में जानकर कौ उनकी सहायता करने के लिए राजी हो जाता है। बच्चों, सभी मोगली को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और जल्द ही को बघीरा और बल्लू बंदरों के इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर तीनों छिपकर देखने लगते हैं। बच्चों, तीनों यह देखते हैं कि वहां सैकड़ों बंदर हैं। फिर थोड़ी देर बाद को कहता है कि अब मोगली को बचाने का समय आ गया है, चलो उसे बचाकर ले आते हैं। तभी तीनों बंदरों पर हमला कर देते हैं। बघीरा अपनी पंजों से बंदरों पर वार करता है, जिससे दर्द से बंदर चिल्लाने लगते हैं। तभी कुछ बंदर बल्लू पर टूट पड़ते हैं। यह देखकर को अजगर आता है और बंदरों को पूंछ से मारने लगता है। उसके बाद बंदर बच्चों डर डर कर भाग जाते हैं। फिर तीनों चैन की सांस लेते हैं और को मोगली को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाल देता है। और इस तरह बच्चों, मोगली आजाद होते ही पेड़ के पीछे दौड़कर छिप जाता है। फिर अचानक से बच्चों, बंदर हमला करके बघीरा को भी घेर लेते हैं। बघीरा को घेरने के बाद बंदर मोगली को फिर से पकड़ लेते हैं। मोगली देखता है कि बघीरा गिरा हुआ है। तभी उसे याद आता है कि बंदरों को पानी से डर लगता है। वो बघीरा को चिल्लाकर बोलता है कि तुम पानी में कूद जाओ, क्योंकि बंदरों को पानी से डर लगता है। बच्चों, बघीरा यह सुनते ही तुरंत पानी में कूद जाता है और बंदरों के चुंगल से बाहर निकल जाता है। और कुछ समय बाद बच्चों, मोगली बंदरों की कैद से भाग जाता है और फिर वह इंसानी बस्ती में पहुंचता है। उस बस्ती में पहुंचने के बाद उसे एक औरत मिलती है। उस औरत का नाम मेसुआ था, जिसका बच्चा सालों पहले एक शेर जंगल में उठाकर ले गया था। बच्चों, आपको बताऊं तो मोगली उसी औरत के साथ गांव में रहने लगता है। गांव वालों ने भी मोगली को रहने दिया और उसे जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। इसी के बाद बच्चों, कुछ दिनों बाद मोगली का भेड़िया भाई उसे गांव में देखता है। देखते ही भेड़िया सीधे मोगली के पास जाकर उसे बताता है कि शेर खान उसे मारने की तैयारी कर रहा है। बच्चों, मोगली जान गया था कि शेर खान उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए मोगली ने उसे खत्म करने का एक प्लान बनाया। उस योजना में मोगली ने अपने भेड़िया भाइयों की भी सहायता ली। उसने भेड़िये से कहा कि शेर खान को एक घाटी पर ले आओ। शेर खान की घाटी पर पहुंचने के बाद बच्चों, मोगली ने दोनों तरफ से भैंसों का झुंड छोड़ दिया और खुद भी एक भैंसे पर बैठ गया। बच्चों, शेर खान भैंसों के झुंड के पैरों के नीचे आ जाता है। तभी शेर खान की मृत्यु भी हो जाती है। फिर मोगली बेखौफ होकर गांव वालों के साथ रहने लगता है। बच्चों, कुछ समय बीतने के बाद गांव के कुछ लोगों ने मोगली पर जादू करने का आरोप लगाया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। तब तक मोगली बड़ा हो गया था। वहां से निकलकर वो सीधे जंगल गया। बच्चों, वहां रहते हुए कुछ समय बीता ही था कि उसके भेड़िये भाइयों और बहनों की मृत्यु हो गई। वह अकेले उदास घूमने लगा। तभी उसकी मुलाकात दोबारा मेसुआ से हुई। बच्चों, मोगली अपनी सारी कहानी मेसुआ को बताता है
और मेसुआ को यह यकीन हो जाता है कि उसके जिस बेटे को शेर उठाकर ले गया था वही मोगली है। मेसुआ अपनी कहानी मोगली को बताती है और फिर दोनों साथ में रहने का फैसला करते हैं। बच्चों, इसके बाद मोगली इंसानों की बस्ती में खुशी खुशी रहने लगता है और समय मिलने पर जंगल जाकर अपने दोस्तों से भी मिलता है। तो बच्चों, यह था मोगली के जीवन से जुड़ा हुआ एक किस्सा जिसमें हम ये जान पाए कि किस प्रकार से मोगली जानवरों के साथ भी रहकर जानवरों की भाषा सीख गया। तो बच्चों, इस तरीके से हम जान पाए कि किस प्रकार से हौसला रखने पर हर मुश्किल दूर हो जाती है, साथ ही हर इंसान को पशु पक्षियों के संग प्यार से पेश आना चाहिए और वक्त पड़ने पर वो दोस्त बनकर हमारी मदद भी कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई जानवर दोस्त है तो उससे दोस्ती आपको कभी नहीं तोड़नी है। और साथ ही कभी कभी बच्चों, इंसान भी हमारे काम आते हैं और कभी कभी जानवर के दोस्त भी हमारे काम आते हैं। तो बच्चों, यह तो हमारी कहानी पूरी हो गई। अब मुझे बढ़ना होगा अगली कहानी की ओर। लेकिन अगली कहानी की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर सुनवाना चाहूंगी एक और प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिएगा बच्चों कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के में और सुनते रहिएगा आपका अपना पसंदीदा रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

बच्चों, जैसा कि हमारा गीत तो यहाँ पर पूरा हो गया और बहुत ही प्यारा सा गीत भी था यह। और गीत से पहले मैंने आपको मोगली की कहानी सुनाई थी कि किस प्रकार से मोगली जंगल में रहकर जंगल की सारी व्यवस्था को सीख पाया था। अब यही बच्चों, मैं आपको बताती हूँ दूसरी कहानी के बारे में। बच्चों, हमारी जो दूसरी कहानी है वो थोड़ी सी अनोखी है, यानी कि इस कहानी का नाम है अनोखी तरकीब। बच्चों, ये कहानी अगर मैं शुरू करूँ तो बहुत पुरानी बात है। एक अमीर व्यापारी के यहाँ चोरी हो गई थी। बच्चों, बहुत तलाश करने के बावजूद सामान न मिला और न ही चोर का पता चला। तब अमीर व्यापारी शहर के काजी के पास पहुंचा। हाँ बच्चों, काजी के पास, और चोरी के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। बच्चों, सब कुछ सुनने के बाद काजी ने व्यापारी के सारे नौकरों और मित्रों को वहाँ पर बुलाया। जब सब सामने पहुँच गए तो काजी ने सबको एक एक छड़ी दी। सभी छड़ियाँ बच्चों बराबर थी, न कोई छोटी थी और न कोई बड़ी थी, यानी कि सभी जो छड़ियाँ थी वो एक ही आकार की और एक ही लंबाई की थी। बच्चों, सबको छड़ी देने के बाद काजी बोला, इन छड़ियों को आप सब अपने घर ले जाएं और कल सुबह वापस मेरे पास लेकर आएं। इन सभी छड़ियों की ये खासियत है कि यह चोर के पास जाकर एक उंगली के बराबर अपने आप बढ़ जाती है। जो चोर नहीं होता उसकी छड़ी ऐसी की ऐसी रहती है, न बढ़ती है और न ही घटती है। इस तरह मैं चोर और बेगुनाह की पहचान कर लेता हूँ। बच्चों, काजी की बात सुनकर सभी अपनी अपनी छड़ी लेकर अपने अपने घर चल दिए। उन्हीं में से व्यापारी के यहाँ चोरी करने वाला चोर भी था। जब वह अपने घर पहुँचा तो उसने सोचा कि अगर कल सुबह काजी के सामने मेरी छड़ी एक उंगली बड़ी निकली तो वह तो मुझे तुरंत पकड़ लेगा, फिर न जाने वह मुझे सबके सामने कैसे सजा देगा। इसलिए क्यों न इस विचित्र छड़ी को एक उंगली काट दिया जाए ताकि काजी को कुछ भी पता ही ना चले। बच्चों, चोर यह सब सोचकर खुश हो रहा था और फिर उसने तुरंत छड़ी को एक उंगली के बराबर काट दिया। फिर उसे घिस घिस कर ऐसा कर दिया कि पता ही ना चले कि वह काटी गई है। फिर बच्चों, अपनी इस चालाकी पर चोर बहुत खुश था और खुशी खुशी चादर तान कर सो गया। अब बच्चों, सुबह चोर अपनी छड़ी लेकर खुशी खुशी काजी के पास पहुंचा। वहां पहले से काफी लोग जमा थे। काजी ने एक एक करके छड़ी देखना शुरू किया। जब चोर की छड़ी देखी गई तो वह एक उंगली छोटी पाई गई। उसने तुरंत चोर को पकड़ लिया और फिर उससे व्यापारी का सारा माल निकलवा लिया और फिर बच्चों, चोर को जेल में डाल दिया गया, जिसके कारण पूरे गांव में काजी की अनोखी तरकीब की प्रशंसा हुई। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी अनोखी तरकीब। हमने इस कहानी के माध्यम से ये जाना कि हमें कभी भी चोरी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं ना बच्चों कि चोरी करना कितनी गंदी बात होती है। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हम ये तो जान गए कि चोरी करना तो पाप है, लेकिन एक बात और हमने जानी, वो ये बच्चों कि काजी की छड़ी कोई जादुई छड़ी नहीं थी। उसने तो अपने दिमाग का उपयोग करके चोर का पता लगा ही लिया। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की दोनों कहानियाँ। हमने पहली कहानी में मोगली के जीवन के बारे में जाना था और दूसरी कहानी में हमने चोर का पता लगा लिया। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में ये जो दो कहानियाँ मैंने आपको सुनाई है वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। और अब समय भी हो चला है बच्चों कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।

प्यारे बच्चों, इस गीत के बाद मैं कार्यक्रम बात नन्हे दिलों के से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी और आशा करती हूं कि आज के कार्यक्रम में जो भी मैंने आपको कहानियां सुनाई और जो गीत संगीत हमारे रहे वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो बच्चों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिएगा बच्चों, हमारा पता है कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो बच्चों, फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान में। कहते हैं दोस्तों कि संघर्ष इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि उससे उसकी असली ताकत से मिलाने आता है। हमारे गांवों और समाज में भी ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों, कठिन परिस्थितियों और कई चुनौतियों के बावजूद हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हौसले, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का रास्ता तैयार किया। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम एक ऐसी ही महिला से ढेर सारी बातचीत जानने वाले हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारे मेहमान में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले बताया था कि संघर्ष जो है वो इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि उसे उसकी असली ताकत से मिलवाने आता है। आज की हमारे विशेष कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं समुदाय की एक ऐसी ही प्रेरणादायक साथी से। हम जानेंगे उनके जीवन का सफर, संघर्ष की कहानी, चुनौतियों से लड़ने का साहस और उनकी उपलब्धियों के बारे में जिन्होंने उन्हें समाज में एक नई पहचान दिलाई। तो आइए हार्दिक स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक बातचीत। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आपका क्या नाम है?
1: मेरा नाम है अमली ग्रासिया और मैं गांव अमलीपाड़ा से हूँ, ब्लॉक सज्जनगढ़ से हूँ।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि आप गांव अमलीपाड़ा की रहने वाली हैं और आज आप हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से जुड़ रही हैं और हमारे सभी श्रोता साथी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम ऐसी शख्सियत को जोड़ते हैं जो अपने जीवन में संघर्ष

0: करते हैं और अपने जीवन को नई दिशा देते हैं। तो कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका बचपन किस कदर बीता।
1: सबसे पहले तो मेरे बचपन में मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, केजी से लेकर मैं 8वीं कक्षा तक मैं प्राइवेट स्कूल में मिशन में पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद जब मैं 8वीं कक्षा पढ़ी, उसके बाद तुरंत मेरी गर्मी की छुट्टियों में मेरी शादी करवा दी। और मेरे पिता तब नेता भी थे,
0: बिल्कुल,
1: तो उन्होंने शादी करा दी। उसके बाद मेरे ससुराल में मैं पढ़ाई आगे करना चाहती हूँ और पढ़े भी, मेरे 2 बच्चे हो गए, तो भी मैंने 10वीं और 12वीं मैंने 2 कक्षा मैंने पढ़ाई करके मैंने 12वीं पास की शादी करके भी। उसके बाद हमारे परिवार में कुछ मान लो सास ससुर के साथ कुछ हुआ भी, दुख भी आया मेरे को, इस दुख से आगे मैं बाहर भी निकल नहीं पाती थी, तो भी मैं उनसे भी बाहर निकलने की कोशिश की।
0: जी जी।
1: उनके बच्चों के पापा से भी मैंने उनको समझाया कि अलग अलग गांव में ये समूह जोड़ रहे हैं, तो मेरे को मीटिंग में जाने दो। मैं पहले तो किसी संस्था से जुड़ी नहीं थी,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन गांव में कोई मीटिंग करने के लिए आते थे तो उनके पास जाके बैठती थी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी होने के नाते मेरे को लोग बुलाते थे,
0: बिल्कुल,
1: कि उनके गांव में उनके परिवार में कोई पढ़ी लिखी महिला नहीं है, तो वो लोग आते थे तो उनके साथ में बैठती थी, उनकी बातें सुनती थी।
0: जी जी।
1: फिर धीरे धीरे मेरे को अनुभव हुआ मीटिंग में बैठने से, तो उनकी बातें सुनी, तो मैंने फिर महिलाओं के साथ मैंने संपर्क किया।
0: जी जी।
1: फिर हमने समूह बनाया, महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाया,
0: बिल्कुल,
1: समूह बनाया। उसके बाद महिलाओं को मैंने सभी को एक्टिव महिला बनाई, महिलाओं से बातचीत की, हमने 20-20 रुपया का हमने बचत की, बचत के माध्यम से मैंने महिलाओं को लोन भी दिलवाया,
0: बिल्कुल,
1: लोन दिलवाया तो महिला ने मान लो किस्त के आधार पे वो भी लोन भरा। उसके बाद में समूह के साथ साथ में मेरे को सिलाई सीखने का मौका मिला।
0: जी जी।
1: तो मैंने अपने बांसवाड़ा बड़ौदा स्वरोजगार में मैंने 1 महीने की मैंने सिलाई सीखी, क्योंकि घर पे ही मैं मेरा रोजगार कर सकूं।
0: जी जी।
1: तो मैंने लॉकडाउन के टाइम में भी मैंने घर पे ही सिलाई की। इसके बाद मान लो सिलाई का काम किया तो मैं 10,000, 12,000, 15,000 रुपया में थोड़ा थोड़ा मान लो कमाने लगी। उसके बाद फिर मेरे को अनुभव हुआ कि राजीविका के माध्यम से जो बीसी बैंक मित्र का पद निकला।
0: जी जी।
1: तो फिर मैंने बीसी का भी मैंने काम किया, मेरे को कंप्यूटर भी नहीं आता था, मेरे को माउस कैसे बोले वो भी मेरे को पता नहीं था,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन मैंने कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग की। उसके साथ मैंने बीसी का भी काम किया।
0: जी जी।
1: और महिलाओं का लोगों का मैंने पैसा भी ट्रांसफर किया, उनका लिया, उनको ट्रांसफर मान लो उनको बैंक से मान लो वहाँ पे बाजार हमारी बहुत दूर पड़ती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: दूर पड़ती है बाजार, तो वहाँ के मान लो कोई ऑटो भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, कोई बुजुर्ग लोग आने जाने में तकलीफ होती है।
0: जी जी।
1: उन लोगों को मैंने साथ ताकि उनके घर घर जाके मैंने उनका पैसा भी उनको निकाल के दिया। उसके बाद धीरे धीरे अपनी ये संस्था फिर रही, उन्होंने हमको जैविक के बारे में हमें बताया,
0: बिल्कुल,
1: जैविक के बारे में बताया, तो जैविक क्या है लोग समझते नहीं थे पहले, पुरानी पद्धति में तो लोग करते थे क्योंकि देसी खाद और देसी दवाई, और जो बुखार भी आ जाता तो लवली करके वो बांध देते थे तो उनका बुखार भी खत्म हो जाता था।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो ऐसी मैंने कई संस्था से ऐसी बातें सुनी, तो मैंने घर आके मैंने भी जैविक अपनाया, मैंने वर्मी खाद बनाया,
0: बिल्कुल,
1: मैंने अजोला भी बनाना शुरू किया, जो मैंने देखा वो मैंने अजोला बनाया, वर्मी कंपोस्ट बनाया, 10 पन्नी वाली दवाई भी बनाई, जीवामृत भी बनाया, मिर्च लहसुन और प्याज वाली दवाई भी बनाई। इसी प्रकार मैंने महिलाओं के बीच में महिलाओं को इकट्ठा करके 30-35 महिलाओं के 50 महिलाओं के ऐसे मैंने 20-20 ग्राम संगठन की बैठक की, CLF की बैठक की। उसी प्रकार मैंने सब महिलाओं को ये जैविक के बारे में बताया,
0: बिल्कुल,
1: साथ ही मेरे को अलग अलग जो मीडिया वाले आए कि ये महिला मान लो इतना काम कर रही है, मीडिया वालों ने मेरा वीडियो भी लिया, और कोई अलग अलग मान लो जयपुर से दिल्ली से कहीं वो विदेश से भी लोग मेरे घर पे आए, उन्होंने मेरे को जानकारी दी कि आपने कैसे सीखा, तो उनको मैंने पूरी मेरी डिटेल मैंने बताई,
0: बिल्कुल।
1: उसके बाद मैं धीरे धीरे फिर मैं बाहर निकली, यह सब करना मैंने सीख लिया, और फिर अभी भी हाल में अपनी ये इस वागदरा संस्था से मैं जुड़ी, तो इस संस्था में मेरे को बहुत अनुभव हुआ जैविक खेती कैसे करना है, तो जैविक भी खेती मैंने की, उन्होंने मेरे को सपोर्ट दिया,
0: बिल्कुल,
1: कि वर्मी कंपोस्ट दिया, नाडेप दिया, अजोला भी दिया, वो एक घास आती है जाड़ी वाली वो भी हमको दिया, वो भी मैंने की। फिर मैंने बायोगैस, मेरे वागदरा सस्ता नहीं, तो मेरे को दो प्रकार के मेरे को बायोगैस मिले
0: जी जी,
1: तो मेरे को पूना भी जाने का मेरे को मौका मिला।
0: बिल्कुल,
1: वहाँ भी मैं गई।
0: बिल्कुल, जैसा कि आप आपका जीवन परिचय हमें बता रही हैं कि आपने जीवन में कई सारा संघर्ष किया, जैसा कि आपने वागधारा संस्था से जुड़ने से पहले जो संघर्ष किए उसके बारे में जानना चाहूंगी कि आपके गांव में तो बहुत सी बार महिलाएं जब इधर से उधर जाते होंगे तो लोग इधर उधर की बहुत सारी बातें करते हैं, तो उन सारी चीजों को आपने कैसे फेस किया? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सी जो महिलाएं होती हैं वो इन सारी चीजों को सुनकर डर जाती हैं, वो ये सोचती हैं कि मुझे क्या करना है, अगर मैं घर से बाहर निकली तो लोग मेरी बातें करेंगे, तो इन सारी चीजों को आपने कैसे जवाब दिया?
1: इन सारी चीजों को भी मेरे को इस बातों से मेरे को बहुत सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरे ससुर थे, वो मैं जाती थी तब मान लो मेरे पति को बोलते थे कि तेरी औरत कहाँ जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: तो भी मेरे पति ने मेरे को सपोर्ट दिया कि मेरी औरत वो कमाने के लिए जा रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ, वो भी मजदूरी कर रही है, वो आगे बढ़ेगी जाएगी तब तो वो सीखेगी।
0: बिल्कुल,
1: तो मेरे को मेरे पति मेरे को साथ में छोड़ने के लिए आए, जहाँ भी मीटिंग थी वहाँ पे छोड़ा मेरे को, जहाँ भी फिर धीरे धीरे मेरे को आगे से मान लो ट्रेनर के रूप में मेरा चयन हुआ, तो उन्होंने मेरे को दिल्ली जाने का मौका दिया, जयपुर जाने का मौका दिया, मैं अकेली अकेली गई, पूना में मैं भी अकेली गई, और उसके बाद फिर मेरे को जहाँ भी भेजना वहाँ का मौका मिला वो उन्होंने छोड़ा नहीं, कोई बात नहीं, वो निकलेगी, वो जाएगी तो वो सीखेगी।
0: बिल्कुल,
1: यू करके मेरे को मेरे पति ने भी मदद की, उनके खातिर मैं आज बहुत आगे भी हूँ
0: जी जी,
1: और आज भी हाल में उनकी मदद से मैं काम कर रही हूँ, और ये अपने वागधारा संस्था के माध्यम से मैंने जो उज्ज्वला सीखा है, वर्मी सीखा है, और बायोगैस के माध्यम से और जैविक खेती मैंने की है, जो मेरा खेत पूरा बिल्कुल जैविक का है
0: जी जी।
1: उसके माध्यम से मेरे को दो बार मेरे को सम्मानित में जिला स्तर पर हो चुकी हूँ।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रही हैं कि आप जिला स्तर पर सम्मानित हो चुकी हैं, आप विदेश भी अकेली चली गई हैं जैसा कि आप बता रही हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपको कैसा लग रहा है, आप अपने दम पर आत्मनिर्भर बनी हैं, तो आपको ये सारी चीजें पाकर कैसा सुकून मिल रहा है?
1: मेरे को अब बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पहले की स्थिति मेरे को अभी जीवन में भी अगर मेरे को याद आ जाए तो मेरे को बहुत दुख लगता, मैं ऐसे ही रहती तो मैं अभी किस जगह पे हूँ, और अगर मैं घर से इनका सामना नहीं करती तो मैं किस जगह पे रहती।
0: बिल्कुल, तो आप दूसरी महिलाओं को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी जिनकी स्थिति बहुत सी बार ऐसी हो जाती है और वो हार मान लेती हैं?
1: उनको मैं जाके समझाती हूँ कि उनको महिलाओं को कोई मान लो कोई उनका पति भी परेशान करता है, कोई सास ससुर भी परेशान करता है, तो उनको जाके उनके सास ससुर को भी मैं समझाती हूँ, बीच में मान लो थाने में कोई मान लो ऐसा केस भी आ जाता है तो वहाँ भी मैं सुलझाने के लिए मैं जाती हूँ, और महिलाओं के प्रति में कहीं पे कोई भी महिला के ऊपर दुख आ पड़े उनका दुख में पूरा मैं मेरे ऊपर लेती हूँ, उनको समझाती हूँ, समझा बुझा के उनको भेजती हूँ उनके, लेकिन उसका रिश्ता टूटने नहीं देती हूँ। ऐसा कोई भी केस भी हुआ, थाने में भी हुआ, कलेक्टर तक एसपी तक गया, वो भी मैंने सोल्व किया, महिला थाने में भी इनको मैंने लड़ झगड़ के कैसे भी करके उन महिलाओं का भी सामना किया, और महिलाओं को फिर उनके जगह पे मैंने समझा बुझा के उसको रखा।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने आपके जीवन में कई बदलाव देखे हैं और कई चुनौतियां भी देखी हैं और उनसे लड़कर आप बहुत अच्छा काम अभी के समय में कर रही हैं, तो आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं इनको ये भी संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी मान लो ये जो अपने कहीं भी मीटिंग हुए, कहीं भी मान लो संगठन की बैठक हुए, तो संगठन से जुड़ के कुछ न कुछ जो अपनी संस्था बता रही उसके आधार पर सुन के वो काम करे, उसके बाद वो खुद अपने आत्मनिर्भर बने, खुद के पैरों पे खड़े हो सके, वो भी मेरे जैसा ही काम करे, क्योंकि मैं भी इतनी परेशानी थी तो मैंने इधर उधर कोई भी एनजीओ से जुड़ी, उसके बाद मैंने वो बीसी का काम किया, सिले का काम किया, और अभी मैं एक बिजनेस का काम भी मैंने शुरू किया है, जो कि मैं मेरे घर पे ही मैं साबुन, अगरबत्ती, सरफ और शैम्पू ये सब कुछ मैं मेरे हाथों से बना रही हूँ, वो बिल्कुल बिना केमिकल का, बिल्कुल हर्बल ही है, साबुन भी अलग अलग वेराइटी के हैं, नीम का है, एलोवेरा का है, पपीता का है, मुल्तान की मिट्टी का है, और गुलाब के फूल का है, और ऑरेंज का है, ऐसे कई प्रकार के मैं हर्बल साबुन भी बनाती हूँ
0: जी जी। तो जैसा कि आप ये साबुन बना रही हैं, तो फिर ये आप कहाँ बेचती हैं, क्या करती हैं, ये भी आप हमारे श्रोता साथियों को बताइए, ताकि अगर कोई महिला ऐसा कार्य करना चाहे, घर बैठे आत्मनिर्भर बनना चाहे तो वो बन सके।
1: सबसे शुरुआत से मैं घर पे भी मैंने मेरे दुकान पे भी बेचा, उसके बाद मैंने कुशलबाग मैदान में राज सखी मेला लगा था, मैंने मेरी स्टॉल डाली थी, उसमें चार पांच दिन में मेरे 85,000 की बिक्री हुई साबुन की अगरबत्ती की 4 दिन में। उसके बाद जहाँ पे मेरा फोन नंबर गया उन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया। ऑर्डर पे मैं बांसवाड़ा भी जाती हूँ, कुशलगढ़ भी जाती हूँ और कोई लोग घर पे भी आते हैं ऐसे ऑर्डर पे मंगाते हैं तो ऑर्डर पे भी मैं दे देती हूँ और घर पे आते हैं तो उनको भी घर पे भी दे देती हूँ। और मैंने इसी पूरे सज्जनगढ़ में 30-30 महिलाओं को मैंने ट्रेनिंग भी दी है क्योंकि आप भी आत्मनिर्भर बनो, उनकी मदद भी खूब मैंने की है, मेरे घर पे भी बुला के उनको मदद की है, उसी प्रकार मैंने खुद काम किया है। अभी भी मेरे साबुन अगरबत्ती ये भी मेरा काम चल रहा है और जैविक वाला भी अभी चल रहा है। मेरे यूं नहीं कि मैं ये काम नहीं कर सकूं, जो मेरे को मैं सुनती हूं, जो मैं देखती हूं, वो मेरी देखी और सुनना वो सब काम मैं करके ही रहती हूं।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी से हमें अवगत करवाया है तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: धन्यवाद।
0: साथियों, आज की बातचीत हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल बड़े शहरों या बड़े अवसरों की मोहताज नहीं होती। सच्ची सफलता उस व्यक्ति के कदम चूमती है जो हर कठिनाइयों में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता और लगातार आगे बढ़ता रहता है। हमारी आज की मेहमान का जीवन इस बात का प्रमाण है श्रोता साथियों कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और सकारात्मक सोच से हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। उम्मीद है कि उनकी कहानी आप सभी के भीतर भी नए सपनों को जगाएगी और उन्हें पूरा करने का आत्मविश्वास देगी। हम अपने सम्माननीय मेहमान का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के अनुभव हमारे साथ साझा किए। साथ ही यदि आपके पास भी कोई ऐसी महिला, युवा या व्यक्ति है जिनकी प्रेरणादायक कहानी समाज तक पहुंचानी चाहिए तो हमें अवश्य बताइए। हो सकता है कि अगली प्रेरक कहानी आपके गांव से हो। तो श्रोता साथियों, बातें ढेर सारी हो गई हैं, समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान से हम विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि कार्यक्रम में हमारे मेहमान द्वारा जो बताई गई बातचीत है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम हमारे मेहमान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में। साथियों, बापू का संदेश है सबसे महान, सत्य, सेवा और अहिंसा बने हमारी पहचान, नफरत से नहीं प्यार से जीते हर दिल, यही था गांधी जी का सबसे सुंदर मंजिल।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसे कि दोस्तों, पिछले रविवार को कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन के माध्यम से हमने बात की थी सबके गांधी रचनात्मक कार्यक्रम प्रकरण के बारे में।
1: बिल्कुल।
0: अब यही आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि जी हमारे बीच में नया प्रकरण जुड़ने जा रहा है। आज हम बात करेंगे सबके गांधी गांधी जी के उपवास को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, गांधी जी के उपवासों में धार्मिकता नहीं थी, यह तो नहीं कह सकते, पर उनके उपवासों और धार्मिक उपवासों में गुणात्मक अंतर जरूर था। उनके अनेक प्रसिद्ध उपवासों की प्रक्रिया में मूल धार्मिक भावना के साथ सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिकता विद्यमान थी साथियों।
1: बिल्कुल।
0: जिनके कारण गांधी जी के उपवासों को नितांत नया ही परिणाम मिलता था। वैसे तो साथियों, भारत में उपवास कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। बहुत सारे धर्मों में एक धार्मिक विधि के रूप में भोजन के संबंध में किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण रखने की परंपरा जरूर है।
1: बिल्कुल।
0: हिंदू अनेक प्रसंगों में उपवास, एकाशन, फलाहार करते हैं अंजलि जी। वहीं मुस्लिम वर्ष में एक रमजान के महीने में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं। उन दिनों में श्रोता साथियों, दिन भर वे पानी तक नहीं पीते, बल्कि कट्टर मुसलमान तो थूक निगलना भी वर्जित मानते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उपवास के मामले में जैन शायद सबसे बढ़ चढ़ कर है। मात्र जैन मुनि ही नहीं, बल्कि जैन श्रावक भी लंबे लंबे उपवास करने के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत की कई भाषाओं में तो उपवास के लिए व्रत शब्द ही प्रचलित है।
1: बिल्कुल। श्रोता साथियों, गांधी जी के उपवासों में धार्मिकता नहीं थी, यह तो नहीं कह सकती, पर उनके उपवासों में धार्मिक उपवासों में गुणात्मक अंतर था। उनके अनेक प्रसिद्ध उपवासों की प्रक्रिया में कशिश मूल धार्मिक भावना के साथ सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिकता विद्यमान थी।
0: बिल्कुल।
1: जिनके कारण गांधी जी के उपवासों को नितांत नया ही परिणाम मिलता था। जिस वातावरण में गांधी जी का बचपन बीता था, उसमें उपवासों का एक खास स्थान था। विशेष रूप से उपवास के विषय में गांधी जी की मान्यता को निर्मित करने में उन्हें माता से विरासत प्राप्त हुई थी, ऐसा कहा जा सकता है। गांधी जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा में माँ पुतली बाई के व्रतों का वर्णन स्नेह व आदर के साथ किया है।
0: बिल्कुल।
1: बाल्यावस्था से ही गांधी जी ऐसे संस्कार लेकर बड़े हुए थे, कशिश के उपवास एक पवित्र वस्तु है। इन व्रतों ने, दृढ़ पालन ने उनके चरित्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा की होगी।
0: बिल्कुल।
1: माता के चंद्रायन व्रत का तो उन्होंने स्वयं की प्रशंसा युक्त वर्णन किया है। वैष्णव परिवार के बालकों में एकादशी, जन्माष्टमी ये व्रत जरूर रखे होंगे। प्रायश्चित के रूप में गांधी जी के पहले आंशिक उपवास उनकी किशोरावस्था में ही किए गए थे। एक बार आमों के मौसम में उन्होंने कई मित्रों को आम उत्सव मनाने के लिए आमंत्रित किया था। इसे मना लेने के बाद उन्हें ध्यान आया कि एक बहुत घनिष्ठ मित्र को तो वे उस दिन आमंत्रण देना ही भूल गए थे।
0: बिल्कुल।
1: इस भूल के प्रायश्चित के रूप में गांधी जी ने उस पूरे आम के मौसम में आम को हाथ तक नहीं लगाया, जबकि उन्हें आम बहुत भाते थे।
0: जी हाँ साथियों, अध्ययन के लिए इंग्लैंड जाते समय माता ने तीन प्रतिज्ञाएं करवाई थी। उनमें से एक शाकाहार की भी थी। उस प्रतिज्ञा के पालन के लिए इंग्लैंड के बहुत से समवयस्क लोगों के उपवास और कई बुजुर्गों की अजीजी, चिरोरी, समझाइश या उनके उल्हानों को सहन करते हुए एक प्रकार से प्रतिज्ञा ही स्वीकार कर ली थी। शाकाहार की प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने कई बार पूर्ण या आंशिक निराहार भी किए थे। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में डबरन से फिनिक्स आश्रम में जाकर जब से रहने लगे, तब से गांधी जी के जीवन में उपवास ने एक नया ही स्थान ले लिया था।
1: बिल्कुल।
0: स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए उन्हें पूरा भोजन छोड़कर फलाहार शुरू किया। यह फलाहार कई बार तो महीनों तक चला अंजलि जी। वहीं हम देखते हैं कि फिनिक्स आश्रमों में ही उपवास में एक नया तत्व उभरा, जिसे कदाचित उनके उपवासों के गुणात्मक परिवर्तन के मूल में माना जाता है।
1: जी जी।
0: साथियों या विद्यार्थियों की किसी गलत या भूल के कारण गांधी जी ने अमुक अवधि तक भोजन छोड़ना शुरू किया। बाहर की दृष्टि से अगर देखें तो ये गलतियां करने वालों को एक प्रकार की सजा ही थी साथियों।
1: जी हाँ।
0: इसमें भाव सामाजिक जीवन में एक भूल को स्वयं अपनी भूल मानना था, दूसरों की भूल या पाप को अपनी भूल या पाप मानने का भाव आध्यात्मिक है। इसमें आत्मा की एकता की स्वीकृति है और फिनिक्स में इसका आरंभ हुआ आश्रम वासियों या आश्रम कुमारों के साथ तादत में से। वहीं कलकत्ते और दिल्ली के अंतिम दो उपवासों में समग्र समाज के एक बड़े भाग के पाप के लिए प्रायश्चित का भाव शामिल था।
1: जी जी।
0: जबकि फिनिक्स के उपवास का मूल कदाचित इतना शुद्ध आध्यात्मिक नहीं था। विद्यार्थी की भूल जानकर दोस्तों, गांधी जी को क्रोध आया होगा। उस क्रोध को उन्होंने अहिंसा विषयक उस समय अपने परिपक्व विचारों के कारण विद्यार्थी को मारकर नहीं, स्वयं अपने गाल पर थप्पड़ मारकर प्रकट किया था।
1: बिल्कुल।
0: परंतु गांधी जी अंजलि जी वहीं रुक नहीं गए। उस समय किए गए उनके अनशन के समय और उसके बाद संकलित आंशिक भोजन यानी कि फलाहार या फिर एकाशन या फिर नमक त्याग के समय गांधी जी का सतत चिंतन इस बारे में चला। दोस्तों, इस चिंतन में से उनका आध्यात्मिक विचार निकला है कि यदि समाज में रहने वाले सभी लोग एक आत्मा के धागे से बंधे हुए हो तो समाज में एक दूसरे को पारस्परिक सुख दुख और पाप पुण्य में भागीदार रहना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो कशिश, जैसा कि कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमारी आज बातचीत चल रही है गांधी जी के उपवास को लेकर, तो बातें निरंतर आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ दिलेश जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में, जिसमें हम जान रहे हैं सबके गांधी, गांधी के उपवास प्रकरण को लेकर। श्रोता साथियों, ऐसे उपवास का प्रभाव जिसे लेकर उपवास किया गया हो उस पर सीधे या तिरछे पड़ता है, ये गांधी जी देखते जानते न हो ऐसा नहीं है। गांधी जी जैसे व्यक्ति जो उपवास पर उतर आए हो तो आश्रमवासी या विद्यार्थी को लज्जित होना पड़े, यह भी स्पष्ट था। फिर उनको देखकर दूसरों को भी उपवास करने की प्रेरणा मिले, यह भी संभव था। शुरुआत में ही उपवास यदि किसी एक या अधिक व्यक्तियों को ध्यान में रखकर किया गया हो कशिश, तो उपवास करने वाले और उस व्यक्ति के बीच प्रेम का संबंध होना चाहिए। बीमारी के उपाय के रूप में या किसी अतरंग व्यक्ति का स्खलन देखकर हुए उपवास के प्रकार में एक दूसरा बड़ा परिवर्तन आया। गांधी जी को स्वदेश आकर रहने के बाद से अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मालिकों के बीच विवाद के समय मजदूरों की हड़ताल चल रही थी, तब गांधी जी ने बीच में ही उपवास किया था। प्रसंग ऐसा बना कि 4-5 दिनों से हड़ताल चल रही थी। साबरमती के पार्ट पर रोजाना शाम को सभाएं होती और उसमें हड़ताल का उद्देश्य समझाया जाता। पत्रिकाओं द्वारा भी संपूर्ण अहिंसक संघर्ष का हेतु, उनकी काम करने की पद्धति, ये सभी समझाई जाती। दूसरों पर भी इस बात को लेकर बल दिया जाता कि किसी भी सूरत में वे अपनी प्रतिज्ञा भंग न करें। गांधी जी के साथ ही दिन में मोहल्ले मोहल्लों, कोठरियों कोठरियों जाकर मजदूरों की मनोवृत्ति कैसे काम करती है इसकी सूचनाएं भी लाते। रोज रोज कमाकर जीवन जीने वाले श्रमिकों का मनोबल थोड़ा कमजोर पड़ने लगा था। एक दिन छगनलाल गांधी खबर लाए कि जुगल किशोर की चाल में कई मजदूरों ने उन्हें कहा कि गांधी जी को या अनुसुया बहन को क्या परेशानी है, ये तो खाते हैं, पीते हैं और मोटर में आते जाते हैं, हम तो भूखे मर रहे हैं। ये बात सुनकर गांधी जी व्यथित हो उठे। इस संबंध में उनका चिंतन चलता ही रहा। शाम को नदी किनारे सार्वजनिक सभा में इस बात का उल्लेख करते हुए कशिश, अचानक गांधी जी ने घोषणा की कि जब तक इस मामले का समाधान नहीं होता तब तक वे भोजन नहीं करेंगे और वाहन में कभी नहीं बैठेंगे। ये बात सुनकर पूरी सभा आंदोलित हो उठी। मजदूर मर जाएं तब भी, जब तक इस सवाल का सम्मानजनक हल नहीं मिलेंगे तब तक उन्हें हड़ताल चालू रखने की अपनी प्रतिज्ञा की गंभीरता समझ में आई।
1: जी हाँ साथियों, गांधी जी द्वारा किए जाने वाले उपवास की बात श्रीमती अनुसुया बहन ने भी सभा में ही सुनी थी। उन्होंने भी चुपचाप उस दिन से भोजन छोड़ दिया था। मजदूर इस बात को लेकर उत्तेजित हो उठे। अंजलि जी, उनकी समस्या के लिए उनके प्यारे नेता उपवास कर रहे हैं। दो एक व्यक्तियों ने तो यहाँ तक कहा कि अनुसुया बहन अगर खाना नहीं खाती तो वे स्वयं पेट में छुरी भोंककर आत्महत्या कर लेंगे। गांधी जी ने भी अनुसुया बहन को उपवास आगे जारी न रखने के लिए समझाया। गांधी जी के आदेश से अनुसुया बहन ने तो उपवास छोड़ दिया, गांधी जी के उपवास चालू रहे। मिल मालिकों के प्रतिनिधि के रूप में अनुसुया बहन के भाई अम्बालाल साराभाई रोज गांधी जी के साथ चर्चा परिचर्चा करते थे। उनके साथ दूसरे मालिक भी वहां मिले। वे लोग इस प्रसंग में समाधान के लिए इस शर्त पर तैयार थे कि भविष्य में कभी आम हड़ताल न की जाए, उपवास चालू रहे। देश के कोने कोने से और विदेश से मालिकों के नाम तार आने लगे। गांधी जी के प्राण बचाने के लिए भी आप अपना आग्रह छोड़ दें, मजदूरों की तरफ से अब तो एक ही मुद्दे पर मांग होने लगी थी कि मजदूरी और महंगाई भत्ते के लिए अंतिम निर्णय हेतु सवाल पंच को सौंप दिया जाए।
0: जी जी,
1: आखिर ये मांग स्वीकार की गई। साथियों, पंच के लिए श्री आनंद शंकर ध्रुव का नाम सुझाया गया। श्री ध्रुव ने उससे पहले ऐसा मंतव्य दर्शाया था कि गांधी जी के उपवासों से मालिकों पर गलत दबाव पड़ रहा है। गांधी जी ने मजदूरों को श्री ध्रुव का नाम स्वीकार करने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें श्री ध्रुव की न्यायप्रियता और ईमानदारी के संबंध में पूरा विश्वास था।
0: जी जी,
1: पूरी समस्या पर गंभीरता पूर्वक अध्ययन करने के उपरांत अंजलि जी, श्री ध्रुव ने जो फैसला लिया वह 100% मजदूरों की मांग के पक्ष में ही था।
0: बिल्कुल कशिश, इस उपवास के दरमियान गांधी जी ने एक बात स्वीकार की थी कि उपवास से मालिकों पर दबाव आता था, परंतु साथ ही साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि ये उपवास मजदूरों को प्रतिज्ञा का महत्व समझाने और उनका मनोबल मजबूत करने हेतु ही थे।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हम कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये जान रहे हैं
1: गांधी जी के उपवास प्रकरण को लेकर तो ये बातें निरंतर हमारी अगले रविवार विशेष कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से अवश्य रहेंगी, लेकिन अभी कार्यक्रम से विदा लेते हैं। तो श्रोता साथियों, फिर मिलेंगे अगले रविवार विशेष कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
2: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।
1: तो साथियों, सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
3: जागृति बूंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बूंद हूँ था का?
3: अरे जागृति बूंद, आपड़ी जे नदी है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुके जागा।
4: ओ अंजलि बूंद, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बूंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बूंद, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बूंद, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने कोने बनाओ पड़े, सरकारी विभाग में जाओ या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
6: तो हमरो बोलू अरे सब समस्या में समाधान आपे करने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथों मुंह में जावू है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़ वो काटो नती, जय वरे अधिकार हमरा अपनावी, जानकारी सबनो हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
5: होवे भाइयों ने बहनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन का कागज माते अपने नाम लकाड़ो।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है, ऐसे स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
8: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की, जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
3: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
7: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
8: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा,
8: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
9: थारी में पासो लावो चूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार, बाजरा ज्वार रागी नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू, बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो,
10: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

वागड़ रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

0: साथियों, समानता का है जिसमें विधान, वही है भारतीय संविधान। भारत का संविधान देश के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता व समानता का अधिकार देता है।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में। पिछले रविवार हमारी आपसे बातचीत का विषय रहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और भारतीय संविधान में। हमने जाना था डॉक्टर अंबेडकर और संविधान निर्माण के बारे में। इसी के साथ हमने साझा पहल के नतीजे के बारे में जाना था।
1: जी हाँ,
0: साथ में हमने जाने थे संविधान निर्माण के चार चरण के बारे में। इसी के साथ हमने बात की थी अंजलि एक एक वाक्य पर

0: विचार विमर्श हुए थे उस पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं स्वतंत्र भारत को लेकर अंबेडकर की चिंताएं।
1: जी बिल्कुल
0: साथियों, अगर इसको लेकर हम बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर के मन में स्वतंत्र भारत के हालात को लेकर भी कुछ चिंताएं थी। उनका मानना था कि भारत को पूर्ण स्वराज मिल जाने के बाद भी समाज के भीतर छुआछूत, भेदभाव, शोषण और असमानता बनी रहेगी, क्योंकि स्वतंत्र होने के बाद भारत की शासन व्यवस्था पर उन लोगों और समूहों का आधिपत्य होगा जो जातिवादी, वर्ण और लैंगिक भेद आधारित सांप्रदायिक स्वभाव रखते हैं। शायद यही कारण है कि उन्होंने 1945 के अपने प्रस्तावित संविधान में ब्रिटिश शासित भारत की संकल्पना की थी। ऐसा नहीं है कि वे भारत की स्वतंत्रता के खिलाफ थे। सच तो यह है अंजलि कि उन्हें ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिलने के बाद भारत के भीतर बनने वाले हालातों का अंदाजा था। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश सरकार के माध्यम से सामाजिक आर्थिक बदलाव लाना संभव होगा।
1: जी बिल्कुल, इसी के साथ हम देखते हैं कि उन्हें संवैधानिक संचार की व्याख्या करते हुए यह बताने की कोशिश की थी जागृति जी कि अनुसूचित जाति समुदाय के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए क्या व्यवस्था होगी।
0: जी हाँ,
1: इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भर दिया जाए, बल्कि उन अधिकारों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था एक बुनियादी अनिवार्यता थी। उन्होंने एक तरह से इस दस्तावेज में समाजवादी राज्य और आर्थिक प्रजातंत्र की अवधारणा पेश की। श्रोता साथियों, बताना चाहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का सोचना था कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें सभी समुदायों को राज्य संस्थानों में समान प्रतिनिधित्व हासिल होगा।
0: जी हाँ,
1: हालांकि वे पृथक निर्वाचिका का प्रावधान संविधान सभा में पारित नहीं करवा पाए, लेकिन वे राज्य विधानसभाओं और संसद में अनुसूचित जाति जनजाति समूह के लिए निर्धारित स्थान आरक्षित करवाने में सफल रहे।
0: और अंजलि, हम बात करें अधिकारों को लेकर अंबेडकर जी के क्या विचार थे, तो साथियों डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि अधिकारों को केवल कानून के जरिए संरक्षित नहीं किया जा सकता। वे मानते थे कि कानून हमारी सामाजिक और नैतिक चेतना से भी संरक्षित होते हैं। यदि सामाजिक चेतना उन अधिकारों को मान्यता देने के लिए तत्पर होती है जो कानून द्वारा निर्धारित किए हैं, तभी अधिकार सुरक्षित होंगे। साथ ही यदि समाज खुद मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो तो कोई कानून, कोई संसद, कोई न्यायपालिका अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती।
1: जी बिल्कुल,
0: कानून अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी एक व्यक्ति को दंडित कर सकता है या सजा दे सकता है, किंतु कानून भी ऐसे लोगों के व्यापक समूह के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकता जो कानून के उल्लंघन के लिए प्रतिबद्ध है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार यह धारणा लेकर चलती है कि समाज भी लोकतांत्रिक है, लेकिन लोकतंत्र की औपचारिक व्यवस्था तब तक बेमानी और बेमेल है जब तक कि सामाजिक लोकतंत्र स्थापित न हो।
0: जी हाँ,
1: राजनीतिक विचारक यह महसूस नहीं कर पाए कि लोकतंत्र सरकार की व्यवस्था का रूप नहीं है, यह समाज की व्यवस्था का रूप है। किसी लोकतांत्रिक समाज के लिए यह जरूरी नहीं कि उसकी एक रूपता, उद्देश्य की समानता, लोगों के प्रति वफादारी, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति से चिन्हित किए जाएं।
0: जी हाँ,
1: लेकिन इसमें दो तत्व जरूर शामिल हैं, एक मानसिक प्रवृत्ति, गरिमा की प्रवृत्ति व दूसरों के प्रति समानता का भाव, और दो कठोर सामाजिक बाधाओं और भेदभाव की भावना से मुक्त समाज।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हम जानते हैं कि क्या अंबेडकर समाजवादी व्यवस्था चाहते थे। अगर इस पर बात करें साथियों, तो उस दौर के दस्तावेजों से तो यही लगता है कि अंबेडकर ऐसा ही चाहते थे।
1: हाँ।
0: वर्ष 1945 में प्रकाशित एक दस्तावेज में डॉक्टर अंबेडकर ने समाजवादी राज्य व्यवस्था का ही सपना देखा था। उनका मानना था देश के मुख्य उद्योग पूरी तरह से राज्य के अधीन होंगे, आधारभूत उद्योग सहकारी पद्धति से संचालित होंगे, बीमा क्षेत्र पर राज्य का नियंत्रण होगा। इतना ही नहीं, वे कृषि को राज्य नियंत्रित संपत्ति और व्यवस्था के रूप में देख रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था अंजलि कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य, निजी क्षेत्र या व्यक्तियों के मालिकाने में शामिल मुख्य उद्योगों, बीमा और कृषि भूमि को उनके मूल्य के मुताबिक डिबेंचर्स के रूप में मुआवजा प्रदान करके अधिग्रहित करेगा। खेती के बारे में उनका मॉडल अकल्पनीय था। इस दस्तावेज के मुताबिक कृषि क्षेत्र की व्यवस्था कुछ इस तरह है।
1: जी बिल्कुल, अगर पहली व्यवस्था के बारे में जाने तो श्रोता साथियों, राज्य अधिग्रहित की गई भूमि को गांव के लोगों के समान रूप से वितरित करके परिवारों के समूह को सरकारी साझा खेती के लिए प्रदान करेगा। दूसरी व्यवस्था के बारे में बात करें तो श्रोता साथियों, खेती के लिए राज्य नियम और निर्देश जारी करेगा। खेती से हुई आय को खेती करने में व्यय को हटाकर सभी सहभागी परिवारों में बांटे जाएंगे।
0: जी हाँ,
1: भूमि का आवंटन किराए पर देने की प्रक्रिया में वंश, जाति, वर्ग के आधार पर कोई भेद नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी भूस्वामी नहीं होगा, कोई किराएदार नहीं होगा और कोई भी भूमिहीन मजदूर नहीं होगा।
2: बिल्कुल, इसी के साथ राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह खेती की प्रक्रिया का पानी, खेती में सहयोगी पशु का पालन, कृषि उपकरण, खाद और बीज की आपूर्ति के जरिए वित्त पोषण करेगा। राज्य कृषि भूमि पर एक निश्चित शुल्क लगा सकेगा। भारत के बुनियादी ढांचे में बदलाव के लिए उन्होंने भूमि सुधार के लिए प्रावधान किए थे। इसके मुताबिक नए संविधान में एक व्यवस्थापन आयोग बनाया जाएगा जो गैर कृषि योग्य भूमि का उपयोग अनुसूचित जातियों के आवास व्यवस्थापन के लिए करेगा। इस आयोग को ऐसे उद्देश्य के लिए जमीन खरीदने का भी अधिकार होगा। अंजलि, इन बातों से पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर अपने मूल विचारों को भारत के आधिकारिक संविधान में शामिल नहीं करवा पाए। इतना ही नहीं, कुछ स्तरों पर उन्होंने बाद में अपने ही विचार को आगे नहीं बढ़ाया।
3: जी बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हमने जाना कि क्या अंबेडकर समाजवादी व्यवस्था चाहते थे। दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर केंद्रीकृत व्यवस्था के समर्थक नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि समाज के नियम उनका चरित्र समाज को बदलने नहीं देगा, इसलिए वे बहुत ताकतवर राज्य व्यवस्था चाहते थे।
1: जी हाँ।
0: अगर यही बात करें संवैधानिक नैतिकता पर अंबेडकर के क्या विचार थे, तो श्रोता साथियों, आजाद भारत के लिए एक सभ्यता मूलक और लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना करना कितना कठिन रहा होगा।
1: बिल्कुल,
0: यह डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की उस वक्तव्य से स्पष्ट होता है जो उन्होंने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर बहस शुरू करते हुए दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय भूमि स्वभावतः अप्रजातंत्रात्मक है और भारत में संवैधानिक नैतिकता नहीं है। संवैधानिक नैतिकता पर सभा में कम ही चर्चा हुई थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसे ही संविधान का शासन तंत्र मानते थे।
1: जी हाँ।
0: आजादी के बाद भारत ने संविधान को अपना लिया, लेकिन संविधान की संवाहक संवैधानिक नैतिकता को नहीं अपनाया जा सका।
2: बिल्कुल अंजलि, अगर संवैधानिक नैतिकता का अर्थ क्या है अगर इस पर बात करें, तो संवैधानिक नैतिकता का मतलब है राजनीतिक दलों, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सामाजिक संगठनों और नागरिकों का संवैधानिक मूल्य और उस पर निर्मित व्यवस्था में विश्वास होना।
0: जी हाँ।
2: जब समाज सजग होगा तब वह प्रश्न पूछेगा ही, और ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि राज्य व्यवस्था और सरकार आलोचना के अधीन होगी। सरकार का आलोचना के अधीन होना भी संवैधानिक नैतिकता का ही सूचक है।
0: जी बिल्कुल।
2: साथियों, संवैधानिक नैतिकता का एक सूचक बहुलता और विविधता भी है। इसे हृदय और व्यवहार की गहराइयों से अपनाया जाना लोकतंत्र के वजूद की बुनियादी शर्त है। यदि बहुलता और विविधता के तत्व को समाज अपनाएगा अंजलि, तो हिंसा की भाव अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे।
0: जी हाँ।
2: इसलिए डॉक्टर अंबेडकर बंधुता के मूल्य को सबसे आधारभूत सामाजिक राजनीतिक मूल्य मानते रहे हैं।
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ जागृति जी, बात करें आसान नहीं थी राह के बारे में, तो श्रोता साथियों, वास्तव में भारत के लिए ऐसे गुणों से लेस संविधान बनाना बहुत ही दुरूह काम था, क्योंकि वास्तव में भारत एक समान स्वरूप वाला राष्ट्र नहीं था। वास्तव में राजनीतिक आर्थिक स्वार्थों ने भारत की विविधता को इसकी सबसे बड़ी ताकत बनाने के बजाय इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया था।
1: जी हाँ।
0: वास्तव में भारत के सामने खड़ी चुनौतियों से जूझते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने जो भूमिका निभाई, सच्चाई तो यह है कि उसी के कारण भारत एक विधान के माध्यम से समग्र राष्ट्र का रूप ले पाने में सक्षम हुआ। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर को खुद भी यह एहसास था कि भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था इस संविधान को उसकी मूल भावना के साथ लागू नहीं होने देगी, क्योंकि इस संविधान को लागू करने के लिए देश में छुआछूत, जातिवादी व्यवहार, लैंगिक असमानता, आर्थिक असमानता पैदा करने वाली नीतियों को तिलांजलि देने सरीखे कदम उठाए जाने होंगे, जिसके लिए भारत का समाज बहुत तत्पर नहीं था।
1: जी हाँ।
0: इसके साथ ही सत्ता हासिल करने के लिए ललायित भारत की राजनीति ने भी इन प्रश्नों पर बहुत प्रभावी रूप से इन्हें अपनाया।
2: बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ साथियों, तानाशाही को लेकर दूरदेशी उपाय के बारे में बात करें, तो डॉक्टर अंबेडकर अंजलि जानते थे कि अच्छा संविधान बन जाने के बावजूद सत्ता और सरकार पर देश के 2-3% लोगों का ही कब्जा रहेगा।
0: जी बिल्कुल।
2: यही कारण है कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जिसमें एक व्यक्ति या एक छोटे समूह की तानाशाही स्थापित न हो पाए। संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्र जिसमें एक व्यक्ति या एक छोटे समूह की तानाशाही स्थापित न हो पाए। संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होगा, किंतु वह अकेले कोई भी निर्णय न ले पाएगा।
0: इसी के साथ हम देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को शासन के सभी अधिकार प्राप्त हैं। उसके अधीन कई सचिव होते हैं जो भिन्न भिन्न विभागों के अधिकारी होते हैं। वे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते, जबकि स्वतंत्र भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र पर शासन नहीं करता।
1: जी हाँ।
0: उसके अधीन विभिन्न विभागों के मंत्रिमंडल होते हैं और ये मंत्री राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य होते हैं। यही मंत्रिमंडल अपनी राय से राष्ट्रपति को अवगत करवाता है।
2: बिल्कुल। इसी के साथ अंजलि, सामान्यतः ये राष्ट्रपति की बाध्यता होती है कि वह मंत्रिमंडल की राय को माने, वह उनकी राय के प्रतिकूल कुछ नहीं कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी सचिव को कभी भी हटा सकता है, किंतु भारत का राष्ट्रपति किसी मंत्री को तब तक नहीं हटा सकता जब तक कि मंत्रिमंडल को बहुमत प्राप्त है।
0: जी हाँ।
2: भारतीय सामाजिक व्यवस्था के चरित्र स्वरूप और स्वभाव में व्याप्त चुनौतियों और जटिलताओं को समझते हुए संविधान में कई प्रक्रियाओं की भी व्याख्या की गई है, क्योंकि माना गया है कि यदि संविधान को सूत्रों में लिखा जाएगा तो आने वाली सरकारें और प्रभावशाली राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के लिए संवैधानिक मूल्यों से समझौता करते जाएंगे।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही हैं, अगले रविवार को हमारी फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में संविधान से जुड़ी कुछ अहम बातों के साथ में।
2: जी हाँ साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाई बोनो, आ लक्षण आपने अपने में देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सु।
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
0: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
2: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दाल खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन हम कार्यक्रम दादी माँ की रसोई के माध्यम से नए नए व्यंजनों के बारे में आपको बताते हैं। तो आज जैसा कि मैंने गीत से पहले कहा था कि मैं आपको आम की कैंडी के बारे में बताने वाली हूं और आम के पापड़ के बारे में बताने वाली हूं। तो ये दोनों ही रेसिपी बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में प्रतिभा जी आए हुए हैं। वो हमें बताएंगे कि आम की कैंडी किस तरह से बनती है, साथ ही आम का पापड़ किस तरह से बनता है और ये दोनों ही चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभकारी है। तो आइए हम सुनते हैं प्रतिभा जी से आम की कैंडी और आम के पापड़ के बारे में रेसिपी। नमस्ते प्रतिभा जी।
1: नमस्ते जागृति जी,
0: आपका स्वागत है प्रतिभा जी हमारे आज के इस कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।
1: धन्यवाद जागृति जी।
0: जैसा कि प्रतिभा जी आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में पधारे हैं और आप हमारे श्रोता साथियों को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई रेसिपी के बारे में बताने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या बताने वाले हैं।
1: जी मैं अभी तो क्या है कि जागृति जी कच्चे आम बहुत आ रहे हैं गर्मियों में, तो मैं आपको एक कच्चे आम की कैंडी बताना चाहूंगी।
0: बिल्कुल,
1: जो बहुत ही मतलब आसान से आपके घर में ही सामान मिल जाएगा और इसे आप बनाकर घर पे खा सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि प्रतिभा जी आपने बताया कि आज आप आम की कैंडी के बारे में बताने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि गर्मियों का मौसम है और आम तो अभी बहुत सारा आए हुए हैं, तो हमारे श्रोता साथियों के लिए तो ये रेसिपी तो बहुत ही अच्छी होगी ताकि वो घर पर बनाकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप आम की कैंडी कैसे बनाते हैं उसकी सामग्री के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताइए।
1: जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं श्रोता साथियों को नमस्कार कहना चाहूंगी। कच्चे आम की जो कैंडी है उसके लिए आपको घर में ही बेसिक सारे सामान मिल जाएंगे। कच्चे आम हमको चाहिए होंगे 500 ग्राम, मिश्री या आप शक्कर भी यूज कर सकते हैं, चीनी जिसको कहते हैं। मिश्री लें तो धागे वाली लें 500 ग्राम, ठीक है। आप केसर या हल्दी का भी यूज कर सकते हैं, मैं दो तरीके से आपको बता दूंगी, ठीक है। और एक कॉर्नफ्लोर आता है और घी 1 चम्मच, बस इतनी सी सामग्री आपको चाहिए।
0: एक बार पुनः आप हमारे श्रोता साथियों को ये सामग्री नोट करवा दीजिए।
1: जी, कच्चे आम 500 ग्राम ले लीजिएगा, कॉर्नफ्लोर 3 चम्मच, घी 1 चम्मच, मिश्री धागे वाली 500 ग्राम अगर नहीं हो तो आप शक्कर का भी उपयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: केसर या हल्दी जो भी हो उसका उपयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल प्रतिभा जी, तो जैसा कि प्रतिभा जी ये तो आपने हमारे श्रोता साथियों को आम की कैंडी बनाने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए उसके बारे में बताया, यही हम आपसे उसकी विधि के बारे में जानना चाहेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं।
1: जी बिल्कुल, सबसे पहले हम जो 500 ग्राम आम है ना उनको लेकर उनको अच्छे से धुल लेंगे। फिर कुछ भी नहीं करना है, वो सीधे जो आम है कच्चे आम है ना उनका छिलका उतारना कुछ नहीं करना, उनको चारों तरफ जो गोल एरिया है उस तरफ से चाकू से उसमें कट लगा देंगे चारों तरफ।
0: बिल्कुल,
1: तो सारे आमों में ऐसे ही हम कट लगा देंगे। फिर एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें एक ऐसा स्टैंड रख देंगे उसके ऊपर हम छलनी रख सके।
0: जी हाँ,
1: तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे उसमें, 2 कटोरी या 3 कटोरी के करीब, थोड़ी बड़ी कटोरी होनी चाहिए है ना, और उसमें फिर वो छलनी रख देंगे उसके ऊपर और उसके ऊपर आम रख देंगे छलनी में और उसको ढक देंगे करीब 10 मिनट तक, उसको ढक के पका लेंगे।
0: जी हाँ,
1: फिर उसके बाद हम चाकू लेके उसको चेक कर लेंगे कि आम पक गया है कि नहीं पक गया है। आपको कलर से भी पता चल जाएगा कि आम पक गया है।
0: बिल्कुल,
1: ठीक है। फिर उस आम को हम बाहर निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेंगे, फिर उसका जो गूदा है वो हम निकाल लेंगे सारा।
0: जी,
1: गूदा निकालने के बाद एक मिक्सर ग्राइंडर ले लेंगे, मिक्सी का जार ले लेंगे, उसमें वो पल्प जो हमने गूदा निकाला है वो डाल देंगे और मिश्री को हम पहले से ही कूट के रख लेंगे, क्योंकि मिश्री धागे वाली जो होती है वो थोड़ी टुकड़े टुकड़ों में रहती है।
0: जी जी,
1: तो उसको हम एक खलबट्टे पे कूट लेंगे।
0: बिल्कुल,
1: और फिर वो पल्प जो आपने डाला है ना गूदा मिक्सी के जार में, उसमें 2-3 चम्मच डाल देंगे मिश्री और फिर उसको चला देंगे मिक्सर ग्राइंडर में। फिर बाद में देखेंगे कि अगर वो बहुत ही मतलब क्रीमी नहीं हुआ है तो फिर उसमें 2-3 चम्मच डाल के फिर उसको वापस से चला के उसको मतलब एक क्रीमी लुक लेकर आना है उसमें। उसके बाद एक कढ़ाई ले लीजिएगा,
0: जी,
1: उसमें वो पल्प डाल दीजिएगा और उसके बाद जो मिश्री जितनी भी बची मिश्री है वो डाल दीजिएगा और फिर धीमी आंच पे उसको करीब 10 से 10-12 मिनट तक पकाइएगा।
0: बिल्कुल,
1: जब वो 10-12 मिनट तक पक जाए तो वो उसमें क्या करिएगा, कॉर्नफ्लोर जो आप मैंने बताया था ना 3 चम्मच, उसमें बस 3 चम्मच ही पानी डालिएगा, ज्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो वो फिर उसको मॉइस्चर सुखाने में फिर दिक्कत लगेगा।
0: जी बिल्कुल,
1: तो वो करके फिर उसको चलाते रहिएगा बराबर 5 मिनट तक। जब ये हो जाए तो उसके बाद आपको पता ही चलने लगेगा कि वो कढ़ाई छोड़ने लगता है। उसमें बस एक चम्मच घी डाल दीजिएगा, फिर उसको ठंडा होने दीजिएगा। एक थाली ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी चारों तरफ लगा के
0: जी जी।
1: जो वो बना हुआ है ना उसको डाल दीजिए पूरा गूदा, उसको फैला दीजिए। वो ठंडा हो जाए फिर उसके छोटे छोटे पीस आप अपने हिसाब से जैसे भी काटने हो, चौकोर ट्रायंगल जैसे भी काटो आप काट के
0: अपनी मर्जी अनुसार काट सकते
1: हैं।
0: बिल्कुल,
1: फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद जो मिश्री थोड़ी सी बची हुई है उसमें उसको लपेट के और आप इसको करीब 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि प्रतिभा जी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे श्रोता साथियों को आम की कैंडी के बारे में बताया कि किस तरह से आम की कैंडी हम घर पर ही बना सकते हैं और सामग्री भी हमें घर पर ही उपलब्ध हो जाती है, तो ये आम की कैंडी की सामग्री और विधि के बारे में तो आपने बताया, यही हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि इसके फायदे क्या होते हैं।
1: देखिए, कच्चे आम की कैंडी स्वाद में तो चटपटी होती है, ठीक है, इसके कई स्वास्थ्य फायदे भी हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि इसमें भरपूर मात्रा में डाइट्री फाइबर होता है जो आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर पाचन क्रिया को सुधारता है
0: और
1: कब्ज जैसी समस्याओं में भी राहत दिलाता है। कच्चे आम से शरीर को ठंडक मिलती है, डिहाइड्रेशन से बचाने में भी मदद करता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको इम्यूनिटी हम कहते हैं उसको भी ये बढ़ाता है।
0: बिल्कुल,
1: ये पेट में अच्छे बैक्टीरिया को भी बढ़ावा देता है और आंतों में जो माइक्रोबायोम संतुलन को बनाए रखने में ये मदद करता है। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए जागृति जी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है और स्वादिष्ट एक मतलब स्नैक टाइप है ये, जिसे आप घर पे आसानी से बना सकते हैं।
0: जी हाँ, तो जैसा कि प्रतिभा जी आज आपने बहुत अच्छा बताया कि आम की कैंडी किस तरह से बनती है, इसके लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए, साथ ही इसके फायदों के बारे में, तो प्रतिभा जी आगे भी हम जानेंगे आम के पापड़ के बारे में आपसे ही रेसिपी के बारे में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
2: तुम

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। और जैसा कि गीत से पहले प्रतिभा जी जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें आम की कैंडी के बारे में बताया था कि किस तरह से आम की कैंडी बनाई जाती है और उसके लिए सामग्री क्या क्या चाहिए। यही प्रतिभा जी हमारे साथ जुड़े हुए, अब हम उनसे जानते हैं आम के पापड़ के बारे में।
1: जी, तो इस समय आम बहुत आ रहे हैं गर्मियों में, तो तरह तरह की रेसिपी बना के हम घर में खिलाएं तो अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल,
1: तो मैं आपको आज कच्चे आम के पापड़ की रेसिपी बता रही हूँ। तो इसकी सामग्री श्रोता साथियों लिख लीजिएगा। आपको कच्चे आम 1 किलो चाहिए, चीनी 1 से 1.5 कप तक,
0: मतलब
1: आम की जो खटास है उसके अनुसार आप ले लीजिएगा। काला नमक 1 छोटा चम्मच, सादा नमक 1/2 छोटा चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स 1/2 छोटा चम्मच। चिली फ्लेक्स क्या होता है, जैसे जो सूखी मिर्च हो जाती है ना, लाल वाली, उसको आप अगर खलबट्टे में कूट लेंगे ना, वो जो दरदरी सी रहती है ना, उसी को चिली फ्लेक्स बोलते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: है ना। और घी या तेल कुछ भी आप ले सकते हैं थाली को चिकना करने के लिए।
0: बिल्कुल, हमारी आवश्यकता अनुसार।
1: जी
0: जी बिल्कुल प्रतिभा जी, ये तो आपने सामग्री के बारे में बताया, तो मैं चाहूंगी कि एक बार पुनः आप इस सामग्री को फिर से हमारे श्रोता साथियों को बताइए।
1: जी जागृति जी, कच्चे आम 1 किलो ले लीजिएगा, चीनी 1 से 1.5 कप, काला नमक 1 छोटा चम्मच, सादा नमक 1/2 छोटा चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स 1/2 छोटा चम्मच, घी या तेल थाली को चिकना करने के लिए चाहिए।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि प्रतिभा जी ये तो आपने सामग्री के बारे में बताया, यही आप हमारे श्रोता साथियों को इसकी विधि के बारे में बताइए कि किस तरह से हम आम के पापड़ को बना सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, सबसे पहले हम कच्चे आमों को धोकर छील लेंगे और फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे।
0: बिल्कुल,
1: गुठली को अलग कर देंगे। ठीक है, फिर इन कटे हुए आमों को हम कुकर में डाल देंगे और फिर 1 या 2 कप पानी डालकर इनको 1 से 2 सीटी आने तक मतलब कि बॉयल कर लेंगे।
0: बिल्कुल,
1: फिर ये जब आम नरम हो जाए ना तो इनको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडे हो जाए तो फिर ग्राइंडर लेकर उसमें इसका क्या बोलते हैं, पीस कर एकदम स्मूथ पेस्ट, जैसे चिकना बिल्कुल होता है ना, उस तरह का पेस्ट बना लीजिए।
0: जी,
1: कच्चे आमों में कभी कभी ऐसा होता है कि रेशे आ जाते हैं, तो आप एक छन्नी से इस पल्प को पूरा छान लीजिए।
0: बिल्कुल,
1: ताकि ये एक समान हो जाएगा और इसमें से रेशे भी निकल जाएंगे और जो खाते समय आपके मुंह में
0: नहीं आएंगे। बिल्कुल,
1: फिर आप एक कढ़ाई ले लो, उसमें इस आम के पल्प को डालो और धीमी आंच पर 5 मिनट तक पका लो।
0: जी बिल्कुल,
1: ठीक है। फिर उसके बाद जो भी मैंने सामग्री बताई है, चीनी, काला नमक, सादा नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर या चिली फ्लेक्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ये आप उसमें डालकर करीब अब इसको धीमी आंच पे आपको 10 से 15 मिनट तक पकाना है।
0: जी बिल्कुल,
1: तब तक पकाना है जब तक ये मतलब कढ़ाई का जो तला होता है ना वो छोड़ने ना लगे।
0: जी जी,
1: जब ये छोड़ने लगे तो मतलब इसकी पकने की यही एक आपको चीज है, दिखाई पड़ेगी कि ये कढ़ाई के जो किनारे हैं वो छोड़ दे।
0: जी बिल्कुल,
1: तो समझ लीजिएगा पक गया है। इसको ठंडा कर लीजिए, फिर इसके बाद एक थाली में तुरंत ही घी या तेल जो भी है
0: लगाते हम,
1: हाँ लगा के जो ये बने हुए है ना सामग्री, इसको डाल दीजिए और पतला पतला फैला दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: और उसके बाद इसको आप धूप में 1 या 2 दिन तक सुखा
0: रख
1: सकते हैं। अगर धूप नहीं है तो आप पंखे के नीचे भी इसको
0: रख सकते
1: सुखा
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब ये सूख जाए तो फिर इसके छोटे छोटे मतलब टुकड़े आप अपने आकार के काट लीजिए।
0: बिल्कुल,
1: और आप यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं फिर।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि प्रतिभा जी आपने आम के पापड़ के बारे में बताया कि किस तरह से आम का पापड़ हम बना सकते हैं, उसके लिए क्या सामग्री चाहिए, साथ ही बनाने की विधि के बारे में बताया, यही हम आपसे इसके फायदे के बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो आम का पापड़ है वो किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है।
1: देखिए, इसमें विटामिन सी बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है, ये मतलब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करने में मदद करता है।
0: बिल्कुल,
1: खट्टा मीठा स्वाद मुंह के स्वाद को अच्छा करता है, जिनको भूख कम लगती है उनको भी मतलब भूख बढ़ जाती है, जी मचलाने में भी ये राहत करता है, जैसे सफर के टाइम भी आप इसको अपने साथ कैरी कर ले जा सकती हैं। ये गर्भवती महिलाओं में जब अगर उनको जी मचलाए तो ये खा लें तो उससे भी उनको फायदा मिलता है।
0: जी हाँ,
1: और इसमें फाइबर और एंजाइम होते ही हैं जी।
0: जी बिल्कुल,
1: है ना, तो जैसे कि पेट फूलना है, एसिडिटी की समस्या है, क्योंकि हमने इसमें काला नमक और जीरा डाल रखा है, इसलिए पेट फूलना और एसिडिटी की समस्या में भी यह राहत आपको दिलाएगा,
0: दिला सकता है। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने इसके फायदों के बारे में भी बताया कि आम का जो पापड़ होता है उसका क्या फायदे होते हैं, साथ ही हमने बहुत सारी बातें की सामग्री के बारे में, विधि के बारे में। तो जैसा कि समय समय पर आकर प्रतिभा जी आप हमारे श्रोता साथियों को ऐसे ऐसे व्यंजनों के बारे में, रेसिपी के बारे में बताते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जागृति जी।
0: जैसा कि श्रोता साथियों प्रतिभा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने हमें आम की कैंडी और आम के पापड़ के बारे में बताया कि ये किस तरह से हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है और हम इसे कैसे बना सकते हैं। अब समय का मान रखते हुए हमें आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना होगा, पर जाने से पहले आपको सुनवाना चाहेंगे एक और गीत।

साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी रेसिपी, जो भी व्यंजन आपको बताए वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: भाइयों बहनों, जेवरे ग्राम सभा में बोली बोले हैं तो फैसला मजबूत है। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल थकी जरूर बोली में रिश्तों है। जे जंगल में हमसे है इन्होंने रक्षा करे है, तो आओ बोला ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा, ने जंगल अनु भविष्य सुरक्षित करा। बोला ने आवाज विकास ने असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

ये गजल मैंने मेरे से बहुत दिनों में इसकी धुन बनी, मैं पेश कर रहा हूँ। ये मोमिन खां मोमिन की गजल है, जिसका मतलब है, रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।